0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, सक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ये कार्यक्रम होगा 7:02 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स पल्स। आठ बजकर दो मिनट पर होगा कार्यक्रम

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे सेवा संकल्प अभियान मिशन। दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 9:02 से। 9:30 पर आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट। दिन में 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर। बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकेंगे दिन में 11:02 से। वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल, ये प्रोग्राम आप सुन सकेंगे दिन में 12:02 से। दोपहर 1:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए कल रात मतदान खत्म

हुआ इस चुनाव में क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते, वहीं महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: रुको नहीं बेटी, नाचो नाचो।
1: नीर भरत जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाई गगर, तब डगर चलत मोह छेड़त लंगर, हट जाओ

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। देखिए, कहा ना बात मानते हैं कि नहीं, लेकिन आप में भी ये है बात कि आप भी किसी की बात मानते हैं, सुनते हैं या नहीं। खैर, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आप किसी की बात मानते हैं या नहीं, लेकिन आप खुद की मानते हैं या नहीं, या फिर आप जो खुद से वादा करते हैं या जो आपने कहा है खुद से कि ऐसा मैं कर लूँगा, या इस तरह से भी कहा जा सकता है इसको कि कई बार हम कई संकल्प लेते हैं, तो क्या वो जो इतने सारे संकल्प आप लेते हैं उसमें से एक पर भी आप टिक पाते हैं या नहीं, या एक भी संकल्प आप पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये ज़रूरी है। क्योंकि खुद से किया वादा निभाना तो आना चाहिए। बेशक आप आगे अभी दूसरे के लिए इतने कमिटेड नहीं हैं, तो कम से कम आप खुद के लिए कमिटेड रहिए। जो बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हैं या जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जो स्टेप्स आप लेते हैं, उसके लिए आपने जो संकल्प लिया है, आप उसको पूरा करते हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आज जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम सुप्रभात की।

नहीं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है ना, कुछ कुछ होता है उनको देखकर। जैसे कि हम कोयल की बात करें तो जब वो कुहू कुहू की आवाज़ करती है, मीठी तान के लिए वो जानी जाती है। और बुलबुल की पहचान उसका मधुर गान है, तपस्वियों की शोभा उनकी क्षमाशीलता में है, सुख दुख प्रेम घृणा और अपने पराए की बीच मनुष्य होने की सबसे बड़ी पहचान क्षमा करना है। और ये बहुत ही अमूल्य खजाना है और आप के अंदर भी तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आप भी सबसे अलग हैं, है ना। आप में जो है वो हो सकता है जो आपके दोस्त हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें वो बात ना हो, या फिर आपका जो एक सोशल ग्रुप है उनमें वैसी बात ना हो। तो हम सब अपने आप में ख़ास हैं और ये जो ख़ास होने की बात ही है ना, यही आपको ख़ास बनाती है। लेकिन कई बार हम अक्सर अपने आप में अपने आप को जाने बिना औरों की तरफ देखते हैं, और जब ऐसा देखना शुरू करते हैं तो ये भावना आती है कि ये मेरे पास नहीं है, या मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन यही जो बात है, या फिर अगर इसको इस तरह से भी कहा जाए कि किसी ने आपके साथ कुछ कहा आपको या कुछ गलत किया तो आपको लगता है कि मुझे इसका बदला लेना चाहिए, लेकिन ये जो भावना है इसे बिल्कुल भी ना पलने दें, क्योंकि इस भावना से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है। ये जो भावना है ये तनाव बढ़ाती है, और तनाव जब जीवन में शामिल हो जाता है तो फिर बहुत असर उसका आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करें फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या आगे जब हम बात करते हैं अपनी फिटनेस की, तो वो जो सफ़र है, वो जो बहुत सारे काम हैं जो आपको करने होते हैं, फिर वो नहीं हो पाते। तो इसलिए इसी पर बात करेंगे कि बदले की जो भावना है उससे थोड़ा सा दूर रहें। थोड़ा ही क्यों, पूरी तरह से दूर रहना ज़रूरी है, और संगीत इसके जितने करीब रहें ये उतना अच्छा है। ये आपकी सेहत को बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कर देता है। जब भी मूड फ्रेश करना हो तो ज़रा इस ओर कदम ज़रूर बढ़ाइए। और अभी तो आप हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं इस सफर में जिसका नाम है सुप्रभात। आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में ये कार्यक्रम जारी रहेगा बिल्कुल 7 बजे तक।

जी हाँ, जब मन में कुछ ऐसा विचार आए, नेगेटिव विचार, या फिर ये भावना कि उसने ऐसा क्यों किया, या उससे बदला लेना है, या मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, तो फिर कोई अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और फिर देखिए, लंबी गहरी सांसें भी लीजिए, तो फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। आपकी जो जहाँ पे आप अटेंशन दे रहे हैं, वहाँ से आप जैसे ही अपना जो जहाँ पे भी आपका फोकस है उसको शिफ्ट करेंगे, तो फिर आप इस भावना से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि पता है होता क्या है कि जब हम इस तरह की भावना अपने अंदर लाते हैं ना, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जो फर्क पड़ता है, जितनी भी आपको ये मन में ये भाव आता है घृणा का, जेलसी का, या बदला लेने का कि मुझे तो

ऐसा करना है, तब उसको पता चलेगा कि क्या हुआ है, कैसा किया है। तो ये सब जब आप करते हैं ना, तो इसका बोझ जो है वो आप खुद ढोते हैं, सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने साथ ऐसा करना बंद करें। क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम माफ़ करते हैं, तब यही एक रास्ता है जिससे कि जो मानसिक रूप से जो आपको परेशानी हो सकती है, उस कमज़ोरी से आप बच सकते हैं। तो मानसिक कमज़ोरी से बचने का रास्ता है कि आप माफ़ कीजिए खुद को भी और सामने वाले को भी। ये करना बहुत ठीक रहेगा। ज़रा सोचिए इस बारे में। हम साथ ही हैं सफ़र में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो बात कर रहे थे हम उस बात की जिस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप भी इस बात पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं तो फिर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो बदले की भावना है ना, ये तनाव बढ़ाती है और इसे पलने ना दें, क्योंकि फिर ये बहुत ही गलत हो जाता है आपके साथ। और इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी सोचा भी है आपने कि ये जो मन में बदले की भावना आती है तो हम को देखना चाहिए, हम खुद को उस जगह पर रख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि क्या जो हमारी प्रतिक्रिया है, जो इस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं वो ठीक है। खुद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और ऐसे में ना कई बार ऐसा लगता है कि हम उस इंसान को कैसे माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी तो मांगी नहीं मैं। और कई बार ऐसा होता है ना, हम ऐसे भी कहते हैं मैं माफ़ी नहीं करूँगी, मैं माफ़ी नहीं करूँगी, जबकि सामने वाला माफ़ी मांग ही नहीं रहा है, है ना। तो और भी आपको ऐसा लगता है कि किसी को एहसास ही नहीं है, लेकिन क्या गलत है क्या सही है ये परिभाषा हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। हमारे लिए कुछ चीज़ें होंगी जो सही हैं, हम नहीं कह सकते कि वो सामने वाले के लिए भी वैसी ही हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि माफ़ करना खुद के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, इससे आपको सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं, बदले की भावना है, ये सब इतना तनाव बढ़ाती हैं, इसलिए माफ़ कीजिए, मन को हल्का कीजिए और आगे ज़िंदगी के सफ़र में ये जो इतना खूबसूरत है इसकी ओर, इसमें आगे बढ़ते जाइए और इस सफ़र को आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, जब प्रकृति के इन खूबसूरत रंगों को आप देखते हैं, प्रकृति के बीच में होते हैं, तब आपको एहसास होता है ना कि क्या ईश्वर ने क्या ही बना दिया है, क्या देन है ये प्रकृति, सब कुछ कितना खूबसूरत है। और प्रकृति के करीब जब हम खुद को पाते हैं तो इन भावनाओं से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं कि हमें किसी से बदला लेना भी है या किसी के बारे में कुछ सोचने का विचार भी आपके मन में नहीं आता, है ना। आप खुद में एक चिंतन में शून्य में चले जाते हैं। तो ज़रा प्रकृति के बीच रहिए, करीब रहिए, वक्त गुजारिए, तो देखिए अच्छा लगेगा, है ना। और भगवान महावीर भी कहते हैं कि दुख की अवस्था से ऊपर उठिए। क्षमा शीलवान का शस्त्र है और अहिंसक का अस्त्र है, और जैन धर्म में भी क्षमा का विशेष महत्व है, इसलिए इसको समझिए, इस बारे में सोचिए। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये जानकर कि जब आप अपने विचार भेजते हैं और बहुत अच्छी और सुंदर बातें आप लिखते हैं कि क्यों हमें किसी से बदला लेना है, हमें तो खुद पर फोकस करना चाहिए। और अपने पर जब आप फोकस करते हैं तो फिर आप मस्त रहते हैं। और जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता ना, या जिस भी आप जिनको मानते हैं, है ना, तो अपने पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से बदला लेकर, दूसरों को बदल कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छे विचार आप लिखकर भेजते हैं, और साथ ही आप लिखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो मानसिक संतुलन तो खोते ही हैं, और सारा जो हमारा चैन है, सुकून है, कहीं ना कहीं चला ही जाता है। इसलिए मूड को अच्छा रखना चाहिए, इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी बातें होंगी इसी पर कि आपने सोच लिया है माफ़ करने के बारे में या नहीं, या अभी भी मन में है वो वाली भावना जिससे आपको खुद को दूर रखना है। क्योंकि जिंदगी का ये जो सफर है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह की भावना के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा

0: है इनके नाम से। उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आप तो बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएंगे।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और मैं हूँ आपके साथ नुपुकुल श्रेष्ठ। तो मुझे लगता है जिस बात पर हम बात कर रहे थे, उस बात पर आपने गौर जरूर किया होगा और अब तक ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको क्या करना है। मतलब जिस बात ने आपके अंदर इतनी हलचल पैदा कर रखी है और बदले की भावना ला दी है, या फिर आप खुद में ही परेशान रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैं ऐसा कह सकती थी, ये हो सकता था। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पर विचार कर आपने अब तक ये डिसाइड कर लिया होगा कि छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, खुद को माफ कर देना चाहिए, उन परिस्थितियों को माफ कर देना चाहिए जब ऐसा हुआ है ना। और ये आप आज से, इनफैक्ट अभी से कर सकते हैं। किसी खास दिन की प्रतीक्षा क्यों करनी, हर दिन क्षमा और प्रेम के साथ जीना ही तो सच्चा आत्ममंथन है, इसको करना जरूरी है। और किसी को वैसे भी जब हम माफ करते हैं तो हम खुद को ये जो मानसिक बोझ है ना, उससे मुक्त कर देते हैं। मुश्किल है लेकिन खुद के लिए करना जरूरी है। और आप अगर ऐसा कर लेंगे ना, शुरुआत की थी हमने कि हम कई संकल्प लेते हैं कि ऐसा करेंगे, ये बदलाव लाएंगे खुद में, या पढ़ाई करनी है, इतने घंटे करनी है, इसका भी संकल्प लेते हैं, तो आप क्षमा करने का भी संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये जो संकल्प है वो आपके जीवन में नई ऊर्जा और शांति भर सकता है। तो अपने जीवन को नई ऊर्जा और शांति से भरने के लिए ज़रूरी है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ ये ठान लीजिए कि हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, खुद को माफ़ करते हैं, सामने वाले को माफ़ करते हैं। और ज़िंदगी का ये जो इतना खूबसूरत सफ़र है, जो सपने आपने अपने लिए देखे हैं उनको पूरा करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसा बस कर लेते हैं। जुड़ रही है हमारे साथ आकाशवाणी रेडियो।

तो किसी भी बात को इतना दिल से ना लगाएं कि वो आपको अंदर तक हिला दे। ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है और इसको जीना बहुत ज़रूरी है। सोचने में वक्त ना गुजारें, ये भी सोचने में वक्त मत गुजारें कि उसने ऐसा क्यों कहा। आप इन सब को क्रॉस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा लिखकर भेजा है कि मैसेज आपने कि ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, एक पल भी नहीं है गवाना, हमेशा करें माफ़, दिल रहेगा हल्का और साफ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, अगर बातों का कुछ भी असर अगर आप पर होता है तो थोड़ा सा करके देख लीजिए, आपके लिए ही अच्छा है ना। हम समझते हैं कि हर बात पर अगर किसी ने कुछ कहा है तो एक्शन है तो रिएक्शन है, लेकिन यहाँ ये समझना कि ये जो गुस्सा है, ये जो बदले की भावना है, ये जो ईर्ष्या है, ये सब आपको अंदर से ख़त्म कर देती है। इसलिए

अपने सुकून के लिए खुद को माफ करें और सामने वाले को भी, और आगे बढ़ते रहें। हम भी सफर में आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपको बताते चलते हैं कि अगला कार्यक्रम आप कौन सा सुनेंगे। आप जल्द ही जुड़ेंगे निशा के साथ और आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंक में एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगी शामिल। उसके बाद आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, उसमें भी आपके साथ होंगी निशा तंवर। और उसके बाद समय रहेगा मैचलेस म्यूजिक आर का, जिसमें आपके साथ होंगी अदिति बिष्ट। उसके बाद समय है बॉलीवुड की खबरों के साथ, आपके साथ जुड़ेंगी बॉलीवुड ट्रेल्स में आकृति खंडूरी। उसके बाद आगे बढ़ें तो एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी अदिति बिष्ट और कार्यक्रम रहेगा प्लेट कूल। और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन, इसमें आपके साथ होंगी आकृति खंडूरी और आज का विषय रहेगा स्टेप इनटू टुमारो, न्यू एज करियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना, शालिनी खंडेलवाल आपके साथ होंगी। उसके बाद समय रहेगा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रेडियो डॉक्टर का। इस कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे अल्फा जैन, इसमें भी आपके साथ रहेंगी शालिनी खंडेलवाल। और उसके बाद 5 बजे आपके साथ जुड़ेंगी सृजन राजपूत, प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। मैसेज मशाला मिक्स आप सुनेंगे अमरीन खान के साथ। और उसके बाद समय रहेगा हमारे दूसरे प्रोग्राम का, और उस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी मुक्ता। और वेस्टर्न म्यूजिक में आप सुनेंगे कंट्री कार्निवल, और उसके बाद आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती, इसमें भी आपके साथ रहेंगी अमरीन खान। इसके बाद आप सुनेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी याद आती रही, प्रवीण शर्मा होंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में। और उसके बाद समय रहेगा रेनबो शो के इसका, प्रोफाइल्स ऑफ पॉपुलर आर्टिस्ट एंड बैंड्स, इसमें भी आपके साथ होंगी मुक्ता। और उसके बाद रंगे महफिल में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे प्रवीण शर्मा। तो कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सफर में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, अभी आपसे लेती हूं इजाजत, फिर मिलूंगी, जल्द मिलूंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज से श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR प्रक्रिया के तहत 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए कल रात मतदान खत्म हुआ। इस चुनाव में क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते, वहीं महिला क्रिकेट टीम फाइनल्स में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी रेनबो पर मैं निशा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी कि देखिए, सवाल तो मैं, हम या यहाँ आने वाले लोग अक्सर आपसे पूछते रहते हैं, लेकिन एक सवाल हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए।

और वो ये है कि वेयर आर यू लिविंग. अब इस सवाल का जवाब वो जगह का नाम नहीं होगा जहां पर आप रह रहे हैं, इस सवाल का जवाब ये है कि कहीं आप पास्ट या फिर फ्यूचर में तो नहीं रह रहे हैं. देखिए, अगर गिल्ट, शेम या फिर रिग्रेट लगातार आपके साथ जुड़ा रहता है, फीलिंग सैड हमेशा आपको घेरे रहती है, या फिर आप यही सोचते रहते हैं कि जो हुआ कैसा हुआ, अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, या फिर कुछ लोग फ्यूचर में रहते हैं हमेशा के लिए जिन्हें किसी अननोन चीज का फियर रहता है, या बिना बात के वरी करना उनकी आदत होती है, एंशियस हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, एंड वॉट इफ ये इनका हमेशा एक पेट वर्ड होता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा. लेकिन असली इंसान जो एकदम बिंदास जिंदगी को जीने वाले हैं ना, रोजाना जीने वाले हैं, वो वही है जो प्रेजेंट में जीते हैं. तो क्या आप प्रेजेंट में जीते हैं? तो यस, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि वेयर आर यू रियली लिविंग. सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम. ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 7:04. एंजॉय द म्यूजिक.

वेलकम बैक 102.6 एफएम रेनबो है ये, वेरी गुड मॉर्निंग, बड़ा स्वागत है आपका, कर रही हूँ मैं, मेरा नाम है निशा। और देखिए, जब से मॉनसून शुरू होता है ना, सब लोग हमारे आसपास वाले बोलने लगते हैं जो हमारे भला चाहते हैं कि बाहर का नहीं खाना है, देखो कोई स्ट्रीट फूड अवॉइड कीजिए, मौसम बारिश का होता है तो गंदगी ज़्यादा होती है और बीमार पड़ने की ज़्यादा नौबत आ जाती है अगर हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।

बाहर के खाने में। अब हमारे जैसे, मेरे जैसे फूडी लोगों का तो बहुत बुरा हो जाता है भाई, पूरे मॉनसून में बाहर का नहीं खाना, और अब जब ये वेदर चेंज होने वाला टाइम आ जाता है तो एनी विच वे नहीं खाना। तो खाना कब है? इसीलिए मैंने इसी इसी होड़ में ना अभी 2 दिन पहले गोलगप्पे खा लिए, तो उसका असर मेरे गले पर सीधा सीधा मुझे फील हो रहा है। तो बट आपसे यही कहूंगी कि दिल्ली एनसीआर का जो ये मौसम है अब चेंज होने लगा है, और विंटर्स जो है अभी तो नहीं लेकिन हाँ आने वाले थोड़े ही समय में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होंगी। सुबह शाम की ठंड शुरू हो जाएगी और अभी भी हल्की हल्की सी ठंडी है ही, ठीक है। सुबह सनराइज देखने में सच बताऊं आपको बहुत अच्छा लगा, एकदम ऑरेंज कलर का जब सूर्य देवता सामने होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो मैंने आज उनके दर्शन कर लिए। आप भी उठ जाइए, दर्शन कर लीजिए और अपनी इस सुंदर सी सुबह को पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू कर दीजिए, है ना। या फिर और कुछ नहीं करना तो अपनी फेवरेट कप ऑफ टी के साथ में FM रेनबो के साथ ट्यून इन रहिए, बाकी का काम मेरे शोल्डर्स पर छोड़ दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ। फिलहाल बाहर का तापमान 27 बना हुआ है, मैक्सिमम टच करेगा 34 डिग्रीज तक।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू स्ट्रेंथन द आइडल्स ऑफ पीस बोथ विद इन एंड अमंग ऑल नेशंस एंड पीपल. बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, जब भी हम ये पीस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वी ऑफन थिंक कि वो मैसिव वर्ल्ड ट्रीटीज हो रही हैं, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में पेपर्स साइन किए जा रहे हैं, सीज फायर के नियमों का पालन करना है और वॉर्स नहीं होने देने हैं. लेकिन टूडे आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट क्लोजर टू होम. पीस सिर्फ ग्लोबल नहीं है, लोकल भी है. इट स्टार्ट्स राइट हियर इन आवर सिटी, इन आवर होम्स एंड इनसाइड आवर माइंड. थिंक अबाउट इट, हम एक पीसफुल दुनिया में कैसे रह पाएंगे, एक पीसफुल दुनिया कैसे बना पाएंगे जब तक कि उस इंसान जिसे हम हर एक रोज मिरर में देखते हैं वो उसी के साथ हम पीस में नहीं है, उसी से हम खुश नहीं है. ये ट्रैफिक जैम्स, वर्क स्ट्रेस, लॉन्ग क्यूज, ये सब तो हमारे टेम्पर को लूज करने में बहुत इजीली कंट्रीब्यूट कर देते हैं. देखिए, पीस जो है ना वो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है. वन लेस एंग्री होंक, वन पोलाइट थैंक यू एंड लेटिंग गो ऑफ एन ओल्ड ग्रज, ये सब छोटी छोटी चीजें उसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. इस साल जो थीम है वो फोकस कर रहा है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस. और कल्चर तो आप जानते हैं कोई एक या दो दिन में तो खड़ा नहीं हो जाता है. इट इज बिल्ड बाय यू, बाय मी एंड बाय एवरी सिंगल लिसनर जो इस वक्त इससे सुन रहे हैं. तो इसीलिए आज मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपका इस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के दिन पर वो कौन सा पीस रूटीन है आप जो आज फॉलो करेंगे, चाहे वो आपका हॉट कप ऑफ टी है, चाहे अपने पसंदीदा गाने को सुनना हो, या फिर अपनी फोन नोटिफिकेशंस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना हो. तो यस, यू मस्ट फॉलो अ पीस रूटीन एटलीस्ट फॉर टुडे. सोचिए इस बारे में.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

पता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि सच में दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप से ये कहते हैं, अपने काम से खुश होकर ये कहते हैं, दैट्स ऑल आई रियली वांट टू डू। ऐसे एक इंसान है जिनके बारे में आज मैं आप बात करने वाली हूँ। आज के दिन इनका निधन हुआ था, इस दुनिया से अलविदा इन्होंने कहा था, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, एक बार या दो बार नहीं, 10 बार। इनका नाम था आंग रीता शेरपा, जो कि नेपाल से थे, और 1980 से लेकर 1996 के बीच में इन्होंने 10 सक्सेसफुल समिट किए एवरेस्ट पर, और उनके इसी असाधारण रिकॉर्ड के कारण उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाने लगा था। और इन्होंने अपनी ज्यादातर जो चढ़ाइयां एवरेस्ट पर की वो बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के की, और बस इसी कारण ये अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। आज के दिन इन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा था, वो काम कर रहे थे ये जिसे वो सच में करना चाहते थे।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: so tight.
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर चल रहा है. आज 21 सितंबर है और मेरा नाम है निशा. अब देखिए, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमें लेनी होती है लेकिन हम भूल जाते हैं, या फिर कई बार चाबी मिसप्लेस कर देते हैं और ऐसा लगता है कि काश चाबी में फोन की तरह की बटन होते और हम उसे डायल करके पता कर लेते कि हमारी कीज का है. ये होता है ना हम सबके साथ में. फोन तो अक्सर भूलना हमारी आदत हो ही जाती है, बहुत से लोगों की, सभी की नहीं लेकिन अक्सर ना. ये छोटी छोटी बातें नॉर्मल हैं जो हमारे लिए हम भूलने की, लेकिन किसी किसी के लिए ये जो है रोज की कहानी होती है. आज 21 सितंबर का दिन हमें एक ऐसे ही दिन की याद दिलाता है जब भूलना हमेशा इतना साधारण नहीं होता है बहुत से लोगों के लिए. आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में जो है वो चीजें भूलना नॉर्मल होता है, लेकिन अल्जाइमर भूलने से ना बहुत ज्यादा ऊपर है. इससे सिर्फ वो पेशेंट जो है वो ही इफेक्ट नहीं होता है, पूरा परिवार इफेक्ट होता है. सोचिए, अपने परिवार के लोगों को भूल जाना, रास्ता भूल जाना, वॉक पर निकले हैं तो अपना घर भूल जाना, और रोजमर्रा की चीजें जैसे कि ब्रश करना, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो कोई हर रोज भूल रहा है तो उसका पेन हम समझ सकते हैं ना. एक पुराने समय में बहुत अच्छा फैमिली कल्चर हुआ करता था कि सब लोगों को बैठकर एक साथ कोई ना कोई गेम खेलना होता था. ये बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, आई थिंक ये कल्चर वापस आना चाहिए और हम सब लोगों को अपनी मेमोरी को लंबे समय तक के लिए अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते रहने चाहिए. और ये जो गेम्स होते हैं ना वो एफर्टलेसली इन हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर जाते हैं और एक फैमिली बॉन्डिंग भी बन जाती है. आकाशवाणी रेनबो पर फिलहाल मेरे यहाँ से जाने का समय. जल्दी शिवेंद्र लेकर आएंगे स्पोर्ट्स पल्स और आप स्पोर्ट्स की ताजा तरीन बातें जरूर सुनिएगा राइट हियर ऑन 102.6 FM रेनबो.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स,
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करें। और आपके लिए आज सुबह स्पोर्ट्स पल्स में एक सुरीली खबर आ रही है आईची नगोया जापान से, जहां पर 20वें एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है। और वहां पर भारत ने कल जो सिलसिला शुरू किया था, यानी शूटिंग में मेडल जीतने का, वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कल था महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल मुकाबला इंडिविजुअल और टीम, जहां पर क्या कुछ हुआ था आप सभी जानते हैं। एलेवेलिन वेलारिवान, जो कि गगन नारंग की शिष्या है, उन्होंने 2 मेडल कल जीते थे। सिल्वर जीता था इंडिविजुअल में, टीम में भी सिल्वर जीता था, और बहुत करीब थी, बड़े मामूली अंतर से आखिरी शॉट में गोल्ड मेडल से चूक गई थी। और आज अब से कुछ देर पहले ऑफिशियली, देखिए जो एशियाई खेलों की जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल करके लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि सारे जो परिणाम है, सारी जो सीरीज है, इनफैक्ट 10 मीटर एयर राइफल की पुरुष वर्ग की, वो पूरी हो चुकी है और भारत ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर राइफल में भारत की जो टीम थी उसमें पार्थ माने शामिल थे, रुद्राक्ष पाटिल शामिल थे, हिमांशु ढिल्लन शामिल थे। पार्थ माने ने 628.3 अंक बनाए, वो 11वें पायदान पर रहे। टॉप 8 जो शूटर्स होते हैं साथियों, वो फाइनल में क्वालिफिकेशन के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, फाइनल के लिए पात्रता हासिल करते हैं। तो पार्थ माने 11वें पायदान पर रहे, 628.3 अंक रहे उनके 6 सीरीज में, तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। रुद्राक्ष पाटिल ने 631.8 अंक बनाए, वो क्वालिफिकेशन में 3rd पायदान पर रहे, उन्होंने फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है जो कुछ देर बाद खेला जाएगा। और इंडिविजुअल मेडल जीतने की हंट में भी भारतीय शूटर शामिल हैं, रुद्राक्ष पाटिल उनके साथ होंगे, हिमांशु ढिल्लन जो कि 630 अंक लेकर के टॉप 8 शूटर्स में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने 7वां स्थान हासिल किया है। एक और हम आपको बात बता देते हैं कि जब किसी भी कंट्री से क्वालिफिकेशन में 3 शूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमने बताया, उनके जो सम्मिलित अंक होते हैं उसके आधार पर पदक का टीम के मेडल का फैसला होता है। और भारतीय जोड़ी पार्थ माने, रुद्राक्ष पाटिल और हिमांशु ढिल्लन ने 1890.1 अंक हासिल किए, वो दूसरे पायदान पर रहे। चीन की जोड़ी ने 1899.1 बनाए और उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया और टीम स्वर्ण पदक जीता। भारत ने टीम सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में, और एशियाई खेलों में भारत का यह 3rd मेडल है। कोरिया की टीम 1884.2 के साथ 3rd पायदान पर रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पिछला था 1898.4 अंकों का था, वो भी चीन ने बनाया था 7 नवंबर 2025 को कैरो में, इजिप्ट में। और जो एशियन रिकॉर्ड था वो भारतीय खिलाड़ियों के नाम था, भारतीय टीम के नाम था, 1893.7 अंक का, और ये बनाया गया था 24 सितंबर 2023 को, लेकिन वो रिकॉर्ड अब बहुत पीछे छूट चुका है। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग की स्पर्धा की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर टीम स्पर्धा में तो भारत ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, और 2 ही एथलीट, किसी कंट्री के 3 एथलीट टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। और अब देखिए, हमारे पास 10 मीटर एयर राइफल का ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, भारत ने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में। और 10 मीटर एयर राइफल में जो इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन है वो भी तय हो चुका है, वहां पर भारत के रुद्राक्ष पाटिल 3rd पायदान पर रहे, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के हिमांशु ढिल्लन 7वें पायदान पर रहे, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और जो 3 एथलीट या 3 शूटर, 3 निशानेबाज साथियों क्वालिफिकेशन में शिरकत करते हैं, उनमें से केवल 2 ही शूटर, एक देश से केवल 2 ही शूटर टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भारतीय महिला टीम के साथ भी कल ऐसा ही हुआ था, यानी भारत की ओर से एलेवेलिन वेलारिवान और विदार्शा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और सोनम मस्कर जो कि भारत की 3री एथलीट थी, उन तीनों खिलाड़ियों ने टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। और उसके बाद एलेवेलिन वेलारिवान जो कि शुरू से ही बहुत ही बेहतरीन निशानेबाज रही हैं, गगन नारंग की शिष्या हैं, गन फॉर ग्लोरी जो एकेडमी है पुणे में बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, गगन नारंग भारत के फॉर्मर ओलंपियन, पूर्व ओलंपिक पदक विजेता, उनकी देखरेख में चलती है। वहां पर शूटिंग की बारीकियां सीखी एलेवेलिन वेलारिवान ने, और उन्होंने वर्चुअली एक तरीके से गोल्ड मेडल जीत ही लिया था। लेकिन खेल के मैदान पर साथियों हम जानते हैं सो नियर येट सो फार, कितने दूर कितने पास की ये कहानी न जाने कितनी बार दोहराई जा चुकी है। और कल भी दरअसल फाइनल का हम थोड़ा सा आपको जिक्र कर लेते हैं। जब ये 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल होता है तो इसमें 24 शॉट होते हैं, पहले 5-5 शॉट की दो सीरीज होती हैं और उसके बाद दो शॉट जो और होते हैं उसके बाद एलिमिनेशन शुरू होता है। कुल मिलाकर के 24 शॉट लगाए जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा, मैक्सिमम 10.9 जो अंक हैं वो स्कोर किए जा सकते हैं। तो आखिरी शॉट तक ये उम्मीद बनी हुई थी कि एलेवेलिन वेलारिवान 23वें शॉट तक, 22वें शॉट तक तो वो टॉप पर ही चल रही थी, 23वें में पिछड़ गई थी और उसके बाद उनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। भारत की सोनम मस्कर, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में महिला वर्ग में। और मेडल आना एशियाई खेलों में और खासतौर पर कुछ स्पोर्ट्स में, शूटिंग जिसमें शामिल है, बैडमिंटन जिसमें शामिल है, टेबल टेनिस जिसमें शामिल है, आज की तारीख में कौन सा ऐसा देश है जहां पर एशियाई महाद्वीप से आने वाले खिलाड़ी उन्हें महाशक्ति नहीं माना जा सकता। तो सोनम मस्कर और विदर्शा एलेवेलिन वेलारिवान, इनकी टीम ने कल सिल्वर मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल अपने देश के लिए जीत करके सोनम मस्कर क्या कह रही थी, आइए सुन लेते हैं।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, इंडिया के लिए, और सबको थैंक यू, फेडरेशन, साई, एवरीवन टू सपोर्ट मी टू गेट दिस मेडल। मेरे पापा मम्मी को बहुत सारे मुश्किलों से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आई थिंक यहाँ पे मैं नहीं होती आज।
4: सोनम जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से आती है, और ऐसा माना जाता है, बहुत दिन पहले तक तो यही माना जाता था कि कोल्हापुर जो है वो कुछ अन्य खेलों के लिए ज्यादा जाना जाता है और कुश्ती उनमें से एक है। केडी जादव जो कि भारत के 1952 हेलसिंकी ओलंपिक खेलों के मेडल विनर थे, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इनफैक्ट भारत के पहले इंडिविजुअल मेडल विनर उनको कहा जाता है। हालांकि कई मरतबा बहस का मुद्दा यह भी होता है कि नॉर्मन प्रचार्ड ने एथलेटिक्स में भारत के लिए दो मेडल जीते थे, लेकिन केडी जादव ने कुश्ती में भारत के लिए 1952 में जो मेडल जीता था, केडी जादव उसी कोल्हापुर इलाके से आते थे महाराष्ट्र के जहां से सोनम मस्कर आती हैं। तो आमतौर पर शूटिंग उतना पॉपुलर नहीं था महाराष्ट्र में, हालांकि अब धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो गया है। और सोनम ने अपने माता पिता का, अपने स्पॉन्सर्स का, अपने कोचेस का शुक्रिया अदा किया, और साथ में उन्होंने आखिर में साथियों आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज वो यहाँ नहीं होती। और ये जो कृतज्ञता ज्ञापन है, जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वर्च्यू है किसी भी प्लेयर का, किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी व्यक्ति का। और इसके लिए हम सोनम को सलाम करते हैं, साथ ही मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने भारत के मेडल जो टैली थी उसमें जगह बनाने में मदद की। कल भारत ने पदकों का खाता खोला, पहला मेडल था महिला वर्ग में 10 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में। और ये हैं विदर्शा जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में। विदर्शा को सुन लीजिए।
5: First of all, I'm so happy and I'm so grateful that we had this medal. We got the medal for India, for our country. So I'm so proud. So it took almost 8 years to come here to compete this level. Journey was very difficult. I had to make a lot of sacrifice. I had to face a lot of failures. But I was not ready to give up. That's how I am here.
4: वो कहते हैं साथियों अंग्रेजी में एक कहावत है, when the going gets tough, the tough gets going. Never give up. खेल के मैदान पर यही तो एक धारणा है, यही तो एक बात है जो आपको गिर करके फिर उठने की प्रेरणा देती है। और सोनम की बात या विदर्शा की बात, दोनों में एक चीज कॉमन थी कि तमाम फेल्योर्स आए, तमाम मुश्किलें आईं, तमाम विसंगतियां आईं, लेकिन उन्होंने उनको पीछे छोड़ा। एक खिलाड़ी थे भारत के अशोक पंडित, जाने माने शूटर, उनके सुपुत्र हैं रौनक पंडित, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज थे। रौनक पंडित इस समय भारतीय टीम के साथ एशियाई खेलों में मौजूद है शूटिंग टीम के साथ, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर के तौर पर। और रौनक पंडित कल का जो प्रदर्शन था भारतीय टीम का, शूटिंग टीम का, महिला टीम का, उसके बारे में क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
6: Great. I mean, this was absolutely expected. It was one of our strong events. Also very tight as an event because, you know, China, Korea, India, all neck to neck. And surprise element was Japan today. We did not expect Japan to be this strong. One of our stronger shooters was in the second relay and she did pretty well. So I think this is a result we are happy with. We are happy with the performance of our athletes. I think they performed very well.
4: जी हाँ, भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कल दो सिल्वर मेडल आए और आज एक सिल्वर मेडल ऑलरेडी टीम इवेंट में आ चुका है। 10 मीटर है राइफल में ही वो टीम आया है। एशियाई खेलों में भारत की ध्वजवाहक जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह था, उसमें थी मनु भाकर जो कि जाने मानी शूटर हैं, जो ओलंपिक खेलों में एक ही ओलंपिक खेल में दो मेडल जीत चुकी हैं। एक अविस्मरणीय उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी, बड़े नैरो मार्जिन से तीसरा मेडल उनसे छिटक गया था ओलंपिक खेलों में। मनु भाकर जो सम्मान उनको मिला देश की ओर से फ्लैग बेरर होने का, एक ध्वजवाहक होने का, एक मेगा इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में, उसको लेकर के अपने उद्गार व्यक्त कैसे कर रही थी, आइए सुनते हैं।
7: यू नो व्हेन आई स्टार्टेड कभी भी नहीं सोचा था कि दिस इज वेयर आई कैन रीच इन वन डे इन माय स्पोर्ट, सो इट डेफिनेटली इट्स लाइक अ वेरी हार्ट वार्मिंग फीलिंग। आई फील रियली प्राउड, आई फील रियली ऑनर्ड एंड आई रियली रियली फील सो हैप्पी बीइंग चोजन एज द फ्लैग बेयर ऑफ माय होमलैंड। आई वुड जस्ट वांट टू से थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन फॉर सो मच लव एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू।
4: मनु भाकर बहुत ही बेहतरीन एथलीट हैं और उम्मीद करेंगे कि जब वो शूटिंग रेंज में जाएंगी तो भारत के लिए पदकों का खजाना खोलेंगी जिस तरीके से अन्य एथलीट खोल रहे हैं। अन्य कुछ रिजल्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं, खासतौर पर कल के रिजल्ट पर अगर जल्दी से नजर डाल लें तो भारत क्रिकेट में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर महिला वर्ग में फाइनल में पहुंच चुका है। सुचिका तारियाल एक और एथलीट हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल पक्का कर दिया है। उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में ट्रेडिशनल कैटेगरी 60 केजी के सेमीफाइनल में पहुंच करके मेडल पक्का किया है। आज अपना सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएंगी सुचिका तारियाल। बहुत सारे खेलों में अपनी मौजूदगी वो दर्ज करा चुकी हैं और उसके अलावा आज कबड्डी में भारत का मुकाबला जापान से होगा। पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल का हम आपको जिक्र कर ही चुके हैं। सॉफ्ट टेनिस में भारत ने मंगोलिया को हरा दिया है। मिक्स्ड डबल्स का ये इवेंट था जहां आद्या तिवारी और जे मीना की जोड़ी थी, उनकी दूसरी जीत है और इससे पहले भी एक बहुत आसान जीत दर्ज की थी आद्या तिवारी और जे मीना ने। अब कोरिया से उनका हाई स्टेक्स वाला मुकाबला होना है। तैराकी में श्रीहरी नटराज 50 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया है। हॉकी में भारत का आज मुकाबला इंडोनेशिया से होना है। और अच्छी खबरें लगातार एशियाई खेलों से आ रही हैं। बैडमिंटन में भी भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है, तो भारत बहुत से खेलों में पदक का दावेदार है। शतरंज ओलंपियाड की खबर आपसे शेयर कर लेते हैं। शतरंज ओलंपियाड साथियों याद होगा 2 साल पहले बुडापेस्ट में हुआ था हंगरी में, और वहां पर भारत ने महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में खिताब जीत करके एक अविस्मरणीय उपलब्धि हासिल की थी, एक नया इतिहास रचा था। और इस समय भारतीय टीम, पुरुष और महिला टीम, वो समरकंद में मौजूद है जहां पर शतरंज ओलंपियाड खेला जा रहा है। 5वें दौर में भारत ने नेदरलैंड्स को पराजित किया है। भारत की ओर से डी गुकेश और प्रज्ञानंदा ने अच्छी जीत दर्ज की, अपनी बाजियों में उन्होंने नेदरलैंड के खिलाड़ियों को हराया और भारत के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। इस राउंड में जीता नेदरलैंड, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। और महिला वर्ग में भारत पोलैंड से हार गया, ये भी एक संयोग है साथियों कि बुडापेस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले जो शतरंज ओलंपियाड हुए थे जहां पर भारत ने महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में खिताब जीते थे, वहां पर भी भारत को पोलैंड ने पराजित किया था 8वें दौर में, लेकिन यहां समरकंद में भारत को 5वें दौर में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बेहतरीन मुकाबलों का आगाज हो चुका है और मैनचेस्टर सिटी और सदरलैंड के बीच कल मैच खेला गया एटिहाड स्टेडियम पर, जहां पर सदरलैंड ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया लेकिन अंततः सिटी ने 5-3 से जीत दर्ज की। बर्नमथ लिवरपूल के साथ खेल रहे थे, घरेलू मैदान पर 0-1 से हारे। अलेक्जेंडर ईसाक ने टीम के लिए गोल किया। ब्राइटन ने आर्सेनल को पराजित किया 3-0 से। आर्सेनल मौजूदा चैंपियन है इंग्लिश प्रीमियर लीग के, ब्राइटन से हार गए उनके घरेलू मैदान पर। टॉटनहम को एक और हार का सामना करना पड़ा अपने घरेलू मैदान पर, एस्टन विला से हारे 2-3 से। ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को अपने घरेलू मैदान पर 3-0 से हराया। एवर्टन ने हराया इप्सविच को 1-0 से। फुलहम और मैन यूनाइटेड का मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। लीड्स और पहले 0-0 की बराबरी पर छूटे और न्यूकासल ने हल सिटी को 2-1 से हराया। बर्थडे की बात कर लेते हैं, 21 सितंबर यानी आज के दिन क्रिस गेल क्रिकेटर अपना बर्थडे मना रहे हैं। वेस्टइंडीज के एक और क्रिकेटर कटली अम्ब्रोज अपना बर्थडे मना रहे हैं। भारत की स्क्वाश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल अपना बर्थडे मना रही हैं। 22 सितंबर को अनीसा सैयद शूटर का बर्थडे होता है। 23 सितंबर को एक और शूटर अयोनिका पॉल का बर्थडे होता है। क्रिकेटर अंबाती रायडू अपना बर्थडे मनाते हैं। 24 सितंबर को महेंद्र अमरनाथ अपना बर्थडे मनाते हैं। 25 सितंबर को गौरव घई गोल्फर का बर्थडे होता है। 26 सितंबर को एक और शूटर अनीश भानवाना अपना बर्थडे मनाते हैं। बैडमिंटन बैडमिंटन खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी अपना बर्थडे मनाते हैं और सेरेना विलियम्स का बर्थडे होता है और 27 सितंबर ब्रैंडन मैकुलम का बर्थडे है। तो स्पोर्ट्स पल्स में फिलहाल अनुमति दें, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, शिवेंद्र को अनुमति, नमस्कार।
8: Seven runs, they go 2-1 up in the series.
3: Sports Pulse.
0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4वें चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते, वहीं महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

ये कुड़ी जानी पहचानी है और शहर भी कहाँ अनजाने रह जाते हैं जब आप और हम मिलते हैं इस फ्रिक्वेंसी पर, इस चैनल के माध्यम से आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट, और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे स्टार्स। फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। उसी दुआ के साथ स्वागत है आप सभी का, जी हाँ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। तो स्वागत इस गाने के साथ, और ये कुड़ी तो बिल्कुल जानी पहचानी है और शहर भी आप जानते हैं, और किस शहर से आप मुझसे जुड़े हैं वो भी मुझे पता चल जाता है जब आप हमें मैसेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वैसे तो पूरे भारत में आप हमें सुनते हैं और देश के साथ, इस देश में हम सब चाहे अलग अलग स्टेट्स में, राज्य में रहते हैं, लेकिन ये है दिल से दिल तक का कनेक्शन। ये वो फ्रिक्वेंसी है जिसके माध्यम से हम आपसे और आप हमसे जुड़ जाते हैं। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये सफर जारी रहेगा यूं ही आकाशवाणी रेनबो पर।

रुके रुके सी जिंदगी झट से चल पड़े, इसलिए मैंने ये गाना प्ले किया ताकि आप बिल्कुल रिवाइव रिफ्रेश हो जाए आज के दिन के लिए, यानी मंडे के लिए। और मंडे जब आता है तो एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि हफ्ते का ये पहला दिन होता है और एक एनर्जी, अलग ही एक एनर्जी लेवल हम सब के अंदर होता है। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे वादे होते हैं जो आपने खुद से किए होते हैं और आप कहते हैं कि अपना इसकी शुरुआत मंडे से करेंगे, मंडे से ये शुरू हो जाएगा, है ना। संडे को पूरा आप रिलैक्स करते हैं, उसके बाद कहते हैं मंडे से हो जाएगा। तो ये जितनी बार आपने ये जो कहा है ना काम कि मंडे से वो शुरू हो जाएगा, मैं मंडे से एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगी, या मंडे से मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगी, बस आज और खा लेती हूँ, और मंडे से मैं नए प्रोजेक्ट पे काम करूंगी, तो वो मंडे आ चुका है। तो जो जो आपने कहा था वो कर लीजिए, इससे भी ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगले मंडे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो कल करना है उसे आज करें और जो आज करना है उसको अभी कर लें, इसी पे जीना सीख लीजिए तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और आसान हो आपकी ज़िंदगी का हर एक सफ़र, उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि कैसा रहेगा मौसम का हाल। घर से बाहर निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलें, जैसे तैयार होकर आप अपने काम पर सफर पर निकलते हैं। तो अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। और बारिश नहीं होगी आज, वैसी पूरी संभावना है, और ना ही तेज धूप का सितम होगा। तो इसके लिए इस तरफ से आप बेफिक्र रहिए, और आसमान अभी साफ है और धूप भी खिली रहेगी, तो बस इस हिसाब से अपने सफर का इंतजाम आप कर लीजिए। मास्क जरूर लगाइए, बदलते मौसम के बीच अपना ख्याल रखना जरूरी है। मौसम में थोड़ा थोड़ा सा जो बदलाव है वो आप महसूस जरूर कर रहे होंगे, तो इस बदलाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए हर बदलाव को अपनाते हुए। जी हाँ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का सफर है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर सफर आसान हो उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। आखिर ये मन ही तो है जो आपको परेशान करता है, अपने आप अपनी तरह से आपको चलाता है। इसको जो अच्छा लगे वो आपको अच्छा लग रहा है तो ही कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो मत कीजिएगा। ज़्यादा मन के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है। और अभी एक मन में मेरे बात आ रही है और मुझे थोड़ा थोड़ा सा वो परेशान कर रही है। अगर आप भी मेट्रो से सफ़र करते हैं तो ज़रूर आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और वो बात ये है जो बातों बातों में मुझे याद आई है कि मेट्रो के सफ़र के दौरान, तो मेट्रो से हमारा जो सफ़र है वो बहुत ही आसान है और उस सफ़र को करना मुझे अच्छा लगता है। और एक वाक्य जो हुआ जो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मेट्रो में सफ़र करते वक्त जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, जो हम कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं आप उनके लिए रखें, जो ओल्ड पीपल हैं, है ना, या फिर दोज़ हु आर चैलेंज्ड, जो है ना। और तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि जो बहुत ही यंग हैं बच्चे वो भी बैठ जाते हैं, और उसके बाद कई बार जब कोई पर्सन है ओल्डर पर्सन, जब वो उनसे बोलते हैं कि आप इस सीट से उठ जाइए, तो वो कुछ ना कुछ उनके पास बातें होती हैं जैसे कि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मैंने मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और मुझे लगता है कि जब वो जो रूट था और जहाँ से वो चढ़े थे तो वो पहला स्टेशन था जब उन्होंने सीट ली होगी, तो जब हमें पता है कि ये रिज़र्व सीट है तो हम कहीं और भी बैठ सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि वो सीट उन्हीं लोगों के लिए है, वो हमें कायदे से खुद ही, अगर कोई हमसे मांग रहा है और जब वो ट्रैवल कर रहे हैं एम्स तक उन्हें जाना, उन्होंने बोला कि मुझे जाना है, उनकी तबीयत ठीक

नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे में हमें सीट दे देनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो एक चर्चा का विषय हो जाता है जब आप मेट्रो में कुछ इस तरह की बात होती है, तो फिर आपको पता है फिर बातों में बात कितनी सारी होती है कि कोई कहता है कि जो आज के बच्चे हैं इनमें कहाँ ही ताकत है, ये कहाँ ही अच्छा खाना खाते हैं, इनसे बेटर तो हम हैं। लेकिन चलिए, उन्होंने सीट नहीं दी वहाँ पर, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने सीट ऑफर कर दिया और उनको बैठा दिया गया। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर वो सीट रिजर्व है, अगर उन लोगों वो तो आप हमें वहाँ नहीं बैठना चाहिए हम सबको, और अगर हम बैठ भी गए हैं तो फिर जैसे ही कोई आता है तो हमें खुद ऑफर कर देनी चाहिए। कई बार तो इस तरह की भी बातें होती है कि बस आंखें बंद कर लेते हैं उसी वक्त कि हाँ हमें कोई उठाए ना या हम सो रहे हैं। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो यंग बच्चे हैं, ये जो नहीं खाते हैं, या हमने अच्छा खाया है ये नहीं खा रहे, तो आप अच्छा खाइए ना, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, कोई कमी नहीं है, अच्छा खाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट कीजिए, और उसके बाद बस अच्छे से खाइए, वर्कआउट कीजिए, अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। और ये सब समझते हैं, कभी भी कोई तकलीफ में होता है तो लोग खुद से ऑफर करते हैं सीट, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान कि जो हमसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है हम उनको सीट दें, और अगर किसी के लिए रिजर्व है तो मुझे लगता है कि वो कोई मांग रहा है तो दे देनी चाहिए, आप किसी और से बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और एक और बहुत बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेट्रो की हमने बात की है, ये जो सफर है वो इतना आसान बन जाता है, तो जो मेट्रो फेज 4 है उसमें जो गोल्डन लाइन है उसकी शुरुआत जो है वो जल्द ही होने वाली है, तो ये एक अच्छी खबर है। तो सफर जो होगा वो आसान हो जाएगा तुगलकाबाद से संगम विहार तक का, और 80% से ज्यादा काम जो है इस फेज में गोल्डन लाइन में के लिए हो चुका है, तो फिर बस दिसंबर तक इसके खुलने की पूरी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि इस रूट पर भी आप जाएंगे तो आनंदित होंगे, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे तुगलकाबाद से संगम विहार तक, दिसंबर तक खुलने की पूरी उम्मीद।

जब भी मैं रंग शब्द सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि रंगों से आप इमेजिन कीजिए ना कि कितने खूबसूरत रंग हैं प्रकृति में। अगर आपने देखा है उन फूलों को, पत्तियों को, पेड़ पौधों को, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक रंग में कितने सारे शेड्स हैं, कितना सब कुछ, ये रंग बिरंगा, ये जो कलरफुल है सब कुछ, वो कितना सुंदर लगता है। और हमारा देश भी देखिए ना, हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं और हर देश की संस्कृति अलग है, विरासत अलग है, खूबसूरती अलग है, वहाँ का खान पान कितना ही अलग है और कितना ही स्वादिष्ट है। आप किसी भी राज्य में जाएं, उसकी अपनी खुद की पहचान है और उस पहचान से वो जाना जाता है। और जब बात करते हैं भारत की, तो हम बिल्कुल कहते हैं अनेकता में एकता का ये जो देश है वो अपने आप में बहुत ही खास है और इतना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं। और जब आप वो देखते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, और जब आप देखते हैं शिल्पकारों को, उनकी बनाई गई चीज़ों को, तो कितना सुंदर सब कुछ लगता है ना, जब वो बाजार सजता है और आप जाते हैं और देखते हैं कि क्या खूबसूरत उन्होंने हस्तशिल्प की चीज़ें बना रखी हैं। और मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं तो हमें वो सब खरीदना भी चाहिए, और हम खरीदते भी हैं, वो जो बुनकर हैं जो बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाते हैं। तो आज ही नहीं बल्कि हम हर दिन हर वक्त ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो जो प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, रंग बिरंगी खूबसूरत सी, हमारे लिए जो बनाई गई हैं, हम उनको परचेज करें। और ये जो बात मैं कर रही हूँ कि हम सब एक संकल्प लें, और एक संकल्प से ही शुरुआत हुई, आज बहुत सारी बातें की संकल्प पर, और सेवा संकल्प अभियान जो है इसका भी आयोजन किया जा रहा है। और ये जो सेवा संकल्प अभियान है उसकी शुरुआत 17 सितंबर से हुई है और 17 अक्टूबर तक हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन अपने अपने तरीके से किया जा रहा है, लेकिन आज हम इसमें बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, जिसका अर्थ है कि देश अपनी ज़रूरतों के उत्पाद जो हैं वो स्वयं बनाएं, उनका उपयोग करें, और उत्पादन और आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बने, और साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी इससे, जिसका इसका उद्देश्य यही है कि जो देश के छोटे उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों और एमएसएमई उद्योगों को मजबूती मिले, है ना, और लोगों को रोजगार मिले, जो हमारी पारंपरिक कला है उसका संरक्षण हो, पारंपरिक जो हस्तशिल्प है, हथकरघा है, स्वदेशी कलाएं हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको पहचान मिले, उन कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया जाए, साथ ही साथ जो भी वो हमारे लिए बना रहे हैं, और साथ ही हम देश में ही वो चीज़ें बनाएं जिसकी हमें ज़रूरत है ना। और साथ ही ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि हम लोकल से ग्लोबल तक जाएं, और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचें, तो ये भी इस अभियान का लक्ष्य है। तो कोशिश ये करें कि जो आपके देश में बनाया जा रहा है आप उसको खरीदें, और इससे क्या होगा आप बखूबी समझते हैं कि इससे ना केवल हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि हम एक आत्मनिर्भर भारत का

सपना भी साकार कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कीजिए, वोकल फॉर लोकल, समझिए इस बात को, बहुत ज़रूरी है ये हम सबके लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गीत संगीत कितना सुकून देता है हमें, है ना? और सब कुछ हम सुकून के लिए तो करते हैं, अच्छा खाते हैं, जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं, और जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है कि हमें उससे सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले।

है ना। और ये कितना ज़रूरी है आपके जीवन में, सुकून, पीस। कहते हैं ना कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे परेशान मत करो, मुझे थोड़े से शांति में रहने दो। तो इसके महत्व को समझिए कि पीस में रहना कितना ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें सिर्फ तभी नहीं, सोशल लेवल पे बात करें सिर्फ तब भी नहीं, और हम देश की बात करें या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भी ये बहुत ज़रूरी है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि हम फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, है ना। तो उसका मतलब यही है कि आपके आपके लोगों के साथ भी कैसे संबंध है, पीसफुल रिलेशनशिप्स हैं या नहीं है। कंट्री के लेवल पर भी हम देश की बात करें या और देशों की बात करें तो उसमें भी हमारा दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, पीस। पीस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका जो साथ दें, इसका जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, उसको अपनाएं, क्योंकि शांति, अहिंसा और आपसी सहयोग से हर काम को आसान कर सकते हैं, हर बात को बनाया जा सकता है ना। एक दूसरे से जब बात करते हैं शांति से बैठकर, तो हर बात का हल निकल जाता है। तो हर बात का हल है पीस में। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और आज की इस बार की जो थीम है वो है शांति में निवेश करें, सभी के लिए, हर जगह, हर दिन। इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे। और कितना ज़रूरी है ये तो आप समझते ही हैं। जब आप अपने पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं तो हमें भी मानवता और एकता पर जोर देना है। हमें ये समझना है कि शांति से बात करके हर बात का समाधान निकल जाएगा। और अगर हम बात करें आपके पीस की भी, तो आपका वो अपना पीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पीस के साथ आप पहुंचेंगे ऑफिस, वैसा काम करेंगे, आगे भी वैसा ही होगा, हर लेवल पे वैसा ही होता जाता है। तो जब आप पीस में होते हैं तो आपकी डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी बेटर होती है, और आपकी सेहत के लिए तो ये ज़रूरी है ही। तो इन्जॉय कीजिए आज के इस दिन को, थोड़ा सा पीस में रहने की कोशिश कीजिए और देखिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

आ पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो के सफर में ये सफर बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये सफर बिल्कुल जारी है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने, इसमें आपके साथ होंगी निशा धवर। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक, और इसमें आपके साथ जुड़ेंगी अदिति बिष्ट। और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ होंगी आकृति खंडूरी प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स में। तो कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप जुड़े हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूं इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विश्व के शीर्ष नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कल से 28 सितंबर तक होने वाली वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के खेजड़ली गांव में 18वीं सदी के दौरान खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी बिश्नोई और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता संघर्ष कम करने और बातचीत फिर शुरू करने पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें पूरी नहीं करता तब तक वह हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने या बातचीत पर विचार नहीं करेगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने नेदरलैंड्स पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। वहीं महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं निशा हूँ आपके साथ में। दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर आ गई हूँ। और देखिए, गाने का नाम लिया और बस वो धुन आपके कानों तक पहुंच ही रही होगी। ये है वही प्रोग्राम जहाँ पर नए गानों के साथ साथ तीन खास रेट्रो गीतों का तड़का भी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। लेकिन वो कौन से गाने होंगे ये जानने के लिए तो आपको हमारे साथ बने ही रहना होगा। सो कीप लिसनिंग आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM। गुड मॉर्निंग।

अगर इस टाइम पर रेट्रो गीत के मिलने की आप शुभकामनाएं कर रहे थे तो देखिए मिल ही जाएगा। दिल की तरह ने गाने नए पुराने हैं ये, और इसमें अब पहला रेट्रो गीत आपको सुनवा रही हूँ। और ये फिल्म है जो बहुत ही प्यारी है, 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सौतन इज द नेम ऑफ द फिल्म। सावन कुमार ने ये फिल्म बनाई थी राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर। अच्छी पारिवारिक फिल्म है, गाने के सभी गाने जो हैं फिल्म के बहुत अच्छे हैं। और उसी में से ही हमारे प्यारे किशोर दा और लता जी की आवाज में खास बड़ा ही सुंदर गाना लेकर आई हूँ। जिंदगी की बहुत अच्छी सीख हमें दे रहा है। बस इस गाने को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनते जाइए और एंजॉय कीजिए। आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM।

0: यह दिल के तराने गाने नए पुराने, लेकिन एफएम रेनबो 102.6 पर अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026 that we are bringing to you live on Akashvani. I am Sakshi Mandwal and joining me here this morning is my dear friend and co-commentator for the day with me, Abhinav Punchi. And the best news to our dear listeners today as we start this day today is that India started their note on a winning momentum today in shooting, getting the silver in the men's 10-meter air rifle team event, where India just finished behind China. Rudraksh Patil and Himanshu Dhillon led India's challenge, while Parth Mane contributed as India secured the second place, thereby winning the silver, while China took away the gold and South Korea claimed the bronze. This is also the best news that comes in way for all the Chinese shooters, as China made a world record today with a score of 1899, while India was a close second with the score of 1890.1 in the men's 10-meter air rifle team event. For Rudraksh Balasaheb Patil, who was born in December 2003, on 16 December, should I say, it is a moment that he was taking pride for. Coming from Thane, Maharashtra, specializing in the 10-meter air rifle event, one of India's finest rifle shooters, he rose to international prominence after winning the gold medal in the men's 10-meter air rifle at the 2022 ISSF World Championships in Cairo. And from there, everything was history for this young man. Himanshu Dhillon, another coveted star in the Indian shooting team event, is another name that we shall be remembering for forever. He enjoyed a breakthrough season in 2025, winning 2 gold medals and 1 bronze medal at the ISSF Junior World Cup in New Delhi and Seoul. He continued his impressive form in 2026. And the final nail in the coffin that brought us that coveted silver would be Parth Rakesh Mane, who announced himself in the world stage in 2024 by winning the gold medal in the 10-meter air rifle men's junior event at the ISSF Junior World Championship in Lima, Peru. And that is what we say, a perfect team, Abhinav, a perfect combination to start the day on a sweet note for India.
3: जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत इंडिया के लिए, एंड वो बेहतरीन शुरुआत एमएमए में भी हमें मिली है, क्योंकि एक और मेडल आया है एमएमए से। ऑफिशियली वी हैव अ ब्रॉन्ज मेडल। सुचिका तरियाल फॉट रियली हार्ड, टियो हुई हुन अगेंस्ट सिंगापुर, एंड तक शी वाज इन द कॉन्टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट दैट बाउट 2-0। सुचिका वॉज हार्ट ब्रोकन, विजिबली अपसेट एंड इमोशनल, बट सुचिका बक अप, लॉन्ग वे टू गो, एंड यू हैव गिवन इंडिया अ लॉट ऑफ प्राइड एंड समथिंग विच रियली बोड्स वेल फॉर द फ्यूचर। सो एन ऑफिशियल ब्रॉन्ज देयर फॉर इंडिया आफ्टर द आउटस्टैंडिंग सिल्वर इन शूटिंग। एंड ऑल्सो साक्षी, गुड न्यूज आ रही है टेबल टेनिस से।
2: हाँ जी, गुड न्यूज आ रही है अभिनव, आपने अच्छा बोला, टेबल टेनिस की दुनिया से, बिकॉज इंडिया कंप्लीटेड अ 3-0 विन ओवर पाकिस्तान इन द वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई। जी हाँ, श्रीजा अकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान 11-4, 11-4, 11-5, एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी दोस्तों, जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका योगदान इस भारतीय जीत में बहुत अहम किरदार निभा गया। मैं बात कर रही हूँ सिंड्रेला दास की, हु वाज ऑन हर एशियन गेम्स डेब्यू एंड शी बीट कलुसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, thereby हेल्पिंग इंडिया गेन एन अर्ली एडवांटेज ऑफ अ 2-0 अर्लियर विन ओवर पाकिस्तान। एंड फाइनली भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर ये जीत अपने नाम तय कर ही ली।
3: ऑफकोर्स जीत हमें मिली है सॉफ्ट टेनिस में भी। आध्या तिवारी एंड जे मीना, 3 मैचेस थे आज, मंगोलिया को हराया, कंबोडिया को हराया, बट साउथ कोरिया से हारने के बावजूद भी इंडिया हैज फिनिश्ड सेकंड इन द ग्रुप एंड दे हैव एडवांस्ड टू द राउंड ऑफ 16। सो सॉफ्ट टेनिस इज समथिंग व्हिच द इंडियंस कुड गेट अ मेडल इन द फ्यूचर।
2: जी, और अब थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक खबर आपको दूंगी स्विमिंग की दुनिया से, बिकॉज धनुष सुरेश मिस्ड आउट ऑन द मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल, फिनिशिंग 22nd ओवरऑल विद द टाइम ऑफ 1:03.46, दैट लीव्स श्रीहरि नटराज एज इंडियाज ओनली स्विमर इन द फाइनल टूडे विद द मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल स्टिल टू कम, एंड देर आर मेनी मोर as we say swimming events lined up for the day, but as we say the day has just started and we are hoping this is going to turn out to be one of the best days in the early start of the Asian Games 2026. With that, for me right now, Abhinav aur mujhe Sakshi ko dijiye

0: इजाजत, हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लाते रहेंगे विद द नेक्स्ट अपडेट कमिंग एट 10:30 AM ऑन आकाशवाणी।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

कॉकटेल 2 से ये गाना आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म लेकिन दिल के तराने गाने रहे पुराने में, अब भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस आवर का आखिरी रेट्रो गीत एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी थोड़ी सी बेवफाई, बिल्कुल थोड़ी सी। यस, ये इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई थी इस्माइल श्रॉफ ने और इसमें राजेश खन्ना साहब और शबाना आजमी की बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। तो खयाम साहब का म्यूजिक इंजॉय कीजिए, हमारे गुलजार साहब के बोल हैं एंड दिस लवली सॉन्ग गोज़ आउट फॉर यू।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर सात के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

102.6 FM रेनबो, दिल के तराने, गाने नए पुराने में मैं निशा, और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही म्यूजिक है। लेकिन यस, यहाँ पर म्यूजिक का कोटा कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM आपको सुनते रहना है। 10 बजे के बाद से आएगा मैचलेस म्यूजिक आवर, अदिति विश लेकर आएंगी आपके लिए, सो कीप एंजॉयिंग द म्यूजिक। आई एम निशा, साइनिंग ऑफ, एंजॉय योर डे।

0: 70.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Welcome to 102.6 FM Rainbow. My name is Aditi and this is the Matchless Music Hour. Now, in case if you are traveling in Delhi, if you're out on the streets driving, well, there is a slowdown on Main Rohtak Road. There is a 7-minute delay. There is a 6-minute delay on Lala Jagat Narayan Marg and also a 6-minute delay on Bhagwan Mahavir Marg. So if you're there, well, everybody knows now that there is a delay. So nobody would get mad at you. Also, Arvind Marg is badly in traffic. And in case if you also want to let us know about any other traffic snags anywhere in Delhi or outside Delhi, the number is 9868107070. And weather in Delhi right now is at 33 degrees and it is about to go up to 35 and 36 as the day progresses. Now, with that, we come to our song and we're going with Joe South with The Games People Play.

0: I promised to bring the song back for you because right now is the time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026 IG Nagoya.
2: Hello and a very warm welcome to the 10:30 a.m. update of the ongoing live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026. और दोस्तों आज की खुशखबरी बस बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि शूटिंग की दुनिया से अभी तक कुल मिलाकर 4 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है. और अगर आज की खास तौर से बात करें तो आज शूटिंग की दुनिया में हमने देखा किस तरह से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया. एंड द बेस्ट न्यूज दैट केम was from the world of individual shooting के अंदर, जिसमें 10 meter air rifle में हमने देखा कि हिमांशु ढिल्लो ने he finished with a score of 252.4 finishing second. वो हमारे लिए लेकर आए silver medal. और वहीं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल brought us the bronze with a score line of 230.9. China के Sheng Lihao won the gold medal with 254.2. That was one of the best news over here with us today this morning, Abhinav, indeed.
3: Of course, excellent news from the world of shooting, Sakshi, because shooting mein hame team event mein bhi, 10 meters air rifle team event mein bhi, we got silver. Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. Yaad dilaye, Himanshu Dhillon apna Asian Games ka debut kar rahe hain. Toh shandaar shuruaat hui hai unki aur shandaar shuruaat hui hai India ki shooting se.
2: जी, और अभिनव थोड़ा आप हमारे आज श्रोताओं को स्कीट के बारे में बताना चाहेंगे, जो स्कीट के भी शूटिंग के इवेंट्स चल रहे हैं, एक खुशखबरी वहां से भी थोड़ी दी जाए.
3: जी हाँ, शूटिंग के स्कीट मेंस टीम फाइनल में इंडिया के भवतेश सिंगल, एजेएस नरुका और मेहराज अहमद खान स्कीट के फाइनल में है. अभी 5th पोजिशन में करंट अपडेट है इंडिया का स्कीट में, तो होपफुली दे इम्प्रूव.
2: Yeah, long way still up ahead for our Indian shooters. लेकिन शूटिंग की दुनिया से अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. And let's also look at what happened in Regu today. And not much good news over there because Japan ने वहां पर भारत को 3rd और final group B match में team Regu event के अंदर 2-1 से हरा दिया. Yes, the result meant that Japan won the overall tie 2-1 with India having taken the opening match earlier in the contest. तो शुरुआत में जीत एक राउंड के अंदर हमें हासिल तो हुई थी, लेकिन जापान अंत में बाजी मार गया भारतीयों के हाथ से.
3: जी हाँ, रेगू में तो इंडिया की अच्छी आज शुरुआत नहीं हुई है, मगर बॉक्सिंग में शानदार शुरुआत. मेन 70 केजी राउंड ऑफ 32 में सुमित कुंडू ने अपना मैच जीता थाईलैंड के बैनजोंग सिनसिन के खिलाफ 5-0. जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिया इनको ऑफ 10 इन ऑल द राउंड. सो अ सुपर्ब स्टार्ट फॉर सुमित देयर. एंड Sakshi, superb start for the Indian women in their hockey match.
2: Indeed, and what a start, pretty much on the expected lines ki aaj Bharat ek bahut overwhelming performance and strong commanding performance dikhayega, and that is how they are turning out to be against Indonesia. Barrage of goals Indian women's team ki taraf se have taken India to a 9-0 lead in the first half. And uske baad agar hum baat kare to first half ke baad bhi jab khiladi wapas aaye hain to bhartiya khiladiyon ne fir se apna दबदबा दोस्तों दिखाना शुरू कर दिया है. 2-0 की लीड ले चुके अगेंस्ट इंडोनेशिया. ऋतुजा पिस्ला, लारे सेमी, साक्षी राणा आर गोल स्कोरर्स फॉर द डे. अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कमांडिंग स्टार्ट बाय इंडियन वुमेन हॉकी टीम.
3: जी हाँ, हाफ टाइम पे 6-0 स्कोर है इंडिया और इंडोनेशिया का हॉकी मैच में. मगर कबड्डी की बात करी जाए तो आज इंडिया का मैच जापान के साथ चल रहा है ग्रुप ए में. जापान की शुरुआत अच्छी थी, बट इंडिया इज इन टोटल कंट्रोल राइट नाउ. 42-17 से इंडिया लीड कर रहा है आज जापान के अगेंस्ट. सो ट्रिमेंडस स्टार्ट फॉर इंडिया. एंड ऑफकोर्स हम मेडल्स की बात करें तो हमारे पास एक और मेडल आज गारंटीड हुआ है, वो है ब्रॉन्ज मेडल. एंड साक्षी, ट्रिमेंडस एफर्ट देयर बाय सुचिका तरियाल.
2: यस इंडीड, बट ऑल्सो अगर बात करें तो आज हम सभी ने देखा किस तरह से उनकी आंखें अभिनव नम हो गई थी लास्ट में, बिकॉज शी वॉज होपिंग टू नॉट गेट द ब्रॉन्ज बट रादर गो फॉर द सिल्वर फॉर इंडिया. बट वी हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज. अ वेरी हार्ट फेल्ट एफर्ट बाय द यंग गर्ल ओवर देयर फॉर इंडियंस. डेफिनेटली उनके लिए आगे उनका भविष्य भारतीय खेल और भारतीय दुनिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है. हियर्स टू हर मेकिंग इंडियंस प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ मेडल इज अ मेडल. एंड फॉर दैट हार्ट फेल्ट विन दैट शी बॉट फॉर इंडिया टुडे, हियर्स अस अपलोडिंग हर एफर्ट्स विद दैट. आई थिंक अब इनफ, अभी वक्त हो गया अपने श्रोताओं से इजाजत भी लेने का.
3: जी हाँ, एंड प्लीज ट्यून इन बैक विद अस एट 11:30 AM. आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा आकाशवाणी पे. इंडिया इज राइट नाउ 10th ऑन द मेडल्स टेबल. 6 मेडल्स हैव ऑलरेडी कम. होपिंग फॉर मच मोर. स्टे ट्यून टू आकाशवाणी.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
0: Well, you were listening to the Asian Games 2026 update, and now we're back to Matchless Music Hour, and as promised, here comes Four Tops with Standing in the Shadows of Love.

0: Well, that is Four Tops with Standing in the Shadows of Love. And this song sounded so good on ears that it was covered by 25 different artists, including the Jackson 5, Barry White, Rod Stewart, Phil Collins and the Ventures. But that's still a long way from the song that's believed to hold the record of having been covered the maximum number of times, which is over 2,200 times. All right, let's see if you can tell which song is this that has been covered over 2,200 times. Let's give you a little bit of hint. It's a song by the Beatles. Which song do you think it is that has been covered over 2,200 times? Let us know on 9868107070. Now we're going to take a short break and we will tell you the correct answer after the break. Stay tuned.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
9: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
10: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं. इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती. समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है. साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है. जनगणना 2027 को सफल बनाए.
11: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विश्व के शीर्ष नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कल से 28 सितंबर तक होने वाली वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से श्रीनगर में हो रहा है। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के खेजड़ली गांव में 18वीं सदी के दौरान खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी बिश्नोई और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमरीका उसकी शर्तें पूरी नहीं करता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने या बातचीत पर विचार नहीं करेगा। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने नेदरलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे बॉलीवुड के अपडेट के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ रहूंगी मैं आकृति खंडूरी।

जी हाँ, बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों के साथ इस घंटे आकाशवाणी रेनबो, जिसे सुनते हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। किस पर? न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।

और फिलहाल तो हम आपसे कहने वाले हैं आज की अपडेट्स कौन कौन सी हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में। बॉलीवुड की गलियों से बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन पहली खबर आ रही है गोलमाल फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में, जो कि बॉलीवुड की टॉप फिल्म फ्रेंचाइजीज में से एक है और सबसे पुरानी भी है। पहला पार्ट 2006 में आया था और अब इस फिल्म फ्रेंचाइजी का पांचवा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा। इस बात की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 8 जनवरी 2027 को गोलमाल 5 यानी कि इसका पांचवा पार्ट रिलीज किया जाएगा। रोहित शेट्टी, जिन्होंने इस तरह की फिल्म को डायरेक्ट किया, कॉमेडी को फ्रेंचाइजी का रूप दिया और हाँ, सारे के सारे जो दर्शक हैं ना, पसंद भी किया। वैसे मानना तो पड़ेगा, आप भी इस बात को मानोगे कि कहाँ एक तरफ रोहित शेट्टी जो है वो सिंघम जैसी एक्शन फ्रेंचाइजीज लाते हैं और वहीं दूसरी तरफ गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्म, आसान बात तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। वैसे 21 साल हो गए इस फिल्म को चलते चलते, बहुत कुछ बदला है, खुद फिल्म की कास्ट में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदली है और वो है इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। चारों जो पार्ट अभी तक आए थे सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा खासा चला। गोलमाल की शुरुआत हुई थी 2006 में, उसका टाइटल गोलमाल फन अनलिमिटेड रखा गया था और अच्छी खासी चली। फिर दो साल के बाद गोलमाल रिटर्न्स आई, उसने भी ठीक ठाक जो है इसका परफॉर्मेंस रही और फिर इसके ठीक दो साल बाद यानी कि 2010 में गोलमाल 3 रिलीज की गई। इस फिल्म ने भी 40 करोड़ के बजट के मुताबिक अच्छी खासी 170 करोड़ रुपए की कमाई की गई थी, ब्लॉकबस्टर ये साबित हुई थी। और फिर 7 साल तक गोलमाल फ्रेंचाइजी की कोई फिल्म नहीं आई और फिर फाइनली 2017 में रोहित शेट्टी ने गोलमाल अगेन के साथ कमबैक किया और ये फिल्म भी जो है हिट रही है और अब इस फिल्म का पांचवा पार्ट 10 साल के इंतजार के बाद आ रहा है। बहुत कुछ बदला है। अजय देवगन की इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एंट्री ले ली है और वो पहली बार इस फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने हैं और माना जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि वो इस फिल्म में विलन के तौर पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखना होगा 8 जनवरी अगले साल जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फैंस का पहली की तरह एंटरटेनमेंट कर पाती है या नहीं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: I see you bluffing, I can see you fronting, coming from my angle, I can see you hunting, everybody wants some.
4: Voices in my head keep coming in the hundreds, trying to make me fall, but I came from the dungeon.
5: Put it on the line, yeah, I bet. 101.6 MHz पर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेस, और बॉलीवुड ट्रेस में हमने आपको बताया गोलमाल 5 जिसकी रिलीज डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है 8 जनवरी को अगले साल यानी कि 2027 8 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। वैसे 8 जनवरी की बात करें तो काफी बिजी रहने वाला है ये दिन, क्योंकि इसी दिन अक्षय खन्ना स्टारर पैन इंडिया फिल्म महाकाली की रिलीज होने की भी बात कही गई है। और वहीं गोविंदा के बेटे यश आहूजा की डेब्यू फिल्म हीरो की हीरोइन ये फिल्म भी 8 जनवरी को ही आने वाली है, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बढ़िया मुकाबला होने वाला है। दिलचस्प ये रहेगा कि ऑडियंस जो है वो चुनती किसको है।

Yeah.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द एशियन गेम्स फ्रॉम आईची नगोया। और खुशखबरी है भारत के लिए, भारत के कबड्डी टीम ने धमाकेदार शुरुआत करी है। जापान वर्सेस इंडिया मैच में 49-24 वाज़ द फाइनल स्कोर। ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन टीम, सो एन एक्सलेंट स्टार्ट। आपके साथ हैं अभिनव पुंशी एंड मेरे साथ हैं साक्षी मानवाल। एंड साक्षी, आल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द हॉकी अरीना।
3: इंडीड अभिनव, खुशखबरी का सिलसिला आज जारी रहेगा और रहना चाहिए, बिकॉज भारत ने आज इंडोनेशिया को हरा कर इन अ वेरी कमांडिंग एंड कॉन्फिडेंट मैनर 17-1 से विक्ट्री को अपने नाम कर लिया इन द वुमेन्स हॉकी मैच। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट इंडिया हैड ऑल्सो डिफीटेड उज्बेकिस्तान रिसेंटली इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स एंड दैट वॉज 19-0। वन इम्पॉर्टेंट नेम दैट स्टूड आउट इन द लास्ट गेम एंड ऑल्सो टूडे वॉज दीपिका सहरावत। लेट्स रिमाइंड listeners over here that Deepika Sehrawat had scored a record-breaking 8 goals, setting a high for individual goals in the women's hockey match at the Asian Games last time in the match against Uzbekistan. And today also she proved

0: to be a very important contributor in the goal making for India, along with Sunilita Topo, Ruturaj Bisal, Sakshi Rana, Salima Tete and Navneet Kaur, amongst other Indian goal scorers. Abhinav.
1: Excellent news from Kabaddi as well as the hockey arena. Magar soft tennis mein disappointment, Aditya Tiwari aur Jay Meena. Performance achhi thi apne group stages mein, Mongolia ko haraya, Cambodia se ko bhi haraya, matlab South Korea se haarne ke baad round of 16 match mein India fell to defeat against the Philippines 2-5. To quarter finals mein nahi pravesh kar paye Aditya Tiwari aur Jay Meena. Magar ab hum jaate hain shooting ki taraf and shooting se update denge aapko Sakshi.
0: Ji, thank you Abhinav. Aur shooting ki agar hum baat kare तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग के अंदर आज पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर टीम इवेंट में उन्होंने अपना आज का दिन समाप्त किया है. वहीं अगर हम मेंस टीम इवेंट की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पांचवें स्थान पर पहले दिन की समाप्ति पर आज अपना प्रदर्शन समाप्त किया है. टीम स्टैंडिंग्स में चाइना रही नंबर एक पर 143 के साथ, कजाकिस्तान रहा नंबर दो पर 138 पॉइंट्स के साथ और वहीं भारत रहा 132 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर पहले दिन की समाप्ति पे.
1: जी हाँ, स्कीट इवेंट तो तीन दिन तक चलेगा मगर शूटिंग में मेडल्स आए हैं और क्या मेडल्स, क्या परफॉर्मेंस. पहले शुरुआत हुई थी आज दिन में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में, जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने ने इंडिया को एक सिल्वर मेडल दिलाया. और बस वो ही नहीं, उसके बाद 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मेंस में रुद्राक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज और हिमांशु डिलन, जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, सिल्वर मिला. और पहली बार हमें 2026 में पोडियम में दो भारतीय दिखे, हिमांशु डिलन और रुद्राक्ष पाटिल. तो शानदार शुरुआत हमारी हुई है शूटिंग में.
0: यस इंडीड, एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन आवर शूटर्स बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग एज द एशियन गेम्स प्रोग्रेसेस फर्दर. लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट लेकर आते हैं एमएमए की दुनिया से भी, बिकॉज हमें तो आज पता है कि सुचिका तारियाल, जो भारत की तरफ से एमएमए में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, शी हैड लॉस्ट द सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन 60 किलोग्राम अगेंस्ट अ सिंगापुरियन अपोनेंट हुन हुई त्यो. दो एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एबल टू ब्रिंग इंडिया द कविटेड ब्रॉन्ज मेडल. बट यहां पर निराशाजनक खबर जो आई, एंड एज पर रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पोरिंग इन, द मैच वॉज अवॉर्डेड टू द सिंगापुर फाइटर, द इंडियन कैंप प्रोटेस्टेड एंड इवेंचुअली द मैच वॉज कॉल्ड अ ड्रॉ. अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भारतीय कैंप की तरफ से प्रोटेस्ट आई, तो इन द इवेंट ऑफ अ ड्रॉ द रूल दैट हुएवर इज लाइटर किक्ड इन एंड सुचिका, जो कि सिर्फ 700 ग्राम ज्यादा थी वजन में अपने अपोनेंट से, वो इस मैच को हार गई. और एज पर रिपोर्ट्स शायद यही वजह रही कि भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर संतुष्टि करनी पड़ी. शायद इसी वजह से आज वो काफी निराशाजनक, निराश भी दिखी थी और उनकी आंखों से आज अभिनव काफी ज्यादा आंसू भी गिर रहे थे.
1: जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग देयर फॉर सुचिका. मगर मेडल्स टैली में भारत अब 10th पोजीशन पे है विद 6 मेडल्स सो फार, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज. शूटिंग हैव बीन सेंसेशनल फॉर इंडिया एंड लॉट मोर मेडल्स एक्सपेक्टेड. और याद दिलाएं आपको सारे अपडेट्स आईची नगोया से लेकर हम आएंगे एवरी आवर. अगला अपडेट होगा 12:30 PM पे. आप प्लीज स्टे ट्यून टू आकाशवाणी, होपिंग फॉर मोर मेडल्स फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.

बॉलीवुड न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सुना होगा आपने आज खबरों में कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर 27 के लिए क्वालिफाई फिल्म भारतीय फिल्म अंक के बारे में नागालैंड के फिल्म मेकर हैं तेजा रियो, इनके डायरेक्शन में बनी है फिल्म अंग, जिसने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज जीता है। और नागालैंड की ही पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म जो है बहुत बड़ा सम्मान है, ये नाम इन्होंने किया है। और साथ ही साथ ये जो अचीवमेंट है इसलिए भी खास है क्योंकि इस अवार्ड के साथ फिल्म ने 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कैटेगरी में सीधी की सीधी अपनी जगह जो है वो बना ली है। खास बात इस फिल्म के बारे में कही जा रही है कि ज्यूरी ने अंक को उसके नए नजरिए, बहुत ही शानदार सिनेमेटोग्राफी और अनोखी दुनिया की को गहराई से और खूबसूरती से पर्दे पर उतारने के लिए इस प्राइस को, प्लेटफॉर्म प्राइस को दिया गया है। फिलहाल फिल्म की कहानी 1960 के डेकेड की है, नागालैंड की है, जहां एक पिता और उसका बेटा जो है इन्हीं के रहन सहन, इनके तौर तरीके, इन सब और कैसे समाज में धीरे धीरे जो बदलाव होता है इसके साथ साथ ये अपनी सोच को बरकरार रखते हैं। खास बात इस फिल्म के बारे में ये भी है कि ये जो अंग फिल्म है इसकी भाषा, तो ये पूरी की पूरी फिल्म जो है कोन्याक भाषा में शूट की गई है। कोन्याक नागालैंड का कोन्याक समुदाय का प्रमुख भाषाओं में से एक है और बहुत ही कम इस भाषा का में फिल्म्स बनी हैं। वैसे तेजा रियो की अगर हम बात करें तो 2021 में भी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उनकी शॉर्ट फिल्म के आधार पर फिर उन्होंने अंग नाम की ही फीचर फिल्म बनाई। और इस फिल्म को भी क्लेरमोन फेरन इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। नागालैंड के रेजा रियो फिल्म मेकर हैं, यूके के नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। और इनका ज़्यादातर फिल्म्स जो भी ये बनाते हैं उसका मकसद जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट भारत की कहानियाँ और आवाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। अंग से पहले रियो ने डिसोसिएट, चेक पोस्ट एंड ए डे ऑन अ संडे जैसी शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट की थी।

सुन रहे हैं आप बॉलीवुड रील्स और हमारी जो रेगुलर लिस्नर्स हैं इंतजार कर रहे होंगे कि हम बॉलीवुड सरताज का आज का सवाल कब पूछेंगे। जी हाँ, वक्त हो चला है कि हम पेश करते हैं आज का बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसका सही जवाब सबसे पहले हम तक जो पहुंचाएगा वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। हमारे व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको इस सवाल का सही जवाब भेजना है वो है 9868107070। और सवाल ये है कि गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर का नाम आपको हमें बताना है। इस फिल्म के बारे में हमने चर्चा की थी, पांचवी फिल्म जो है वो 8 जनवरी 2027 को रिलीज हो रही है और पहली फिल्म इस फ्रेंचाइजी की 2006 में रिलीज हुई थी, गोलमाल वन अनलिमिटेड, फिर गोलमाल रिटर्न 2008 में, गोलमाल 3 2010 में और गोलमाल अगेन 2017 में रिलीज हुई थी। और अब 10 साल के बाद गोलमाल 5 8 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है। आपको मुझे ये बताना है आज का बॉलीवुड सरताज सवाल ये है कि गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर का नाम क्या है।

0: गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर का नाम क्या है? यही है आज का बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले पहुंचाकर बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो तैयार है आप आज जानने के लिए कि कौन बन रहा है आज का बॉलीवुड सरताज। हमने आपसे सवाल पूछा था कि गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर का आपको नाम बताना है। बहुत से जवाब हम तक पहुंचे हैं, लेकिन सही जवाब के साथ आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं या बन रही है कंचन सोनिया विहार नई दिल्ली से, जिन्होंने बताया है रोहित शेट्टी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर हैं। वैसे रोहित के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने हम तक इस सवाल का सही जवाब पहुंचाया है। सबके नाम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूंगी। सूरज कुंड से तरुण कोहली साहब का सही जवाब आया है। सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब मेरठ से हम तक पहुंचा है। शिव का मेरठ से, पूजा और कोमल आयुष का हरिनगर दिल्ली से, उत्तम नगर से अनिल शाह साहब का, नितिका पारेकर, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, धर्मशाला से ईशा का सही जवाब, पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब के साथ हमसे रहे हैं, विष्णु गार्डन से बाबू एंड सोनिया, राजकुमार के संतानी साहब, उमेश कुमार साहब खयाला से, बसंत तोमर मेरठ से, गुड्डू धाकर उज्जैन से, रोहित शेट्टी, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर दिल्ली से बोल रही हैं, देवेंद्र इंगती असम से, अधर्म भाटिया जी, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सुमरन मुखी, मंजीत कौर दिल्ली से, कंचन सोनी से, और ये सही जवाब के साथ

हमसे जुड़े हैं हरीश साहब। और इसके अलावा एक और मैसेज आया है रोहित का ही, जिन्होंने कहा है रोहित शेट्टी फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर हैं।

और इसी के साथ मुझे यानी आकृति को भी फिलहाल इजाजत दीजिए आज के बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ, लेकिन रेनबो पर हर घंटे एक अलग रंग किस्म हम आपके साथ रहते हैं। प्लेट कूल लेकर अदिति आ चुकी हैं स्टूडियो में, कुछ ही मिनटों में आपके साथ रहेंगी और रेनबो हेल्पलाइन में 1:02 पर मैं ही आपके साथ रहूंगी। और आज बात करूंगी कुछ ऐसे टॉपिक की, जैसे मैं कहती हूं ना कि शायद हमारी जनरेशन एक ऐसे दौर में है जहां पर करियर के जो मायने हैं वो बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो करियर भी बदलेगा। आज की रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक है स्टेप इनटू टुमारो, न्यू एज करियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज। पूजा सिंह जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन कंसल्टेंट है हमारे साथ रहेंगी और 2:02 पर आशियाना प्रोग्राम लेकर शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: Well, it's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
2: आपका स्वागत है एशियन गेम्स अपडेट्स ऑन आकाशवाणी. आपके साथ हैं साक्षी मानवाल और मैं अभिनव पुंछी. और लेटेस्ट खबरें हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं बैडमिंटन के अरीना से, जहां लक्ष्य सेन इंडिया के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है. बांग्लादेश के अजमान के खिलाफ 21-4, 21-12 पहला मैच जीता और दूसरे मैच में आयुष शेट्टी गौरव सिंघा के अगेंस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं. 21-4 पहला सेट उन्होंने जीता और दूसरी गेम में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं. तो बैडमिंटन में आज इंडियन मेन्स टीम ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी. और हमारे साथ है साक्षी. एंड साक्षी, शूटिंग की खबरें से हमें प्लीज अपडेट करिए.
3: जी, और पहले तो अभिनव शुक्रिया फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन. जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन. अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ. तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं. वहां पर रायजा ढिल्लो ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का. और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर. वहीं परनाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया. तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर. पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ. कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ. और भारत की महिलाएं रही तीसरे स्थान पर 132 अंकों के साथ. अब अगर हम मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूँ आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नारुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ. अब आप ये सोचिए. और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे. तो अगर ओवरऑल देखें तो मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ. कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से, अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है. तो ओवरऑल मेन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दे अभिनव.
2: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेन्स कबड्डी टीम, ऑलराउंड परफॉर्मेंस. And they beat Japan 49-24, comprehensive win. और Aichi Nagoya Asian Games में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे मेन्स कबड्डी टीम से. और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारे विमेन्स हॉकी टीम से, जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे हैं.
3: जी हाँ जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया. अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं. और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था. एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच. और आज भी उनका जो योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ वो भी काबिले तारीफ रहा. उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है रुतजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी. और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे. लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें.
2: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का. मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन और पार्थ माने. और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में, जब रुद्रांश पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू में एक और मेडल, वो भी सिल्वर. एंड साक्षी, एमएमए की दुनिया में भी हमने कमाल दिखाया.
3: जी हमने एमएमए की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर एमएमए की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के, सारे चाहने वालों के मन में एक हल्की सी कसक रह गई हो, लेकिन मुबारकबाद तो देनी बनती है क्योंकि सुचिका तारियाल हमारे लिए, भारतीय सारे फैंस के लिए आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इसके ऊपर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे दोस्तों। एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे 1:30 बजे आकाशवाणी पर विद द ऑन गोइंग लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
0: Well, you were listening to the Asian Games 2026 update. And well, with India already adding medals at the Asian Games, there's plenty to cheer about. But you know what? Whether you're on a sports field or at work or just trying to get through a difficult Monday, sometimes the best thing you can do is stop worrying about the result and just enjoy the moment. Here's One Republic with I Ain't Worried.

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। उन्होंने ये बात आज नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से श्रीनगर में हो रहा है। सत्र के दौरान कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सहाद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सूबी खाड़ी पहुंचे। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की वायुसेना ने आज

तड़के अफगानिस्तान के कुनार और पत्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे यही कहना चाहती हूं कि टेक्नोलॉजी ने आज हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है, मानते हैं हम कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रोबोटिक्स तक और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए स्किल्स और नए करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रही है। ऐसे में हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपका जो करियर है, जिसे आपने चूज किया है, वो फ्यूचर रेडी है या नहीं। आइए टेक्नोलॉजी की इसी तेज रफ्तार के साथ कदम बढ़ाएं और एक्सप्लोर करें रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक, जो है स्टेप इनटू टुमारो, न्यू एज करियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारी आज की एक्सपर्ट पूजा सिंह, जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन काउंसलर हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में आपका।
2: थैंक यू मैम
1: जी। और स्टेप इनटू फ्यूचर, फ्यूचर का करियर कैसा होगा, न्यू एज का करियर कैसा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे जहन में तो बहुत से सवाल हैं, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता, शायद वो खुद यूथ होंगे, इस अपने करियर में अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर होंगे जहां पर वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के करियर आने वाले समय के करियर हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई होगा। क्वेरीज को हम तक पहुंचाइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800110026 पर भी हमें फोन कर सकते हैं। रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो का नंबर है 2342108020 एंड 2342108082। इन सभी नंबर्स के माध्यम से आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पूजा, आपसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि न्यू एज करियर्स जो हैं वो होते क्या हैं।
2: न्यू एज करियर्स लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड जो अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो गई, हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनके बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो दीज आर द ऑप्शंस। सो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में, फॉर सपोज अभी आईटी हमारा बहुत चल रहा है, एआई आ गया है मार्केट में, सो फॉर दैट एआई इज अ वॉस टेक्नोलॉजी। आप एआई के अंदर आपकी साइबर सिक्योरिटीज भी हैं आपके पास में, देन आपके पास में आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, डाटा एनालिस्ट वगैरह आ गया है, ये सारे दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस। अब दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस में स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमें किस फील्ड को चूज करना है, और इस फील्ड में, किस फील्ड में जाने के बाद हमारा करियर सिक्योर्ड है, वो चूज करना इज इम्पॉर्टेंट। इसमें हमारा ये है कि जो हमारे फिक्स करियर में आते हैं, जैसे हम मेडिकल हो गया, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करियर है। इसमें इवन दो लॉयर्स भी हो गए, ये हमारा सिक्योर्ड करियर है। बट अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करें, इसमें हमारा आईटी है, हमारा एआई आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग है हमारे पास में, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एंड ऑल आ चुका है, दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस।
1: बिल्कुल। तो जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल करियर्स होते थे, पारंपरिक, जैसे कि आपने अभी बात भी की, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, इनसे ये जो न्यू एज करियर हैं, सवाल एक ही उठता है कि डिफरेंट कितने हैं, और दूसरा ये है कि पहले तो क्या होता था, जिंदगी गुजर जाती थी एक ही प्रोफेशन में, तो अब अपने आप को अपडेट करने की या नए करियर्स का जो एक लाइफ स्पैन होता है वो कितना है, आपके एक्सपीरियंस और आपके नजरिए से।
2: देखिए, अगर अभी सपोज अगर आप हम करियर्स की अगर हम बात करें, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इसके साथ में आपको एज अ प्रैक्टिकल वे में आपको आगे मूव फर्दर करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज है, देन आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। एआई इज लाइक अ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी।

0: स्टेप, ठीक है। एंड सेम एज आपका इसमें भी आता है जो आपका साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल है, ये सारा आपका सिक्योरिटी सिस्टम में आता है, इसमें भी आपको अपडेटेड रहना है। सिक्योर्ड फील्ड की अगर हम बात करें, सिक्योर्ड फील्ड में आपके पास में मेडिकल का ऑप्शन है, टीचिंग का ऑप्शन है, लॉयर का ऑप्शन है, दीज आर द सिक्योर्ड ऑप्शन फॉर यू। इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट न्यू टेक्नोलॉजीज में आपको एक्सप्लोर करना है एंड आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लोर करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
1: चॉइस जो है, प्रेफरेंस क्या है, लेकिन कई यूथ ऐसे होते हैं पूजा जो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, तो कोई आप टिप देना चाहें कि जिससे वो समझें कि हाँ ये है, नहीं तो मन जो है ना कई जगह पे घूम रहा होता है इस एज
0: नहीं
1: में।
0: बिल्कुल, स्टूडेंट्स का ये है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत होते हैं, उन्हें ये लगता है कि नहीं, हाँ मैं फर्स्ट सपोज अगर बीटेक की बात करें, बीटेक में मल्टीपल फील्ड्स हैं
1: जी।
0: अब बच्चे क्या करते हैं कि बीटेक में उन्हें ये है कि नहीं, हाँ मुझे सिर्फ सीएससी करना है, सीएससी कोर करना है, या मुझे किसी एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच में जाना है। स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं, क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे किस ब्रांच को चूज करने से आगे मेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहेगा, किस ऑप्शन को मैं चूज कर सकता हूँ। इस चीज के लिए स्टूडेंट एटलीस्ट एक करियर काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास में कोई गाइड है या आपके टीचर्स हैं जो भी है, उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं एंड कमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि नहीं, हाँ आप किस स्ट्रीम में जाना आपके लिए बेटर है वो आप चूज कर सकते हो। बिकॉज स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, सो दैट कि फर्स्ट ये है कि आपका एप्टीट्यूड, आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, आपका जो एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है उसमें आप किस चीज में बेस्ट है, वो सारी चीजें आप देख के एनालाइज कर सकते हैं, देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ दिस इज द बेटर फ्यूचर फॉर मी।
1: जी जी, तो पूजा सिंह जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन काउंसलर हैं, हमें बता रही हैं स्टेप इनटू टुमारो न्यू एज के क्या करियर हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज क्या हैं। आपके सवाल भी होंगे, एक सवाल रोहित का हम तक ऑलरेडी पहुंच चुका है जो कह रहे हैं कि एआई के आने से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं न्यू एज करियर्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, रेनबो हेल्पलाइन से स्टेप इनटू टुमारो न्यू एज करियर न्यू पॉसिबिलिटीज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे कहना यही चाहती हूं कि फ्यूचर यानी कि हमारा जो भविष्य है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो आज एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, आगे की सोचते हैं, स्टेप इन टू टुमारो। जी हाँ, रेनबो हेल्पलाइन में आज का हमारा यही विषय है। उस बदलती दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर करियर्स सिर्फ नौकरी नहीं, केवल पैसा कमाने का जरिया ही नहीं, बल्कि इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, टेक्नोलॉजी का और नए आइडियाज की पहचान बनाने का है। न्यू एज करियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी एक्सपर्ट पूजा सिंह, जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन काउंसलर हैं। और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और रोहित का एक सवाल सबसे पहले आ चुका है दिल्ली से। पूजा, और ये कहना चाहते हैं कि AI के आ जाने से ये जो न्यू एज के करियर्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा?
9: न्यू एज के करियर्स में AI के आ जाने से आपका मेन सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल जोन पे जा चुकी हैं। इवन दो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल जोन पे जा चुकी हैं, ठीक है। सो इसमें काम करने का तरीका ही सारी तरीके से चेंज हो चुका है। आप इजीली सारी चीज़ों, आप अपने टास्क को बड़े ईजिली ही कम्प्लीट कर सकते हैं। इस चीज़ में अब ये हो चुका है कि आप AI सिर्फ IT स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, इवन द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, वहाँ हर एक फील्ड में AI आ चुका है।
8: बिल्कुल।
9: तो AI हम सिर्फ ये नहीं, AI को हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। AI सिर्फ टेक्नोलॉजीज में नहीं आ गया, AI ऑल ओवर फील्ड को कवर अप कर रहा है। सो अगर आपको AI के उसमें जाना है, AI फील्ड में अगर आपको जाना है, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी स्टेप। हाँ जी। तो और ह्यूमन स्किल्स में भी AI आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी इस टाइम पे। सारी चीजें हम, जैसे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए। ये सारी चीजें भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है हमारा डाटा साइंस से। डाटा साइंस इज बैकएंड ऑफिस, आप AI के पीछे ले सकते हो। सारी चीजें AI को हैंडल कर रहा है हमारा डाटा साइंस, वो सारी चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट है। तो सारी चीजों को कवर अप ही कर रहा है AI। और AI आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफी एक वास्ट टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगा। सो आपको हर एक ईच एंड एवरी स्टेप में, इवन द एवरी फील्ड में AI आपको कवर अप कर रहा है। तो ये आपको पहले से, अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं हाँ आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी है, सो आपको एक बेटर स्ट्रीम चूज करनी है कि नहीं हाँ आपका मेन प्रेजेंस में आप क्या चूज कर रहे हो कि नहीं हाँ मुझे AI में, टेक्नोलॉजीज में जाना है या मुझे सम अदर कोर्स में जाना है, वो आपको चूज करना पड़ेगा।
8: तो इस मोड पर एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि यूथ में ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आने वाले जो ये फ्यूचर के करियर्स जो हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्किल्स।
9: स्किल्स में अगर हम बात करें ना, स्टूडेंट्स को अपडेट होना चाहिए अपने सिस्टम्स के साथ में। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज में है। स्टूडेंट सपोज है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में है। आजकल के स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी चूज करूं या मैं AI एंड मशीन लर्निंग में जाऊं या मैं डेटा साइंस में जाऊं या मैं एथिकल हैकिंग में जाने वाला हूं या मैं डिजाइनिंग में जाने वाला हूं, बिकॉज हर एक फील्ड को कवर अप कर रहा है AI। तो स्टूडेंट को इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। स्टूडेंट को पहले फर्स्ट स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मैं किस चीज को अडाप्ट कर सकता हूँ, अडाप्टेबिलिटी कितनी है मेरे अंदर, उसके बेसिस में फिर मैं चूज कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट को ये खुद से रियलाइज करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। देन फिर वो डिसाइड कर पाएगा कि नहीं हाँ मुझे AI में जाना है या मुझे सम डिफरेंट फील्ड चूज करनी है. वो स्टूडेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा और ये क्लैरिफाई करने के लिए उन्हें काउंसलिंग लेनी होगी, इधर अपने टीचर से आप लें, एक उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है ईच एंड एवरी स्टेप पे. अदरवाइज अभी के जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते इधर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है या मुझे टेक्नोलॉजीज में जाना है या मुझे फाइनेंस वगैरह में जाना है या मैं मेडिकल फील्ड में जाने वाला हूँ या मैं सम अदर फील्ड में जाने वाले. स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, इवन अगर वो साइंस स्ट्रीम के है, स्टिल वो कंफ्यूज है.
10: जी जी, असल में एज ही ऐसी है कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है. लेकिन जो पूजा से बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपके अंदर सीखने की जो स्किल है ना वो सबसे पहले जरूर होनी चाहिए, एक्सप्लोर करने की. ये नहीं कि थोड़ा सा बस किसी के बारे में पढ़ा, किसी के बारे में किसी पेयर से सुना और डिसीजन ले लिया. आप अलग हैं और आप का प्रोफेशन भी अलग ही होगा जिसमें आप सक्सेस होंगे. एक होता है प्रोफेशनली वर्क करना क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देता है, एक होता है कि उसके माध्यम से ऊंचाई तक पहुंचना. उसके लिए आई थिंक जो पूजा बार बार कह रही है कि अपग्रेड करना अपने आप को अपडेटेड रखना, यानी कि एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी, एक जानने की इच्छा, एक लर्निंग की इच्छा जो है वो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए. फिर आप चाहे करियर काउंसलर से बात करें या फिर आप किसी और एक्सपीरियंस जो सोसाइटी में वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, आप चाहे उनसे बात करें, आपको फायदा ही फायदा होगा. फिलहाल सवालों का जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है. मनीष मेरठ से बोल रहे हैं, आने वाले समय के कौन कौन से पॉपुलर करियर्स हैं पूजा बताएं.
9: इसमें सबसे मेन ये है कि आने वाले टाइम पे आप AI की तरफ, AI एंड मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, UI UX, अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं. ठीक है, मेनली और इवन तो अगर बैंकिंग सेक्टर्स में है तो सिक्योर्ड फील्ड आपका बैंकिंग सेक्टर्स में भी आता है, आप उनमें भी जा सकते हो. ठीक है ना, दीज आर द टॉप पॉपुलर स्ट्रीम्स जिसमें आपको जाना चाहिए.
10: जी जी, हाँ जी. इसके अलावा एक सवाल हम तक ये पहुंचा है कि फ्यूचर करियर, जैसे आपने बात की UI UX है या AI है या इवन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल दैट, इन सब के लिए क्या केवल टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो ही पर्याप्त हैं या फिर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है?
9: प्रैक्टिकल थिंग्स ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे. आपको इसमें प्रैक्टिकली काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है खुद पे. अगर आप प्रैक्टिकली वर्क करते हो तो फिर आप ये सारी चीजों को कवर अप कर पाते हो. ठीक है ना, अकेडमिक वाइज तो आपको स्ट्रांग रहना ही है बट प्रैक्टिकली आपको हर एक चीज, बिकॉज यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे उतना आप खुद को अपडेट कर पाएंगे. जितना आप अपडेट करेंगे तो उतना आप इंडस्ट्री में स्टिक ऑन रहेंगे.
10: जी
9: हाँ, तो ये सबसे ज्यादा इसमें, इस फील्ड में अगर आपको स्टिक ऑन रहना है तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी स्टेप.
10: एब्सोल्युटली, तो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जेन्युइन, यानी कि जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह है मेरे ख्याल से बहुत फायदे
9: वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप्स होते हैं, टेक्नोटेक वगैरह होते हैं, उसमें आप परफॉर्म कीजिए, आप मल्टीपल सर्टिफिकेशन ऐड कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं ऑनलाइन, वो आप कोर्सेज वगैरह ऐड ऑन कीजिए सो दैट की वो आपका जो कोर स्ट्रेंथ है ना उस चीज को स्ट्रांग करेंगे. वो आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा देन आप फिर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्ट्रांग होगी,
10: वो भी स्ट्रांग होगी. तो टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होगी. ऑफकोर्स इट्स अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंस. और आप जब किसी प्रोजेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो आप वो स्टैग्नेशन में तो रह नहीं सकते. आपके अंदर अगर सीखने की तमन्ना है तो क्रिएटिविटी भी आएगी, इनोवेशन भी आएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कभी कभी टेक्निकल बड़े सारे एरर्स भी आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको सॉल्व करने की. तो कहने का मतलब एक पैशन जो है दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रियली ग्रो इन वंस ओन लाइफ. रेनबो हेल्पलाइन में आज हम न्यू एज करियर्स की बात कर रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, उन करियर्स की जो कि आने वाले समय के करियर्स हैं. एक सवाल हम तक पहुंचा है अमित का गाजियाबाद से, जो ये कहते हैं कि आज पूजा हम लोग डेटा साइंस, आप भी बात कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स के बारे में सुन रहे हैं. आपसे पूजा ये जानना चाहते हैं कि इन सब के बारे में शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए, कहाँ से पढ़ाई की जानी चाहिए, कितना बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है इन फील्ड्स में जाने के लिए.
9: बेसिक क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट ये होता है कि आपका जो 11th और 12th की जो स्ट्रीम है, फर्स्ट आपकी वो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए. साइंस स्ट्रीम के बाद में देन फिर आपको एंटर करना है बीटेक में. बीटेक जब आप एंटर करेंगे, बीटेक में एंटर करने के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है JEE एग्जामिनेशन की, ठीक है ना. जेई के एग्जामिनेशन 2 सेशंस में होते हैं, उन एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा. देन आफ्टर दैट आपको डिसाइड करना होगा इन ये सारी ब्रांचेस हैं, इन सारी ब्रांचेस के बाद में आपको किस एक ब्रांच को चूज करना है.

0: लैब्स हैं या नहीं हैं, प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, प्लेसमेंट कितने परसेंटेज होती हैं, कंपनीज कौन कौन सी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ से शुरू करना होगा।
1: जी, तो न्यू एज के जो टेक्निकल करियर्स हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स साइंस जो है आपका 11th 12th में होना ज़रूरी है, और
0: यस
1: उसके बाद जैसे पूजा कह रही हैं कि बीटेक, वैसे ग्रेजुएशन करें, सर्टिफिकेशन करें, आप आईटीआई वगैरह जैसे इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो स्किल डेवलपमेंट के होते हैं वो भी फ़ायदेमंद होंगे।
0: यस फायदेमंद होते हैं, बट उतने आपको सिक्योर्ड फ्यूचर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं वो।
1: तो डिग्री जो है वो लेनी
0: हाँ,
1: ज़रूरी
0: डिग्री इज
1: है।
0: मस्ट। अगर आपको इंडस्ट्री में स्टे करना है और लॉन्ग स्टे करना है तो डिग्री इज मस्ट। आप डिग्री लेंगे, डिग्री के बाद में, और डिग्री भी आप कहाँ से ले रहे हैं दैट
1: वो भी
0: डिपेंड,
1: मैटर
0: वो
1: करेगा।
0: बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप डिग्री कहाँ से ले रहे हैं, किस कॉलेज से ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, अपडेटेड कितनी लैब्स हैं, उनके प्लेसमेंट का रेशियो क्या है। स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें सर्च करनी होती हैं, स्टूडेंट को ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप जहाँ से स्टडी कर रहे हैं उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या है, उनकी कितनी परसेंट प्लेसमेंट्स एंड ऑल। मेनली जो मैटर करता है वो लैब्स मैटर करती हैं। अपडेटेड अगर लैब्स हैं, फैकल्टीज कैसी हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपको फ्यूचर को ग्रो करने में। सो दैट इज मस्ट, वो आपका बेस होता है, देन फिर आप अपने आप को बिल्ड कर पाते हैं।
1: जी, एक सवाल बार बार आ रहा है, कुछ देर पहले भी मैंने पूछा था। ये पूछने वाले हैं मोहम्मद आसिफ दिल्ली से, जो कहते हैं कि आज स्टूडेंट्स के सामने इतने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, इनमें से सही ऑप्शन को पहचानने का तरीका कैसे सीखें?
0: इंडस्ट्री डिमांड क्या है,
1: हाँ
0: फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्री डिमांड क्या है, मार्केट में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। इवन दो अभी अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी जो है वो बीटेक इन सीएसई की सबसे ज्यादा है,
1: जी
0: ठीक है। अब इसके बिहाइंड अगर हम रीजंस देखें, बीटेक में बच्चों के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सीएसई है, स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, ईसीई है, एमई है, सिविल है, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बट बच्चा क्या चूज कर रहा है, ओनली सीएसई चूज कर रहा है। सीएसई में हमारा किस लेवल का कंपटीशन है, अदर ब्रांचेस में किस लेवल का कंपटीशन है, ये बच्चे को खुद से सर्च करना होगा। इस चीज के बारे में बच्चे को रिसर्च करनी होगी कि नहीं, हाँ मेरा फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर्ड है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट आपको चूज करना है कि आपका आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, आप कंफर्टेबल क्या हो, आप किस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए फर्स्ट आप अपने अकेडमिक्स पे एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपका अकेडमिक्स कहाँ पे स्ट्रांग है, देन आपके एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कितने परसेंटेज आ रहे हैं आपके, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, देन फिर आप चूज करेंगे कि आप किस ब्रांच को होल्ड करने वाले, किस ब्रांच में आप बेटर कर सकते हो। जो ब्रांच आप चूज करोगे उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, इंडस्ट्री वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री
1: ओके
0: डिमांड क्या है, उसके बेसिस में फिर आप डिसाइड करते हैं कि नेहा मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फ्यूचर ऑरिएंटेड प्रोग्राम को मैं चूज करूंगा, सो दैट मेरा करियर और फ्यूचर सिक्योर होगा।
1: जी, रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है उस टॉपिक की जो कि आने वाले कल का है, यानी कि न्यू एज करियर्स और न्यू पॉसिबिलिटीज। हमारे साथ हैं पूजा सिंह, जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन काउंसलर हैं, और आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अभिनव, जो आज हम दोनों आपके लिए एशियन गेम्स के बीच में सारे लाइव अपडेट्स लेकर आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इस पर्टिकुलर अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। बैडमिंटन की दुनिया में भारतीय शटलर्स ने आज बैडमिंटन में भारत के लिए एक शानदार प्रदर्शन देकर भारतीय शटलर्स और बैडमिंटन की दुनिया में आगाज दिया है। जी हाँ, ऑल द थ्री शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी एंड किदांबी श्रीकांत, ऑल थ्री ऑफ देम वेंट ऑन टू विन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स एंड देयरबाय हेल्प्ड इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स बाय गेटिंग अ 3-0 क्लीन विक्ट्री। वेरी स्पेसिफिकली लक्ष्य सेन डिफीटेड आयमन जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12। आयुष शेट्टी वेंट ऑन टू डिफीट गौरव सिंघा 21-4, 21-13, thereby putting इंडिया इन अ कमांडिंग पोजिशन ऑफ 2-0 ऑलरेडी एंड ऑल्सो विनिंग पोजिशन। एंड फाइनली श्रीकांत किदांबी केम इन टू प्ले एंड डिफीटेड हिज अपोनेंट अल अमीन जुमार 21-15 and 21-9। इंडिया नाउ फेसेस जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। अभिनव,
3: शानदार शुरुआत भारतीय बैडमिंटन टीम से। और अब बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग अरीना में तैयार रहिए क्योंकि श्रीहरि नटराज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में। श्रीहरि नटराज स्टार्टिंग पोजीशन उनकी 9th है, मगर बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से भारत को एक मेडल दिलाने के लिए। क्या आज श्रीहरि नटराज का दिन होगा? सारी नजरें हमारे इंडियन स्विमर पर है।
2: जी, और श्रीहरि नटराज को सारे ही भारतीयों की तरफ से विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गिविंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टुडे। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस आल्सो, टेबल टेनिस को दुनिया को बता दें कि भारतीय महिलाओं ने भी आज कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से परास्त करके वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई को जीत कर अपने नाम कर लिया। श्री जाकुला ने जीत हासिल करी फातिमा खान को हराकर 11-4, 11-4, 11-5 से। और फाइनली भारत ने ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आगे बढ़कर अपने नाम को अर्जित कर या क्वार्टर फाइनल्स की रेस में। एक बहुत जरूरी नाम जो मैं यहां पर लेना चाहूंगी, कहूं अहम नाम दोस्तों, वो है सिंड्रेला दास का, हु वाज ऑन अ एशियन गेम्स डेब्यू टुडे। और उन्होंने कलसुम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराकर भारत को एक कमांडिंग पोजीशन में पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा किया था और इसी बुनियाद पर भारत को पहले 2-0 से एक एडवांटेज मिल गई थी अभिनव, जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीजाकुला ने फाइनली 3-0 से पाकिस्तान को हराकर ये टाई अपने नाम करवा लिया।
3: और जो विमेन्स टीम ने करा है, क्या मेंस टीम यही करेंगे आज? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है आईची नगोया में एशियन गेम्स में। ये ग्रुप एनकाउंटर है 3:30 बजे इंडिया और पाकिस्तान एक्शन में देखेंगे। याद दिलाएं, इंडियन मेंस टीम हारे थे ईरान के खिलाफ, तो आज क्या इंडिया कमबैक करेगी?
2: वेल, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज और क्या क्या इवेंट्स आप देख पाएंगे आज के दिन में। पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में वुशु के साथ, जिसमें वुमेन्स सैंडा के 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रोशी बिना देवी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दोपहर 2:30 बजे नजर आएंगी। और वुशु के अंदर ही मेन सैंडा 56 किलोग्राम कैटेगरी में आर्यन भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे दोपहर 2:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर।
3: और आज कबड्डी में इंडियन मेंस टीम ने तो जापान को हराया 49-24, शानदार शुरुआत भारतीय मेंस कबड्डी टीम की। मगर विमेन्स कबड्डी टीम भी एक्शन में देखेंगी 4:15 बजे, जब उनका मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। तो हम चाहेंगे कि आज कबड्डी में क्लीन स्वीप हो, क्योंकि आज इंडिया का मेडल्स टैली तो शानदार रहा है एंड इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एज फार एज द मेडल्स आर कंसर्न।
2: यस इंडीड, एंड व्हेन वी से ऑफ मेडल्स, शूटिंग की दुनिया को हम क्यों भूलें, सबसे ज्यादा मेडल्स तो अभी तक उसी इवेंट के अंदर से हमारे पास आए हुए हैं। 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, जिसमें 2 सिल्वर कल हमारे शूटर्स ने अपने नाम किए थे और 2 सिल्वर आज हमारे शूटर्स ने अपने नाम किया, और उसके साथ साथ 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को दिलवाया। कुल मिलाकर शूटिंग में अभी तक है 5 मेडल्स। लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि भारत की अंक तालिका में जो अभी स्टैंडिंग है वो है 10वें स्थान पर। तो सफर अभी काफी लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे अभिनव बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे इस एशियन गेम्स 2026 के अंदर।
3: जी हाँ, सारी अभी मगर निगाहें हैं श्रीहरि नटराज पे. उनका कंपटीशन शुरू हो गया मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल पे. श्रीहरि नटराज पूरा अपना जोश दिखा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रीहरि नटराज नहीं कोई भी मेडल जीत पाए. और ये लेटेस्ट अपडेट है. अब हम आकाशवाणी में वापस आएंगे 3:30 बजे. आप सुनते रहिए आकाशवाणी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आईची नगोया एशियन गेम्स.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
0: आकाशवाणी रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ. मैं आकृति खंडूरी और आपसे सवाल पूछ रही हूँ आज. मैं सवाल पे सवाल कि क्या आप न्यू एज करियर्स के बारे में जानते हैं या इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा यूथ है या आपके आसपास जो इस दुविधा में है कि नए समय के नए करियर क्या होने चाहिए. क्योंकि आज दुनिया में करियर ऑप्शंस की लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है. कोई AI सीख रहा है, कोई वर्चुअल वर्ल्ड में डिजाइन सीख रहा है, कोई सोशल मीडिया को अपना प्रोफेशन बना रहा है, और कोई जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने फ्यूचर को ढूंढ रहा है. यानी कि मतलब साफ है कि करियर की डिक्शनरी में हर रोज एक नया शब्द जो है जुड़ रहा है. रेनबो हेल्पलाइन में बात हो रही है इन्हीं करियर्स की, न्यू एज करियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज. और पूजा सिंह हमारे साथ हैं जो कि एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर हैं. और बहुत से सवाल आपके लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर पहुंच रहे हैं. और फिलहाल ये मैसेज हम तक आया है डॉक्टर राकेश पुनिया का, जो सवाल पूछ रहे हैं कि AI लैंग्वेज कोर्सेज विद मेडिकल ग्रेजुएट कोर्सेज, क्या ऐसा कुछ भी है कॉम्बिनेशन?
5: नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें.
0: जी
5: हाँ जी, इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है.
0: ऑलराइट
5: दीज आर द सेपरेट ऑप्शंस.
0: दोनों अलग अलग
5: है. यस, इसमें आज सच कोई कॉज नहीं आएगा.
0: ओके. एक चीज कई लोग आपसे जानना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और यूथ को तो अगर हम देखें तो ओनली ब्राउजिंग ही चलती रहती है सोशल मीडिया पे, बहुत समय व्यतीत होता चलता रहता है. तो आप ये मुझे बताइए कि कैन इट ऑल्सो बी टर्न और कन्वर्टेड इंटू अ सक्सेसफुल करियर विच

0: इज ऑफ फ्यूचर.
1: यस इट इज़, बिकॉज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. अभी यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है. इसमें सोशल मार्केटिंग हेड्स वगैरह आ रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स वगैरह की डिमांड आ रही है, ठीक है. इसमें आप ब्रांडिंग कंटेंट वगैरह आप कर सकते हैं, जिसमें जो जितने भी स्पेशलिस्ट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं. इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स यहीं से क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ये एक आपका इनकम सोर्स भी क्रिएट कर रहा है. सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी फील्ड आप चूज कर सकते हो. सोशल मीडिया में अगर हम बात करें, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इसमें.
0: ओके, मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड यू कैन डेफिनेटली टर्न इनटू अ वेरी सक्सेसफुल करियर.
1: डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट वगैरह भी आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है.
0: जी,
1: आप इंटरेस्टेड किस चीज में, आप किस फील्ड को चूज
0: करना चाहते हैं. आरव का सवाल एक हम तक आया है कि कुछ हॉबीज जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, गेमिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, क्या ये भी वायबल करियर्स हो सकते हैं?
1: यस, बिल्कुल हो सकते हैं. इसमें ये भी काफी वास्ट फील्ड है. इसमें अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी काफी. डिजाइनिंग में अगर आप देखा जाए तो अगर यूआई यूएक्स की अगर हम बात करें, इसमें आप वेब डिजाइनिंग एंड ऑल में जा सकते हैं. वेब डेवलपर कैसे होते हैं, वेब डिजाइनिंग, अगर हम हर एक प्रोडक्ट की बात करें, आज के टाइम पे हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि एक प्रॉपरली अगर लोगो भी आपका डिजाइन होता है, प्रॉपरली आपका एक लोगो डिजाइन करने के लिए आपको एक वेब डिजाइनर की जरूरत पड़ती है. आपके पास में एक डिजाइनर होता है, तो ये सारी चीजें भी आप चूज कर सकते हैं. दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू.
0: जी. अब कोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूजा ये बताएं कि कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को कैसे चूज किया जाए.
1: फर्स्ट ये है कि स्टूडेंट का पहले स्टूडेंट का प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज क्या है, ठीक है. कॉलेजेस की अगर हम बात करें, कॉलेजेस आप मेनली फर्स्ट टारगेट कीजिए कि हाँ हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, इधर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है. आप एग्जामिनेशन फर्स्ट आता है कि जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उस चीज़ को आप क्लेरिफाई कीजिए. हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं. इन दिल्ली जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सीईटी और सीयूईटी. दीज आर द टू एग्जामिनेशन जो दिल्ली के अंदर मोस्ट फेमस एग्जामिनेशन है. सीयूईटी फॉर द डीयू एंड आईपी बोथ एंड सीईटी फॉर द आईपी ओनली. अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं सीईटी दूं या सीयूईटी दूं. काफी सारे बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है मैं सीयूईटी दे देता हूं, बिकॉज आईपी सीटी के बेसिस में भी एग्जाम मतलब एडमिशन लेते हैं, सो दैट कि मैं वहां से एंटर कर सकता हूं. बट स्टूडेंट को ये क्लैरिफाई करना है, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप उनके जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आप दीजिए, उनका फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है. उसके बेसिस में आपका एडमिशन होगा, वो आप चूज कर सकते हो. एंड कॉलेज की रैंकिंग आप चेक कीजिए. इफ अगर आप प्राइवेट कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, कॉलेज की रैंकिंग क्या है वो आप चूज कीजिए. वो आपको सर्च करना होगा. देन उनका प्लेसमेंट बैकग्राउंड क्या है, फैकल्टीज कितनी क्वालिफाइड हैं, वो आपको चूज करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है अगर आपको आपका करियर सिक्योर चाहिए तो. बिकॉज इन मार्केट वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर. बट आपको चूज करना है, वो आप जब चूज करोगे, आप रिसर्च करोगे, देन आप चूज कर पाओगे. सो फर्स्ट रिसर्च देन चूज.
0: जी, हाँ जी, पहले रिसर्च कीजिए. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने आंखों को और कानों को जो है खोल के रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी चीज के लिए कंफ्यूज हैं. और फाइनल डिसीजन लेने से पहले बड़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू एज लाइक द स्पेशलिस्ट जो है, उन लोगों से अगर आप बात करेंगे ना, तो जो समय हमारा व्यर्थ चला जाता है इधर उधर ढूंढने में, खोजने में, वो भी बहुत बच जाएगा, बिकॉज टाइम इज इक्वली प्रेशियस एंड द राइट एडवाइस और राइट पर्सन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो किसी करियर काउंसलर से बात कीजिए, या फिर मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आप छोटी जगह में रह रहे हो और आपको वहां करियर काउंसलर्स ना मिले हों, तो किसी ज्ञाता से जरूर बात कीजिए. एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, तो आपको सही व्यक्ति जरूर मिलेगा, या आप उस सही व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाएंगे. फिलहाल एक सवाल मुक्ता का बिहार से हम तक आया है कि इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और जो ये ऑनलाइन कोर्सेज होते रहते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं?
1: वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो हेल्प करते हैं आपकी प्लेसमेंट के लिए. इंटर्नशिप अगर आप करते हैं, इधर वो पेड होती है, अनपेड होती है, ठीक है ना, वहां से आपको सर्टिफिकेशन मिलते हैं. सर्टिफिकेशन जो होते हैं, वहां से आप नॉलेज गेन करते हो, देन फिर आप किसी कंपनी में प्लेस्ड होते हो. जब आप कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है, वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है, अकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस में आपका कभी भी प्लेसमेंट नहीं होता है। आपके मल्टीपल कितने सर्टिफिकेशन आपके पास में, आपने कितने इंटर हंट परफॉर्म किए हुए, इंटर्नशिप्स कितने किए हुए, समर ट्रेनिंग आपने कितने अटेंड की हुई है, सर्टिफिकेशन कितने हैं आपके पास में, उसके बेसिस में कंपनीज आपको हायर करती हैं।
0: अच्छा
1: यस, तो ये दिस इज द मेन
0: वेरी इंपॉर्टेंट,
1: यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।

0: जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको एक हायर पैकेज में, जैसे होता है ना कि स्टूडेंट्स का, नहीं मुझे एक हायर पैकेज चाहिए, हायर पैकेज के लिए आपका जो अकेडमिक्स है, सिर्फ अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपकी जो इसमें इंटर्नशिप होती है वो सबसे ज्यादा, सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते
1: बहुत
0: हैं, ये हेल्प करते हैं आपको. देन फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनीज के साथ में, आप कंपनीज चूज कर सकते हैं.
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो दिस इज द मेन थिंग.
1: तो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप नहीं तो कितनी बार क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन में हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई खूब की और उसके बाद छुट्टियां जो आती हैं उसमें खूब आराम किया. तो आई थिंक दे मस्ट यूटिलाइज और हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंड. इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे कोऑप का कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी ले रहे होते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ देयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. ये लिबर्टी होती है बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में. फिलहाल न्यू एज करियर्स और न्यू पॉसिबिलिटीज की बात चल रही है आकाशवाणी रेनबो पर. हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी, लेकिन हमारी आज की एक्सपर्ट पूजा सिंह, जो कि एजुकेशन एंड एडमिशन काउंसलर हैं, हमें इस विषय में जानकारी दे रही हैं. और हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं वो है 9868107070.

रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारी बात हो रही है स्टेप इनटू टुमारो, न्यू एज करियर्स और न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे यही कहना चाहती हूं कि अगर आपको आज अपने करियर की शुरुआत फिर से ही मौका मिल जाए, करनी पड़े, तो आप क्या चुनेंगे? एक जनरेशन पहले तक के लिए एक ट्रेडिशनल करियर जो कि बहुत हद तक जाता था कि अच्छा बैंकिंग में कर लेंगे या फिर इंजीनियर बन जाएंगे या फिर मेडिकल या फिर टीचिंग में या फिर कोई एक ऐसा फील्ड जिसके बारे में कुछ साल पहले तक आपने सुना ही नहीं था, क्योंकि

0: नया जमाना है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। एआई से लेकर क्रिएटिव करियर्स तक, डिजिटल इकोनॉमी से लेकर ग्रीन जॉब्स तक, आइए जानते हैं कि फ्यूचर ऑफ करियर जो है वो आखिर कैसा दिख रहा है। पूजा सिंह हमें बता रही हैं, एजुकेशन और एडमिशन काउंसलर हैं हमें, और बहुत कुछ हमें बता रही हैं। और आपके सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर हम तक पहुंच रहे हैं। पैंथर तोमर साहब कह रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में एआई को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही हैं फ्यूचर में पूजा?
1: हाँ यस, बिल्कुल बन रही है। वहाँ पे आपके अपडेटेड सिस्टम्स आ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी को मेनली जो कवर कर रहा है वो एआई कवर कर रहा है। अब आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इसमें।
0: जरूर आएंगे पैंथर जी। और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं पूजा स्टूडेंट्स व्हाइल चूजिंग अ करियर?
1: स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, कि जस्ट लाइक वो कॉपी करते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स, इधर किसी ने भी कुछ भी बोल दे कि नहीं हाँ आपको ये करना चाहिए, देन वो रेडी हो जाते हैं नहीं हाँ मुझे ये कोर्स चूज करना है। वो डिसाइड नहीं करते हैं, वो रिसर्च नहीं करते हैं। सो मेनली ये होता है ना, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये कोर्स करने के लिए बोला है, या मेरा फ्रेंड ये कोर्स कर रहा है, या सम अदर पर्सन ने मुझे ये कोर्स एडवाइस किया है, सो मैं यही करूँगा। उन्होंने खुद पे रिसर्च नहीं की कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे अकेडमिक्स के बेसिस में मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ, किस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ। ये दो चीज़ मिसिंग होते हैं स्टूडेंट्स में। इवन इसके बाद होता है कॉलेजेस का। कॉलेजेस भी वो सेम यही मिस्टेक करते हैं कि नहीं कॉलेजेस में मैं क्या कर सकता हूँ, कि नहीं मेरा फ्रेंड उस कॉलेज में है सो मैं उस कॉलेज में जाऊँगा। उस कॉलेज का मेनली कोर्स स्ट्रेंथ क्या है, बैकग्राउंड्स क्या है, उसके प्लेसमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चे ना मिस करते हैं। तो मेरे लिए 3-4 चीज़ें हैं ना बच्चा बहुत ज़्यादा मिस करता है। इवन दो इसमें होता है, अगर हम इंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जो ये बच्चे की ह्यूज मिस्टेक होती है कि नहीं हाँ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म ही नहीं फिल होते हैं बच्चों के पास, वो अपडेटेड ही नहीं होते हैं कि उन्हें इधर लॉ में जाना है, या उन्हें मेडिकल में जाना है, उन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, नॉर्मल सम अदर कोर्सेज में जाना है। सो इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आपको अप्लाई करने होते हैं, वो बच्चा मिस करता है। तो स्टूडेंट्स ये मिस करते ही हैं। मेनली वो

सकते हैं। तो मेरे लिए तीन चार चीज़ें ना बच्चा बहुत ज़्यादा मिस करता है। इवन दो इसमें होता है, अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जो ये बच्चे की ह्यूज मिस्टेक होती है कि नहीं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म ही नहीं फिल होते हैं बच्चों के पास, वो अपडेटेड ही नहीं होते हैं कि उन्हें इधर लॉ में जाना है या उन्हें मेडिकल में जाना है, उन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, नॉर्मल सम अदर कोर्सेज में जाना है। सो इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आपको अप्लाई करने होते हैं, वो बच्चा मिस करता है। तो स्टूडेंट्स ये मिस करते ही हैं, मेनली वो

0: नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कहेंगी पूजा ने?
1: नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज़ में, बट आपको ये चूज करना होगा, सोशल मीडिया में भी वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है? सो वो जो मल्टीपल ऑप्शंस में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इधर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया है, ठीक है ना, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह हो गया, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह हो गया, तो आप किस चीज़ में खुद को एनालाइज करते हैं कि नहीं हाँ मैं इस, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कंटेंट क्रिएशंस में भी अगर हम बात करें उसमें मल्टीपल है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको चूज करना है, तो वहां पे भी सिक्योर्ड फ्यूचर है।
0: तो सोशल मीडिया में आपको करना क्या है
1: वो आपको चूज करना,
0: वो तो आपको चूज करना ही पड़ेगा इन केस यू आर सीरियस अबाउट इट। एंड दूसरा ये है कि उसके लिए जैसे पूजा से हम समझ रहे हैं कि आपको एक्यूरेट जो कोर्स है, कौन सा कोर्स करना है, किस संस्थान से करना है, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से करना है, उसके बारे में भी आपको पूरा हार्डवर्क करना होगा, चूज करना होगा, और सीरियसली उस क्षेत्र में आपको पढ़ाई करनी होगी या स्किल डेवलपमेंट करना ही होगा। आई मीन जस्ट लाइक दैट ब्राउजिंग ऑन फोन और टैब और लैपटॉप वुड नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ अ करियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी, और कुछ सवाल हम तक ये भी आए हैं कि क्या फ्यूचर जॉब्स के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखनी जरूरी है या फिर वी हैव टू लर्न हाउ टू लर्न, ये भी एक जरूरी स्किल है।
1: आपको देखिए टेक्नोलॉजीज भी आपको सीखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज टेक्नोलॉजीज के साथ में आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजीज आपको अभी आज के एट जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से उसके बारे में आप लर्न आउट करेंगे, बट एडिशनल सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, वो जितना आप करेंगे उतना आप स्टैंड कर पाएंगे, उतना आप ग्रो कर पाएंगे, सो दिस इज मस्ट।
0: एक सवाल आया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ा दिया है और रिमोट करियर्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है पूजा, ऐसे में करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या बदलाव आ सकता है फ्यूचर में? और
1: देखिए आगे चल के जो फ्यूचर में चेंजेस आएंगे वो यही आएंगे, ऑटोमोबाइल जोन में सब कुछ चला जाएगा, एआई सारी चीजों को बहुत इजी कर रहा है। सो अगर आपको स्टैंड करना है, सो अगेन मैं कहूंगी जो मैं बार बार कह रही हूँ, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। प्रैक्टिकली नॉलेज जो होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह हैं अभी, वो आप ऐड कीजिए, उसके बेसिस में ही आप स्टैंड कर पाएंगे, उसके बेसिस में ही आप ग्रो कर पाएंगे।
0: जी जी, सलीम मेरठ से पूछ रहे हैं कि क्या छोटे शहरों के और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी न्यू एज के करियर्स के अवसर उतने ही एक्सेसिबल हैं?
1: यस, बिल्कुल है।
0: ऑल राइट, तो चाहे आप कहीं भी रहें, अब तो इंटरनेट क्रांति का समय है हर जगह, अब यूपीआई भारत का इतना वर्ल्ड फेमस हो रहा है, मतलब आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो आप यूपीआई के माध्यम से, चाहे शहर में हो या छोटे शहर में या गांव में हो, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपके बाद क्या करें, भारत आज का बहुत ऊपर पहुँच चुका है, बहुत ऊंचाई तक पहुँच चुका है। आप चाहे छोटे शहर में रह रहे हो या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों, न्यू एज के करियर हम सभी के लिए एक्सेसिबल हैं, क्योंकि समय जो है वो पूरा बदल चुका है। अब चलते चलते पूजा हमारे लिसनर्स को, स्पेशली हमारे यूथ लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगी?
1: जस्ट मैं वही एडवाइस करना चाहूंगी, अगर आप अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा श्योर हैं, फर्स्ट आप इस चीज को चूज कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, वो क्लैरिफाई कीजिए आप, एंड देन फोकस कीजिए कि किस कॉलेज की तरफ आपको मूव ऑन करना है, कोर्स चूज कीजिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो आपको चूज करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड एक स्पेशल, एक स्पेशलिस्ट एडवाइस जरूर लीजिए आप, जो भी आपके नियरेस्ट हो, जो भी आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप उनसे वो एडवाइस लीजिए, सो दैट आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज योर, मतलब आफ्टर 12th दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप टू।
0: जी, थैंक यू वेरी मच पूजा फॉर बीइंग विद अस, और रेनबो हेल्पलाइन से भी मैं आकृति खंडूरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन कहना आपसे यही चाहती हूँ कि फ्यूचर की जॉब्स सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं है, ये है एक नई अप्रोच के बारे में, एक नई सोच के बारे में, एक नई स्किल के बारे में और नई पॉसिबिलिटीज के बारे में भी। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हमने बात की उन नए रास्तों की जो बदलती टेक्नोलॉजीज और बदलती दुनिया के साथ हमारे सामने खुल रहे हैं, तो आंखें खोल कर रखिए और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जी हाँ, स्टेप इनटू टुमारो। इसी के साथ विदा, नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। उन्होंने ये बात आज नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों

न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासामी ने तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। और मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और आपके इस पसंदीदा चैनल पर हम हैं आपके साथ आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना लेकर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, और दोस्तों आज आशियाना में बात कुछ ऐसी होगी जो हर घर की कहानी है। आपके घर में भी कभी ना कभी बच्चे कहते होंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी कभी आप खुद भी सोचते होंगे कि अगर ये चीज़ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बड़े हों या बच्चे, सबकी डिमांड लिस्ट में कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि क्या वाकई में उस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सबकी ज़रूरत है, या फिर वो सिर्फ आपकी डिमांड्स हैं, आपकी इच्छाएँ हैं। समझे ना, मैं बात करने वाली हूँ फ़र्क की जो नीड और डिज़ायर में होता है, यानी कि ज़रूरत और आपकी इच्छाओं के बीच का जो अंतर है उस पर होगी आज आशियाना में बात। क्योंकि परिवार में ना इन दोनों का होना बिल्कुल ही नेचुरल है, लेकिन ज़रूरी है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। क्योंकि समझदारी सिर्फ कम खर्च करने में नहीं है, बल्कि ये पहचानने में है कि किस चीज़ को पहले रखना है और किस इच्छा को थोड़ा सा इंतज़ार कराना है।

बिल्कुल दोस्तों, हर आशियाने में देखने को मिलती है ज़रूरतें और बहुत सारी इच्छाएं जिनका कोई नहीं है अंत। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है ये पहचानना कि ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क क्या होता है। तो हम बात करें अगर ज़रूरतों की, हमारी नीड की, तो ऐसी चीज़ें जिनके बिना हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रभावित हो सकती है, जैसे कि चाहे वो खाने की बात हो, घर की बात हो, दवाइयों की बात हो या फिर एजुकेशन की। लेकिन अगर बात करूं डिज़ायर्स की, इच्छाओं की, तो वो चीज़ जो ज़िंदगी को और बेहतर या फिर सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन उसके बिना काम चल सकता है, उन चीज़ों को हम रखेंगे इच्छाओं की लिस्ट में। तो समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब हम अपनी जो डिमांड की लिस्ट है, जो इच्छाओं की लिस्ट है, उसी को अपनी ज़रूरत समझने लगते हैं और लगता है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हमारी जो इच्छाओं की लिस्ट है वो लंबी होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है बैलेंस बनाने की। इसलिए अगली बार जब आप कुछ ख़रीदने की इच्छा आपके मन में जागृत हो, तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछें कि अगर मैं इसे अभी नहीं खरीदूं तो क्या मेरा काम रुक जाएगा? क्या ये मेरी ज़रूरतों की लिस्ट में है या फिर ये सिर्फ मेरी इच्छा है जिसके बगैर काम चल सकता है? सोचिए।

वैसे अगर अच्छा ही करनी है तो कुछ बड़ा सोचिए, कुछ करने के लिए और अपनी तरक्की के बारे में प्लानिंग करिए और उसको लेकर अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाइए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में बात हो रही है कि हर परिवार में कैसे अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच में बैलेंस बनाया जाए। तो दोस्तों, हर परिवार में बच्चे तो होते ही हों, और जब वो मुस्कुराकर, कभी रूठकर, कभी दुखी होकर कोई डिमांड रखते हैं तो ऐसा मन करता है कि उनकी उस डिमांड को तुरंत ही पूरा कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उनकी हर इच्छा पूरी करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बच्चों को अभी नहीं, ये कहना भी उनकी परवरिश का हिस्सा होता है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि हर चीज़ तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं है और कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। पता है इससे क्या होगा? इससे बच्चे चीज़ों की कीमत के साथ साथ मेहनत, धैर्य और प्रायोरिटीज़ सेट करना भी सीखेंगे। क्योंकि ज़रूरी ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी इस बैलेंस को बेहतर तरीके से बना सके, और इसके लिए उनको बचपन में ही तैयार करना होगा।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने परिवार में अपनी इच्छाओं को और ज़रूरतों को लेकर बैलेंस बनाने की। लेकिन मैंने जितनी भी बातें कहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं पर टोटली ब्रेक लगा दें और अपनी हर इच्छा को गैर ज़रूरी समझकर टाल दें। आखिर ज़िंदगी सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने का नाम भी तो नहीं है ना। कभी कभी मन करता है अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए, परिवार के साथ छोटी सी आउटिंग की जाए, कोई किताब या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदी जाए। और ये भी हो सकता है कि आप अपने साथी को, अपने बच्चे को कोई छोटी मोटी सी चीज़ जो उसको पसंद हो, जो उसकी ज़रूरत हो, वो उसके लिए गिफ्ट के तौर पर ख़रीदना चाहें। ये जो छोटी छोटी इच्छाएँ भी ना जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। और पता है असली बात क्या है? असली बात है कि आप इन इच्छाओं के साथ साथ अपने घर के बजट का ध्यान रखें, प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखें। इच्छा पूरी तो हो लेकिन उससे ना घर में खुशी आए और बाद में उसका बोझ महसूस ना हो, ये बेहद ज़रूरी है।

दोस्तों, कोई भी घर तभी गुलजार होता है जब परिवार के लोग एक साथ समय बिताते हैं, क्योंकि परिवार को खुश रखने के लिए ना ज़्यादा सुविधाओं और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है साथ बिताए गए समय की। अब बच्चों को ही ले लीजिए, बच्चों को शायद नया खिलौना कुछ समय के लिए खुश करे, लेकिन माता पिता के साथ बिताया गया समय उनकी यादों का हिस्सा बन सकता है। परिवार को महंगे सामान से ज़्यादा ज़रूरत होती है समय की, बातचीत की, भरोसे की और एक दूसरे के साथ की। इसलिए कभी कभी शॉपिंग लिस्ट से ज़्यादा ज़रूरी होती है एक छोटी सी फैमिली कन्वर्सेशन।

दोस्तों, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम आशियाना में हमारा ये सफर अभी यहीं समाप्त होता है। आगे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, लीजिए प्रस्तुत है।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
3: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
3: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्यपुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
3: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
3: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
3: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
4: माँ।
5: हाँ बेटा।
4: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
5: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
4: हाँ, पर
5: देखो क्यों? ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
4: पर माँ हमारे
5: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
4: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं।

0: क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
1: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
0: लेकिन माँ सुनो ना।
1: अरे बेटा मैंने कहा
0: सुनो। उफ माँ।
1: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
0: माँ
2: कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
3: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की, उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
4: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
1: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
0: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
1: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
0: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
1: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो, लालटेन टांग दें इससे क्या होगा भला?
0: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
1: बेटा
0: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
1: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
0: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
1: लेकिन क्या बेटा?
0: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना, लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
1: अरे बेटा सुनो तो
0: माँ, एक लालटेन दे दो।
1: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
0: अरे माँ लालटेन दे दो।
1: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है, करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: माँ माँ माँ।
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर, मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी, बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
4: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

0: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
1: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
0: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
1: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
0: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
4: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
3: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
3: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
3: रक्कास,
2: नाचने वाला।
3: ताब,
2: ताकत बर्दाश्त।
3: हिंसा,
2: नंबर अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
3: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
2: सवाल नंबर दो,
3: घड़ी की आवाज कैसी थी?
2: सवाल नंबर 3,
3: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
2: सवाल नंबर 4,
3: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
11: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
12: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
13: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
14: आज की रात मजा,
13: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
12: म्यूजिक मस्ती।
15: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
16: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
12: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। श्रोताओं, मैटिनी मेलोडीज में मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आप सबको जैसे कि पता है कि मैटिनी मेलोडीज में हम पुराने गीतों की बातें करते हैं, तो दोस्तों आज भी हम बहुत ढेर सारे पुराने गीत आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिस गीत में एहसास है कि जब कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान अचानक सामने आ जाता है जिसे हमारी पहली मुलाकात होती है, लेकिन दिल को लगता है जैसे इसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ना कोई पुराना रिश्ता ना कोई पहचान, फिर भी उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसका अंदाज़ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद यही एहसास जब कोई अजनबी भी अपना सा लगने लगता है। और इसी खूबसूरत एहसास को बड़ी ही सादगी और शरारत के साथ आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। और तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की इस दिलकश आवाज में फिल्म हम सब उस्ताद हैं का ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, बट दोस्तों आप हमें जाने पहचाने नहीं लगते, क्योंकि हम और हमारा और आपका जो रिश्ता है बहुत पुराना है और बहुत ही गहरा है। कहते हैं ना, किसी की नज़र में अपने लिए प्यार और अपनापन महसूस होना शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है। कभी कभी सामने वाला कुछ कहता नहीं, बस उसकी नज़रें।
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this.
2: जिसमें ये अल्जाइमर्स की जो डिजीज है वो 65 ईयर्स के पहले भी आ सकती है, तो इसको बोला जाता है अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज, और जो 65 ईयर्स के बाद आती है उसको बोला जाता है लेट ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज। तो जो अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज है उसके जो कारण होते हैं वो ज्यादातर जेनेटिक होते हैं, और ये फैमिलीज में चल रहे होते हैं, या तो वो मदर फादर में या उसके भी ऊपर की जनरेशन में। इस तरह की मतलब हम लोग को कंप्लेंट्स मिल सकते हैं, पेशेंट बता सकते हैं कि उनके मदर को भी भूलने की प्रॉब्लम थी, फादर को भी भूलने की प्रॉब्लम थी। और अगर ऐसा हिस्ट्री मिलता है, इस तरह की कंप्लेंट मिलती है, तब हम अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स के बारे में सोच सकते हैं।
3: लेकिन डॉक्टर, क्या अगर पेशेंट वो जजमेंट दे रहा है कि उनके मदर को भी था, उनके फादर को भी था, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज में था, लेकिन अभी से कोई व्यक्ति 30 या 35 वर्ष की आयु में भी अपने आप को इस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, तो थोड़ा जल्दी नहीं है, क्योंकि उसने मदर पेरेंट्स की एज से काउंट किया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, जब भी इतनी कम उम्र में डिमेंशिया के सिम्टम्स आने लगते हैं, भूलने की प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि दैनिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो अल्जाइमर्स हो, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और यंगर लोगों में हम बहुत अलग बीमारियों के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि खासकर की डिप्रेशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई, ये सिम्टम्स भी उसी, ये बीमारियां भी वही लक्षण उत्पन्न करती हैं जो कि अल्जाइमर्स उत्पन्न करते हैं।
3: जी ओके। डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है, सुधीर सिंह जी कुतुबगढ़ से जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र 45 वर्ष है और दिन में कुछ बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, रात को भी उन बातों को दोहराता रहता हूं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूं, नींद भी पूरी तरह नहीं आती है, हाथों में कंपन महसूस होता है, तो क्या ये डेमेंशिया या फिर अल्जाइमर के लक्षण हैं?
2: अच्छा सुधीर जी, आपका प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जैसी लक्षण उत्पन्न करने वाली काफी सारी बीमारियां हैं, और खासकर कि उसमें सबसे मुख्य रूप से मैं बोलूंगी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और कुछ नींद की बीमारियां भी होती हैं जैसे कि स्लीप एपनिया वगैरह। तो इसमें जो लक्षण आते हैं, जैसे कि दिन में भूल रहे हैं आप, या कंफ्यूजन हो रहा है, या बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, इस तरह के लक्षण आएंगे। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे डिमेंशिया के लक्षण नहीं लग रहे हैं, उससे ये ज्यादा लग रहा है कि आपको शायद घबराहट की प्रॉब्लम ज्यादा है, नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, और इसको टैकल करना काफी सिंपल है। ये अगर ठीक कर देंगे तो आपको बाकी सारे लक्षण भी आपके इम्प्रूव हो जाएंगे।
3: जी डॉक्टर, ये लाइफस्टाइल या स्ट्रेस बेस्ड है इनका, क्योंकि लाइफस्टाइल से शायद अफेक्ट होता है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: एक प्रश्न हमारे साथ जुड़ा है सागर जी का, विजयपुरा कर्नाटक से। ये अपनी उम्र 23 वर्ष बताते हैं, और ये कहते हैं कि खुद चाबी जो है अपने व्हीकल की रखकर भूल जाते हैं, इनफेक्ट कहां पार्क किया है ये तक भूल जाते हैं, और 2-3 घंटे बाद कुछ काम रह गया है नहीं किया वो भी भूल जाते हैं, कोई पूछता है तो मैं वो भी भूल जाता हूँ। व्हाट शुड आई डू, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर।
2: सो इनकी एज बहुत कम है, 23 साल की है सिर्फ, तो अगेन मैं बोलूंगी कि अल्जाइमर्स इस एज ग्रुप में होना बहुत ही रेयर है, इट इज लेस देन 1%।
3: ओके,
2: तो हम लोग को बाकी बीमारियों के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि अल्जाइमर्स की मिमिक्स हैं, मतलब जो अल्जाइमर्स जैसी लगती हैं लेकिन अल्जाइमर्स नहीं होती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली स्पेशली इन दिस एज ग्रुप होंगी विटामिन डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो खासकर की जो विटामिन B12 होती है जो कि वेजिटेरियंस में अक्सर कम मात्रा में होती है, उसकी वजह से अक्सर पेशेंट को भूलने की प्रॉब्लम आती है, एंड वो सिंपल ट्रीटमेंट होता है उसका, मेडिसिन उससे ठीक हो जाता है पेशेंट।
3: जी डॉक्टर, B12 की डेफिशिएंसी के चलते क्या आगे चल के, अभी नहीं तो क्या आगे चल के उम्र में हमें अल्जाइमर हो सकता है?
2: नहीं, अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स में B12 डेफिशिएंसी को बहुत विशेष रूप से नहीं माना जाता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के फैक्टर्स अल्जाइमर्स की तरफ ज्यादा रिस्क बढ़ाते हैं।
3: जी डॉक्टर, सागर अपनी बात को पूरा करते हुए ये भी जानना चाहते हैं, क्या फूड और एक्सरसाइजेस से मैं कुछ अपने आप को हेल्प ले सकता हूँ, बिकॉज अभी मेरी उम्र कम है, बहुत 23 साल है।
2: बिल्कुल सागर जी, आपको बताना चाहती हूँ दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हैं, बिकॉज डाइट और एक्सरसाइज ऐसी चीजें हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डाइट में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि जो रेकमेंडेड डाइट होती है फॉर गुड ब्रेन हेल्थ वो होती है ऐसी डाइट जिसमें फल, हरी सब्जियां और फिश ये सब की मात्रा बढ़ाई जाए, एंड ऑल्सो हेल्दी नट्स जैसे कि अखरोट हो गया या आमंड्स हो गया, ये सब हेल्दी डाइट माना जाता है। एंड जो फूड आइटम्स अवॉइड करने होते हैं वो होते हैं हाई सॉल्टी आइटम्स, हाई फैट आइटम्स जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं, रेड मीट्स इस तरह की। एंड एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज से जो है ब्लड फ्लो ब्रेन का इम्प्रूव होता है एंड डेफिनेटली वो बहुत फायदेमंद है। तो मिनिमम रिकमेंडेशन है कि आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें पर डे एंड कम से कम 5 दिन हफ्ते के जरूर इस तरह की एक्सरसाइज करें।
3: जी डॉक्टर रघुविंदर जी, सुभाष नगर नई दिल्ली से जानना चाहते हैं डेमेंशिया और अल्जाइमर में क्या डिफरेंस है या फिर ये सेम है, ये इनका पहला प्रश्न है, पहले इस पर बात करते हैं।
2: Okay. तो देखिए डिमेंशिया जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म मतलब कि ये कवर करता है बहुत सारी बीमारियों को। डिमेंशिया जो शब्द है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ स्पेसिफिक मेंटल फंक्शंस में डिफिकल्टी आती है, जैसे कि या तो याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको विजुअल स्पेशल यानी कि जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते को आप भूल रहे हैं, या फिर प्लानिंग करते हैं, जैसे हम लोग आज दिन में ये करेंगे या इवन बिग इवेंट्स हम प्लान करते हैं अपनी लाइफ में तो प्लानिंग की प्रॉब्लम, तो इस तरह के कुछ मेंटल फंक्शंस में जब इम्पेयरमेंट होता है तो उसको डिमेंशिया के रूप में बोला जाता है जब वो आपकी दैनिक जीवन को अफेक्ट करे।
3: ठीक है,
2: अब डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन कारण है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिमेंशिया जो है वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया।
3: ठीक है,
2: और अल्जाइमर्स के अलावा जो बाकी डिमेंशिया थोड़े इंपॉर्टेंट हैं वो एक दूसरा कारण है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया होता है जबकि पेशेंट जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इस तरह की बीमारियां हो उसकी ब्रेन की नसों में ब्लड वेसल्स जो है वो बंद हो जाएं या फटने लगे तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया उत्पन्न हो सकता है, उसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोला जाता है। तो ये डिमेंशिया का एक प्रकार है अल्जाइमर्स।
3: डॉक्टर नेक्स्ट प्रश्न जो है इनका ये है कि अगर किसी पर्सन को हाई बीपी शुगर है तो क्या उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रिकॉशन जरूरी हैं जिससे कि ज्यादा लेट ना हो जाए, नेवर टू लेट।
2: यस यस ऑफ कोर्स। सो देखिए डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर स्ट्रांग रिस्क फैक्टर्स फॉर एनी टाइप ऑफ डिमेंशिया एंड ऑल्सो फॉर अल्जाइमर्स डिमेंशिया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एज यू नो कि ब्रेन जो है वो एक्चुअली बॉडी का 2% ऑफ द बॉडी वेट है, बट उसकी जो ब्लड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज 20% ऑफ द बॉडी वेट। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा एनर्जी और ब्लड ब्रेन को चाहिए होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। तो अगर किसी भी कारण वो ब्लड फ्लो या एनर्जी फ्लो ब्रेन में कम हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाएगा। एंड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को कम कर सकती हैं।
3: ठीक है,
2: बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। तो बीपी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना डिमेंशिया के प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के टारगेट्स को मेंटेन रखेंगे तो अपने डिमेंशिया के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
3: ओके डॉक्टर दिव्यानी गर्ग हमारे साथ हैं, अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं श्रोताओं, आप डॉक्टर दिव्यानी गर्ग के साथ, डॉक्टर दिव्यानी गर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली से, हमारे साथ बात कर रहे हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड अल्जाइमर डे। जल्द से जल्द अल्जाइमर के लक्षणों को पहचान लें और उससे बचने के तरीकों के अपनाने पर जोर दें। तो ऐसे में डॉक्टर, अगर कोई वाकई अपना नाम भूल जाता है, अपना एड्रेस भूल जाता है, उम्र दराज है, तो ऐसे में उसे किस केयर की ज्यादा जरूरत है, क्या करना चाहिए उनके लिए?
2: अच्छा, अगर किसी मरीज को अल्जाइमर्स डिमेंशिया या किसी भी तरह का डिमेंशिया अगर डायग्नोज हो गया है, तो कुछ चीजें हैं जो कि केयरटेकर्स या फिर जो पेशेंट के फैमिली के सदस्य हैं या उनका जो देखभाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं।
1: जी,
2: स्पेसिफिकली जैसे कि अल्जाइमर्स में पेशेंट को भूलने की प्रॉब्लम होती है, तो वो भूल जाता है कि उन्होंने सुबह क्या खाया है, उन्होंने सुबह किससे बात की है, और एक टेंडेंसी होती है पेशेंट की कि बार बार बोले कि मैंने तो कुछ नहीं खाया या मैंने खा लिया है, मुझे मत दो खाना, इस तरह की चीजें। तो नेचुरल है कि केयरटेकर को लगे कि क्या हो रहा है, ये गुस्सा भी आ सकता है जो देखभाल करते हैं उनको। तो फर्स्ट एडवाइस में यही बोलूंगी कि आप लोग पेशेंस मत लूज करिए, बिकॉज ये एक डिजीज है। पेशेंट खुद से नहीं कर रहा है, ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये बीमारी का लक्षण है। तो केयरटेकर को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही फर्स्ट स्टेप है। दूसरी बात यह है कि जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में खासकर एक खतरा रहता है कि दे टेन टू वॉन्डर। वॉन्डर मतलब कि वो घर से निकलने के कोशिश बहुत करते हैं, ये अल्जाइमर्स की खासियत है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज पेशेंट को अपने घर का पता नहीं याद रहता है, उनको अपने केयरटेकर्स के या खुद का फोन नंबर नहीं याद रहता है। तो अगर वो घर से बाहर निकल भी जाते हैं, कोई उनकी हेल्प करना चाहता है वापस पहुंचाने के लिए, तो असमर्थ हो जाते हैं।
1: जी,
2: तो इस विषय में मैं ये बोलूंगी कि हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट के पास हर समय पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि घर का पता और केयरटेकर का फोन नंबर। और ज्यादातर एक अब तो सुविधा आ गई है कि आप अपने पेशेंट के लिए ब्रेसलेट्स भी बनवा सकते हैं, जो कि वो हाथ में पहन लेते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का नाम, पेशेंट का फोन नंबर या केयरटेकर का फोन नंबर एंड एड्रेस आप प्रिंट करवा सकते हैं। बट पेशेंट्स काफी बार वो ब्रेसलेट भी निकाल के फेंक देते हैं। सो देन एक और चीज आप कर सकते हैं, वो ये है कि पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी से उनका फोन नंबर एंड बाकी डिटेल्स लिखवा सकते हैं। एंड समटाइम्स ये भी मैं हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो इवन उनके हाथ पे आप नाम, पता, फोन नंबर एक्सेट्रा टैटू भी करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर पेशेंट घर से बाहर वॉन्डर कर जाता है तो आसपास जो भी उनको मिलता है वो उनको सही ठिकाने पे पहुंचा पाएंगे।
1: जी डॉक्टर, आजकल तो ट्रैकिंग डिवाइस भी अवेलेबल है। तो ओके डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है, ये मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, ये लिखते हैं, सोचने समझने की शक्ति कम होना, बात करते समय घबराहट होना, ये क्या अल्जाइमर के लक्षण हैं? और अल्जाइमर होने से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या इलाज दवाओं से संभव है?
2: देखिए, अल्जाइमर के लक्षणों को पहचानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करते हैं। तो जो अल्जाइमर्स का मुख्य लक्षण है वो है भूलने की प्रॉब्लम। खासकर कि ये जो भूलना होता है वो रीसेंट मेमोरी को अफेक्ट करता है। रीसेंट मेमोरी का मतलब है जो पिछले कुछ घंटे या पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं वो पेशेंट भूल जाता है, और जो रिमोट मेमोरी है वो उसको याद रहती है। रिमोट मेमोरी का मतलब जो बचपन की या पुरानी यादें हैं
1: जी,
2: वो पेशेंट को याद रहती हैं। तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है कि वो अभी की चीजें भूल रहे हैं और पुरानी चीजें सब याद हैं, तो ये कैसी अजीब सी बीमारी है। किंतु जिस तरह से अल्जाइमर्स की डिजीज दिमाग को अटैक करती है, वो इन्हीं सर्किट्स को डैमेज करती है जो कि रीसेंट मेमोरी को अफेक्ट करते हैं
1: जी,
2: और रिमोट मेमोरी के सर्किट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं
1: जी।
2: तो भूलने का प्रॉब्लम स्पेशली रीसेंट मेमोरी वाली जो मैं बता रही हूँ आपको चीजें, कुछ उदाहरण दूंगी, जैसे कि सुबह उन्होंने नाश्ता किया वो भूल जाएंगे, और लंच के टाइम आते आते वो बोलेंगे कि मैंने कुछ खाया नहीं है, या पिछले दिन कोई उनसे मिलने आया होगा तो बोलेंगे कि अरे उनको याद नहीं रहेगा कि कोई आया था। इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। और मेमोरी के अलावा जो कुछ मुख्य लक्षण अल्जाइमर्स के जो हो सकते हैं, उसमें से दूसरा है विजुअल स्पेशल डिसओरिएंटेशन। इसका ये मतलब है कि हमारे को सबको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम घर में हैं तो हमें पता है कि वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, घर के आसपास क्या बिल्डिंग्स हैं, हमें अपने घर का एक ओरिएंटेशन होता है, एड्रेस का ओरिएंटेशन होता है। अगर हम काम पे जाते हैं तो हमें रास्ते का ओरिएंटेशन होता है कि यहां से अब राइट टर्न लेना है, यहां से लेफ्ट टर्न लेना है, अब ये चौराहा आ जाएगा, और इसी तरह की चीजें। तो अल्जाइमर्स में ये विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन की कमी हो जाती है
1: जी।
2: तो अक्सर

0: ये जो प्री क्लिनिकल स्टेज है, ये जो है वो 10 से 15 साल पहले, लक्षण होने के 10 से 15 साल पहले स्टार्ट हो सकती है।
1: ओके, तो क्या ये फर्स्ट स्टेज क्योरेबल है डॉक्टर?
0: देखिए, फर्स्ट स्टेज में हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये प्री क्लिनिकल स्टेज से क्लिनिकल स्टेज में ना पहुंचे। प्रिवेंशन के बारे में हमने अभी बात की है, और प्रिवेंशन के काफी सारे रास्ते हैं, गुड डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल और मेंटल एक्सरसाइजेस। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एंड प्री क्लिनिकल के बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल स्टेज पे। क्लिनिकल स्टेज होता है जब पेशेंट को कुछ कुछ लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें सबसे जो माइल्ड स्टेज होता है वो कहा जाता है MCI, यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसको आप समझिए कि पेशेंट को कुछ लक्षण हो रहे होते हैं, मे बी हल्का फुल्का भूलने का प्रॉब्लम, बट नॉर्मल लाइफ पेशेंट अपनी निभा रहा होता है, काम पे जा रहा है, आ रहा है, एक्चुअली डेली लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, बस पेशेंट को लगता है कि शायद मैं कुछ भूलने लगा हूं। सो ये MCI कहा जाता है, और पेशेंट MCI के स्टेज में काफी दिनों तक रह सकता है। जैसे मैंने बताया, प्री क्लिनिकल तो 15 इयर्स तक रह सकता है, MCI भी काफी लंबा रह सकता है। और MCI के बाद जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो। उसका कुछ रेट होता है, हर साल कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, बट MCI से पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है विद ऑल दीज प्रिवेंटिव थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड विल स्पीक।
1: तो ये दूसरी स्टेज भी क्योरेबल है।
0: हाँ, एक किस्म से हम कह सकते हैं इसको रिवर्स किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। एंड देन जो डिमेंशिया की स्टेज सेट इन हो जाती है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
1: ओके।
0: और डिमेंशिया की भी तीन स्टेजेस होती हैं, सो माइल्ड डिमेंशिया, जो कि मतलब हल्की डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया एंड देन सिवियर डिमेंशिया। सिवियर डिमेंशिया तो आप समझ रहे हैं, गंभीर या एडवांस डिमेंशिया का स्टेज है।
1: जी डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे साथ जुड़ा है, ये जानना चाहते हैं, सीमा है वेस्ट बंगाल से, क्या प्राणायाम या फिर ये कह लीजिए योगा के जरिए हम अल्जाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं?
0: जी देखिए, ऐसा है कि योगा के लिए स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स के ऊपर जो स्टडीज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है।
1: ठीक है,
0: लेकिन जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ये बात तो बहुत क्लियर है कि जिस चीज से भी आप अपनी जनरल हेल्थ मेंटेन कर ले, वो अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो यही है कि योगा भी एक किस्म का तरीका है जिससे आप अपने फिजिकल स्टेटस और अपने मेंटल स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेटली इसे कंटिन्यू रखें, लेकिन स्पेसिफिकली प्राणायाम से डिमेंशिया प्रिवेंट होता है ऐसा इस समय हम नहीं बोल सकते हैं।
1: डॉक्टर, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, सब यही कहते हैं कि मैं भूल जाता हूं, तो क्या ऐसे में मुझे अल्जाइमर है?
0: जी, तो इसके बारे में एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। तो भूलना नॉर्मल चीज होती है,
1: ठीक है,
0: राइट। एंड भूलने की जो प्रॉब्लम है वो एज के साथ बढ़ती भी है, लेकिन सब भूलने की प्रॉब्लम जो है वो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया नहीं है।
1: जी,
0: एक बार फिर मैं बोलूंगी, डिमेंशिया जो एक टर्म है ना, उसको समझना काफी जरूरी है। तो डिमेंशिया में भूलने की जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ में किसी और प्रॉब्लम का भी संबंध होना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया विजुअल स्पेशल डिसओरिएंटेशन, प्लानिंग की प्रॉब्लम, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक चीज होती है जिसमें हम अपनी जो जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल को हम फुलफिल करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस, आप जो शब्द बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, उसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब डोमेन्स होते हैं, इसको कॉग्निटिव डोमेन्स बोला जाता है। तो वी नीड की जो है एटलीस्ट टू कॉग्निटिव डोमेन्स होने चाहिए अफेक्ट, एंड इम्पॉर्टेंटली वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर, पुनीत दिल्ली से जानना चाहते हैं, क्या इस बीमारी में फिट्स भी आते हैं?
0: अल्जाइमर्स में फिट्स यूजुअली नहीं आते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, जैसा हमने बताया सिवियर अल्जाइमर्स डिजीज की जब स्टेज आ जाती है, तो उसमें कुछ प्रतिशत पेशेंट्स में सीजर्स भी या फिट्स भी हो सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, यहाँ आप अल्जाइमर पर डॉक्टर देवयानी से जान रहे हैं इस विषय के बारे में। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद पुनः आपके प्रश्नों के माध्यम से जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
4: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
3: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
4: कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800113663,
3: 0112342 1084
4: और 0112342346।
5: आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107077।

0: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। लीजिए, अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का और सुनते रहिए कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो से 102.6 दिल्ली केंद्र से।
4: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
5: स्वागत है आपका अपडेट्स के लिए फॉर एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। मेरा नाम है अभिनव पुंछी, मेरे साथ है साक्षी बानवाल। और खुशखबरी आई है वुशु के अरीना से, क्योंकि इंडिया की रोशिबिना देवी ने जीत हासिल करी है राउंड ऑफ 16 मैच में। उन्होंने मोचिका खातून को हराया विन बाय पॉइंट डिफरेंस। और याद दिलाएं आप सबको कि रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स 2022 में, और 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बस एक जीत की और जरूरत है रोशिबिना देवी को और इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल गारंटीड है। और मेरे साथ है साक्षी।
6: जी अभिनव, थैंक यू सो मच। एंड गिवन द फैक्ट दैट आपने हमारे श्रोताओं को अभी खुशखबरी दी है, तो ये डेफिनेटली अ रीजन टू स्माइल है, बिकॉज अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज सुबह की शुरुआत में नायमन वांगशु फिनिश्ड एट द 15th स्पॉट इन द एशियन गेम्स वुमेन्स चैंगक्वान फाइनल विद 9.573 पॉइंट्स इन अ 16 स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहीं हांगकांग की हुई यू लिडिया शैम ने गोल्ड अपने नाम किया था 9.713 पॉइंट्स के साथ। तो जहां वुशु ने आज सुबह उतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं देखी भारत के एंगल से, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। और उसी में आर्यन भी अब आमने सामने आने वाले हैं शहजादा सफी के साथ इन द मेंस 56 केजी राउंड ऑफ 16 एट 3:50 PM टुडे, यानी अगले 20 मिनट में आप ये मुकाबला भी देख सकेंगे। अभिनव
5: जी हाँ, और बात करें एक बड़ी राइवलरी, द आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्लैशिंग राइट नाउ इन द टेबल टेनिस मेंस टीम इवेंट। इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप एफ का मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। हरमीत देसाई स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स मोहम्मद खान के अगेंस्ट। इंडिया की टीम में सत्या गणेशेखरन, मानव ठक्कर, मनुष्या और पायस जैन है। याद दिलाएं, इंडिया ने इंडोनेशिया को तो 3-0 हराया, मगर शॉक हुआ जब इंडिया ईरान से 3-0 हारी। और आज इंडिया को पाकिस्तान को हराने की जरूरत है अगले फेज में जाने की। तो क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी जो इंडियन विमेन्स टीम कर चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान को अर्लियर इन द डे हराया था?
6: जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आज, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हमारे चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इन द एशियन गेम्स 2026 आल्सो स्टे अलाइव। लेकिन आप स्विमिंग की ओर भी एक रुख कर लेते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं, और आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड डे फॉर आर इंडियन स्विमर्स, बिकॉज भारत की तरफ से श्रीहरि नटराज ने 10th स्पॉट पर फिनिश किया इन द मेन्स 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026, क्लॉकिंग 25.52 सेकेंड्स इन द 10th स्विमर मेडल रेस। और दूसरी तरफ ये भी बता दो आप सबको कि बाकी भी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका तो आज इससे भी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, चाहे हम बात करें ऋषभ दास, आकाश माने, हीर जितेश शाह या फिर धानुष सुरेश की, या फिर मेंस के जो 4x200 meter फ्रीस्टाइल रिले का मुकाबला भी जो होता है, हीट जो होता है, उसमें भी भारतीय स्विमिंग टीम साजन प्रकाश, अनीश सुनील, कुमार गावड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार, ये सब क्वालिफाई करने से, फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रह गए। तो ओवरऑल नॉट एट ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन स्विमर्स ओवर देयर। अभिनव
5: जी हाँ, स्विमिंग में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मगर कबड्डी में तो इंडिया ने धमाका मचा दिया, क्योंकि जापान के खिलाफ इंडिया ने जीत हासिल करी 49-24। जापान की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, मगर हमारी इंडियन टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके आगे तो कोई बड़ा नहीं। इंडिया ने एक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, 49-24 से जीत हासिल करी। और अब होने वाला है मुकाबला हमारी विमेंस टीम का, क्योंकि एट 4:15 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस ग्रुप ए का एक धमाकेदार इंकाउंटर होने वाला है साक्षी।
6: यस इंडीड, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी और वो आज इंडिया के एंगल से भी आखिरी मुकाबला होगा भारतीय रिप्रेजेंटेशन का एशियन गेम्स 2000

0: 2026 के अंदर। लेकिन अगर थोड़ा सा आज पीछे जाए और बात करें कि आज ऐसे कौन से और पल आए जहां पर हम सबके चेहरों पे थोड़ी सी हंसी आ सकी, वो था बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पर हमारे इंडियन शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने भारत को जीत हासिल कराई, बांग्लादेश को 3-0 से हरा कर, और इसके साथ ही वो क्वार्टर फाइनल्स में भी प्रवेश कर गए, जहां पर अब उनका मुकाबला होगा जापान के साथ, जो कि बिल्कुल भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला अभिनव भारतीयों के लिए।
1: जी हाँ, और हमारा होने वाला है बहुत ज्यादा बड़े मुकाबले। आप स्टे ट्यून रहिए, एशियन गेम्स की कवरेज सिर्फ आकाशवाणी पे अपडेट के साथ हम वापस आएंगे 4:30 पे। इंडिया भी मेडल टैली पे 12th पोजीशन में, होपफुली ये टैली बढ़ते रहे।
0: होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ ईयर, बट एट द एंड वी कैन आल्सो से दैट इंडिया एंजॉयड अ सक्सेसफुल डे एट द एशियन गेम्स टुडे, हैविंग सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स सो फार। शूटिंग प्रोवाइडेड दो 3 ऑफ दोस मेडल्स, ऑफ कोर्स where we are talking of silver, we had 4 medals, 4 silvers and 1 bronze, but overall a good day so far for the Indians.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya।
3: आप सुन रहे थे अभी एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स, और कार्यक्रम जारी है रेडियो डॉक्टर, विषय है स्पेशल ऑन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। बात कर रहे हैं डॉक्टर देवयानी गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स नई दिल्ली से।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आप एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ, मैं सृजन, और मेरे साथ डॉक्टर देवयानी गर्ग। बात हो रही है आज अल्जाइमर पर, डॉक्टर लाइफस्टाइल पर भी हमने बात की, और अब बात करते हैं स्ट्रेस पर, क्योंकि स्ट्रेस अगर चाहे वो घर पर हो, किसी महिला के साथ हो, जनरली महिलाओं में क्योंकि अल्जाइमर ज्यादा होता है, तो क्या ये अफेक्ट करता है? यही प्रश्न हमारे पास हमारे एक लिसनर का भी आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। ये कहते हैं क्या साइकोलॉजिकल एंड मेंटल अब्यूज अल्जाइमर को प्रोवोक करता है?
4: ओके, ये आई एम श्योर कि ये सवाल काफी कॉमन सवाल होगा। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए दो पहलू हैं। एक है कि हमने पहले भी बात की है, फिर से बताती हूँ कि जो मेंटल इलनेसेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गई या एंग्जाइटी हो गई, तो ये जो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करती हैं, ये लक्षण जो उत्पन्न करती हैं ये बीमारियां भी, वो डिमेंशिया से काफी मिलते जुलते हैं, तो अक्सर ये कन्फ्यूज किए जा सकते हैं। इसको हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं, सूडो डिमेंशिया यानी कि डिमेंशिया जैसा लगने वाली बीमारी किंतु डिमेंशिया नहीं होना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मेंटल इलनेसेस जो डिमेंशिया का लक्षण उत्पन्न करती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाती हैं।
3: ओके, तो क्योरेबल है,
4: दैट इज क्योरेबल, लेकिन डिमेंशिया एज वी हैव बीन टॉकिंग ये बहुत क्योरेबल नहीं होती है इन जनरल। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से या अब्यूज से क्या अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है वो डिमेंशिया के लक्षणों को जल्दी उत्पन्न करता है
3: जी,
4: क्योंकि जो हमारा मेंटल रिजर्व होता है, सब लोगों का मेंटल रिजर्व होता है, वो कुछ सह सकते हैं कुछ नहीं सह सकते, एक लेवल होता है, तो वो मेंटल रिजर्व को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो अगर आपका जो सिम्टम डिमेंशिया का होने वाला है तो वो और उभर के आता है, लेकिन वेदर स्ट्रेस कॉजेज डिमेंशिया ये चीज क्लियर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस से डिमेंशिया प्रोवोक हो जाएगा, ऐसा अभी तक की साइंटिफिक नॉलेज में नहीं है
3: जी। डॉक्टर, एक प्रश्न यहाँ पर और जोड़ लेते हैं कि किन लोगों को ये इस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है, रेदर कि वो महिला है, पुरुष है, किस माहौल में है या क्या कंडीशन है उसके साथ?
4: तो देखिए, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं अल्जाइमर्स के, जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ा देते हैं
3: जी,
4: उनको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गई एज, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं,
3: ठीक है।
4: तो एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो एज जैसे बढ़ती है डिमेंशिया का रिस्क और अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ता है, लाइक आई सेड 65 इयर्स एंड अबव रिस्क काफी बढ़ता चला जाता है। एंड अदर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में हो गई आपकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि अगर आपके डायरेक्ट परिवार में, जैसे कि आपके पेरेंट्स में या आपके सिब्लिंग्स भाई बहन में अल्जाइमर्स डिमेंशिया का डायग्नोसिस है, तो उससे भी रिस्क आप में भी बढ़ जाता है डिमेंशिया का रिस्क।
3: श्रोताओं, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं और अल्जाइमर पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर देवयानी गर्ग से।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिव्यानी गर्ग से और अल्जाइमर्स पर इस विषय पर बात हो रही है। डॉक्टर, क्या किन टेस्ट के जरिए, किन स्क्रीनिंग्स के जरिए हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है?
1: तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग जो है वो है कि हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, उनसे बात करते हैं, उनके केयरटेकर से बात करते हैं, उनका डिटेल में न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन करते हैं और ये सब होने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि पेशेंट को डिमेंशिया है और अगर डिमेंशिया है तो वो अल्जाइमर्स के टाइप का है कि नहीं है।
0: ठीक है,
1: उसके बाद जो कुछ टेस्ट हम करते हैं ये देखने के लिए कि कुछ ऐसी रिवर्सिबल कारण तो नहीं है जिससे पेशेंट का डिमेंशिया उत्पन्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करते हैं क्योंकि जैसे हमने बात की है उसकी कमी से भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिमेंशिया के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है थायराइड, क्योंकि अगर थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये दो बेसिक टेस्ट हो जाते हैं ब्लड के, बाकी भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट, किडनी, लिवर स्टेटस, ये सब देखा जाता है। एंड ज्यादातर हम लोग एक न्यूरो इमेजिंग करते हैं, मतलब ब्रेन का स्कैन होता है यूजुअली, या तो एक सिंपल CT स्कैन या फिर MRI स्कैन, देखने के लिए कि और कोई कारण तो नहीं है ब्रेन में, या सिर्फ अल्जाइमर से जो उत्पन्न होता है सूखापन ब्रेन में, सूखने की दिक्कत होती है, उसके सिम्टम्स हैं कि नहीं।
0: जी डॉक्टर, क्या हिटिंग या फिर किसी एक्सीडेंट के चलते अगर ब्रेन पर अफेक्ट हुआ है, कहीं दिमाग में चोट लगी है, तो भी क्या अल्जाइमर्स के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं?
1: जी, तो हेड इंजरी जो कि काफी कॉमन है, वो रोड एक्सीडेंट्स में हो सकती है या फॉल फ्रॉम हाइट, इस तरह की चीजों से हो सकती है। तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं इसको, ये हेड इंजरी जो है वो अल्जाइमर्स का रिस्क फैक्टर है।
0: जी,
1: और अगर सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें पेशेंट चोट लगने के बाद बेहोश रहता है 24 घंटे के ऊपर, तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है डिमेंशिया होने का। और इनफैक्ट एक और चीज है, जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉल हो गया या फिर बॉक्सिंग, तो इसमें जो है हेड पे चोट लगने के रिस्क होते हैं, तो इसमें भी पाया गया है कि डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है।
0: जी डॉक्टर, एज के साथ जैसे या तो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनमें तो देखा जाता है कि जनरली उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन कई लोग उम्र होने के बाद भी काम करते रहते हैं तो उनकी याददाश्त बेहतर बनी रहती है, क्या ये जो हम जजमेंट करते हैं ये सही करते हैं?
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस टाइम पे रेज किया है, और ये फैक्ट है कि जो लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं
0: जी
1: और सोशली एक्टिव रहते हैं, दोनों चीजें इम्पॉर्टेंट है, मेंटल एंड सोशल एक्टिविटी जो मेंटेन रखते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, डेफिनेटली उनमें मेमोरी प्रॉब्लम्स का और डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। इनफैक्ट सो मच सो कि आप 40% रिस्क कम कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपल थिंग्स लाइक बीइंग मेंटली एक्टिव। मेंटल एक्टिविटी का क्या मतलब है? मेंटल एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ चैलेंज देते रहें रोज। तो एक तरीका होता है कि न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स करते रहें, या फिर अब तो सुडोकू भी बहुत पॉपुलर हो गया, उसकी बुक्स आती हैं इनफैक्ट, तो सुडोकू के पजल्स करिए, किसी भी तरह के चैलेंज दीजिए अपने ब्रेन को जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखे। एंड सोशल एक्टिविटी का मतलब है जैसे कि आप अपने सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, लोगों का आना जाना बना रहे। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि डिस्पाइट बीइंग रिटायर्ड मैं कहूंगी कि आप मेंटेन रखें सो दैट आपका रिस्क जो डिमेंशिया का है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाए।
0: जी, आरती ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 से लिखती है कि मेरे दादाजी को 80s में अल्जाइमर हुआ था, तो क्या अब जब हम उस एज में आएंगे तो हमें भी हो जाएगा?
1: आपके दादाजी को अल्जाइमर हो गया था इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये होगा, क्योंकि जो जेनेटिक कंपोनेंट है या जेनेटिक रिस्क होता है वो अल्जाइमर्स में बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारी बाकी लाइफस्टाइल से संबंधित है। रिस्क उन्हीं लोगों में बढ़ता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को अल्जाइमर्स है तो आपको भी होना निश्चित है, बट अगर पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में या भाई, जैसे कि भाई बहन में अल्जाइमर्स है तो रिस्क बढ़ जाता है।
0: और वहां ये भी मैटर करता है कि उनको उनके 80s में हुआ था,
1: बिल्कुल
0: एज मैटर करती है। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए या फिर कहें कि ब्रेन को स्ट्रांग रखने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, और ब्रेन फूड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हमें टॉपिक से जोड़ लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं?
1: जी बिल्कुल। सो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमारे मम्मी पापा कब से जमाने से दादा परदादा बोलते आ रहे हैं, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट्स।
0: यस,
1: तो अब स्पेसिफिक्स की बात कर लें तो गुड डाइट का क्या मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेन हेल्थ?
0: यस,
1: तो गुड डाइट का मतलब है कि आप जो है हेविली सैचुरेटेड फैटी आइटम्स जो कि आजकल फास्ट फूड बेसिकली एंड हाई सॉल्ट आइटम्स, इनको आप अवॉइड करें, और अपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा एंड आमंड्स एंड वॉलनट्स की मात्रा डाइट में बढ़ाएं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का भी डोजेज होता है कि आप ये नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, मनाया तो कर लिया, बट इट हैज टू बी मेड इनटू अ रेगुलर फीचर ऑफ योर लाइफ. तो 30 मिनट्स पर डे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट्स. तो गुड हैबिट्स में जैसे कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, इस तरह की जो सब्सटेंस यूज है वो एक्चुअली अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है.
0: जी डॉक्टर, क्या जो लोग किसी भी तरह का धूम्रपान या किसी भी तरह की ड्रग हैबिट से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनमें भी अल्जाइमर्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है?
1: बिल्कुल, धूम्रपान से अल्जाइमर्स का रिस्क काफी बढ़ जाता है, खासकर की स्मोकिंग से, क्योंकि ये जो धूम्रपान होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी खून की धमनियों में ब्लॉकेज प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में खून का फ्लो कम हो जाता है, और खून के फ्लो कम होने की वजह से उसमें इनफ ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है.
0: श्रोताओं, आप भी रेडियो डॉक्टर में अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं. अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक. आकाशवाणी FM रेनबो से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर.

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं श्रोताओं पर आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से। प्रोग्राम में आज बात हो रही है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर डॉक्टर देवयानी गर्ग से। डॉक्टर देवयानी गर्ग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली से। डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे लिसनर ने हमारे पास पहुंचाया, ये जानना चाहते हैं कि ये डिजीज, क्योंकि अगर अपर स्टेज पर है तो क्यूरेबल तो है नहीं, ऐसे में डॉक्टर के पास क्यों जाऊं जबकि कोई दवाई मुझ पर काम ही नहीं करेगी?
1: तो देखिए, ऐसा है कि कुछ दवाइयां होती हैं अल्जाइमर्स के लिए जो कि हमारे जो ब्रेन के अंदर पदार्थ कम हो जाते हैं। अल्जाइमर्स इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स या पदार्थ होते हैं जो कि कम हो जाते हैं, और जो दवाइयों का काम होता है वो ये केमिकल्स को रिस्टोर करना होता है, दिमाग में वापस ये केमिकल्स पहुंचा देती हैं दवाइयां।
0: जी,
1: तो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज जैसे हमने बात की थी उसमें डेफिनेटली दवाइयां हैं जो रेकमेंडेड हैं, जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जो पेशेंट को लेना जरूरी भी है। वो इसलिए कि वो ब्रेन का केमिकल बैलेंस तो रिस्टोर करती ही है, लेकिन ये पाया गया है कि उसकी वजह से जो पेशेंट की मेमोरी लॉस है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाती है और इम्प्रूव भी होती है
0: जी।
1: और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, जो आपके जीने का स्तर है वो मेंटेन करके रखती हैं काफी टाइम तक, क्योंकि डिजीज क्योर नहीं है या जड़ से हम इसका इलाज नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है
0: जी।
1: बहुत सारे फैसेट्स हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया के या अल्जाइमर्स डिजीज के जो कि हम मेडिसिन से या बाकी तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। अल्जाइमर्स के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ये पेशेंट्स में रिस्क ऑफ डिप्रेशन, खराब मूड होने का या घबराहट होने का या इंसोम्निया या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने की साथ साथ चलती है प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजों को मेडिसिन द्वारा एड्रेस किया जा सकता है।
0: ओके,
1: तो जस्ट बिकॉज ये एक इनक्योरेबल ऐसी कही जाती है बीमारी, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट

0: है और आपको ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि डॉक्टर बता रही हैं कि ये बेशक क्योरेबल नहीं है, लेकिन किन्हीं स्थितियों में आप मेडिकल हेल्प से इसे और बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर एक प्रश्न और जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे, किन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जरिए के चलते हम अल्जाइमर से ग्रसित हो सकते हैं?
0: जी, तो अल्जाइमर्स के साथ साथ में कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि मिक्स हो सकते हैं इसके साथ या इसके जैसे मिलते जुलते हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट वाले हैं जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज प्रॉबेबली बहुत ही कॉमन एक समस्या है जिसमें पेशेंट को कंपन की दिक्कत, स्लोइंग डाउन की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, शरीर में अकड़ान आ जाना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और जैसे पार्किंसंस एडवांस करता है उसमें भी डिमेंशिया के लक्षण आ सकते हैं काफी सालों के बाद, जैसे कि 10 साल के बाद।
1: जी डॉक्टर, बहुत कम सा टाइम हमारे पास बचा है, तो झटपट से प्रिवेंशन और ब्रेन टिप भी ले लेते हैं, किस तरह से ब्रेन को मजबूत रखें, क्या क्या प्रिवेंशंस यूज करें और कब टाइम है कि अब आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए?
0: तो ब्रेन को हेल्दी रखने के जो तरीके हैं वो पहला है कि आप मेंटल स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को देते रहें वेरियस तरीकों से। आप अपने काम में एक्टिव रहें, आप अपनी सोशल लाइफ में एक्टिव रहें, आप कुछ ना कुछ सोशल पार्टिसिपेशन करते रहें, कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी करते रहें, जैसे हमने बात की क्रॉसवर्ड, सुडोकू, जिग्सॉ पजल्स, इस तरह की चीजों से। अपने डाइट को मेंटेन रखें, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइजेज, एंड एज मच एज पॉसिबल धूम्रपान अवॉइड करें, अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर रहें और बेसिकली ट्राई टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एंड दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू हैव अ हेल्दी ब्रेन।
1: डॉक्टर, एक मैसेज पेशेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगी जो पेशेंट के घर वाले हैं, उनके केयर टेकर हैं, कि वो पेशेंट की तरफ इस बीमारी को लेकर झल्लाए नहीं या फिर उन्हें गलत ना समझें, कैसे उन्हें ट्रीट करें?
0: तो जो केयर टेकर या केयर गिवर का रोल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनफैक्ट, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट हो गया और जो बर्डन ऑफ डिजीज फिर पड़ता है वो जो है जो पेशेंट का ध्यान रखता है उसका केयर गिवर, उसकी फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है। अक्सर काफी बार लॉस ऑफ पेशेंस होना या पेशेंट के साथ गुस्सा हो जाना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि पेशेंट अक्सर चीजें भूलते चले जाते हैं, कुछ गलतियां करते चले जाते हैं और केयर टेकर को काफी इससे इरिटेशन हो सकता है। तो यही एडवाइस करूंगी मैं आप सबको कि प्लीज पेशेंट के साथ पेशेंट रहें
1: जी,
0: क्योंकि वो पेशेंट की, इट इज अ डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज, वो पेशेंट की फॉल्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट को डिजीज हो गई है और आपको पेशेंस रखना है और पेशेंट को एज मच एज पॉसिबल अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मेंटेन करके करने देना है।
1: जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना खूबसूरत मैसेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया। थैंक्स फॉर द प्रोग्राम ऑन अल्जाइमर्स बीमारी पर बात करने के लिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आपने रेडियो डॉक्टर में आज अल्जाइमर पर डॉक्टर दिव्यानी गर्ग से बात सुनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली से हमारे साथ आई। थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो

शाम हो या सिटी, सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के आकाशवाणी समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से ज्यादा केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासामी ने तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है आकाशवाणी रेनबो पर आपके फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन की, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर स्पोर्ट्स की। मोटर स्पोर्ट्स सुनते ही हमारे जहन में आती है स्पीड, एक्साइटमेंट और रेसिंग। लेकिन जब यही पैशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ जुड़ता है ना दोस्तों, तो कहानी सिर्फ रेस ट्रैक तक सीमित नहीं रहती। इसमें शामिल होती है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजाइनिंग,

0: वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी दुनिया। तो आज हमारे साथ हैं बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट आदित्य। तो उनसे हम बात करने वाले हैं मोटर स्पोर्ट्स के बारे में। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में।
1: थैंक यू शालिनी मुझे मौका देने के लिए। आज मैं मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा और स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा।
0: तो करते हैं शुरुआत इस गाने के साथ और उसके बाद हम बात करेंगे मोटर स्पोर्ट्स के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि इंजीनियरिंग स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है और कैसे स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स में क्या कुछ खास देखने को मिलता है।

0: तो दोस्तों, आज अल्फा जन में हम बात कर रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स की। हमारे साथ हैं मोटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बीटेक के स्टूडेंट आदित्य। तो आदित्य, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो अपने आप में काफ़ी डिमांडिंग होती है और वहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है, लेकिन ऐसी डिमांडिंग एजुकेशन के साथ आपने मोटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी को क्यों चुना और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? कैसे हुई आपकी इस सफ़र की शुरुआत?
1: जी, तो मेरे मोटर स्पोर्ट्स सफ़र की शुरुआत कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही हुई थी। जब कॉलेज जब शुरू हुआ था, तब कॉलेज की सारी सोसाइटीज़ और क्लब अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। उन्हीं में से एक सोसाइटी थी टीम डीडलस रेसिंग, जिसमें मेरे जैसे और स्टूडेंट्स मिलकर एक ऑल टेरेन व्हीकल बनाते हैं और अपने व्हीकल को दूसरे कॉलेज की टीम के साथ कम्पीट भी करते हैं।
0: लेकिन जब बात करें कंपटीशन की, तो उसमें मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते होंगे, उसके बारे में बताएं कि किस तरीके के इवेंट्स होते हैं। क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स एक लेमैन की तरह देखें तो मोटर स्पोर्ट्स में हमें सिर्फ स्पीड और रेस इतना ही समझ में आता है, लेकिन अगर ये स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स की बात करें और आपने इवेंट की बात की, तो उनमें क्या कुछ होता है?
1: कॉम्पिटिशन में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे एक्सेलरेशन और ट्रैक्टर पुल में एटीवी एक ट्रैक्टर को खींचती है, और सस्पेंशन इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ही ऑफ रोड ट्रैक बनाते हैं, देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे जल्दी वो ट्रैक कंप्लीट करती है। एंड लास्ट में एक 4 आवर्स की कंटिन्यूस रेस भी होती है बिटवीन ऑल द टीम्स।
0: तो स्पीड की बात, मोटर स्पोर्ट्स की बात जारी रहेगी अल्फा जेन में। फिलहाल आप इंजॉय करिए ये ट्रैक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों, ये नया भारत है, यहाँ पर नया मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे कंपटीशन जहाँ पर मोटर व्हीकल का भी कंपटीशन हो रहा है, मोटर स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट आदित्य। तो आदित्य, हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिशन की, जहाँ पर आपने अलग अलग इवेंट्स के बारे में बताया, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन के लिए आप कैसे अपने मोटर व्हीकल को तैयार करते हैं, कैसे उसे बिल्ड करते हैं?
1: स्टूडेंट्स चार कैटेगरीज में अपनी एटीवी बिल्ड कर सकते हैं, कंबशन, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोजन सीएनजी और ऑटोनमस। जैसे नाम से समझ आ रहा है, कंबशन कैटेगरी में एटीवी एक इंटरनल कंबशन इंजन से पावर होगी जो पेट्रोल पे चलेगा। इलेक्ट्रिक में एटीवी बैटरी मोटर से चलेगी। हाइड्रोजन सीएनजी में इंजन सीएनजी यूज करेगा एस फ्यूल। और ऑटोनमस में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, बट उसको ऐसे बनाया हुआ होगा कि वो ड्राइवर को असिस्ट करे या कम्प्लीटली ड्राइवरलेस चल सके।
0: मतलब आदित्य, हमारे देश में स्टूडेंट्स ऐसे व्हीकल बना रहे हैं जो ड्राइवर लेस भी चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी टीम की, तो आपकी टीम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और कैसे मोटर व्हीकल को बना रही है?
1: हमारी टीम आज तक कंबशन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती आई है, और लेकिन इस साल हम इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट कर रहे हैं। और हमारा प्लान है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में अपना पकड़ ले, हम फिर ऑटोनोमस के लिए जाएंगे।
0: बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल बढ़ते जाना, एक नई उड़ान की तरफ बढ़ना, एक यही एक सही तरीका होता है कि आप छोटे से शुरुआत करें और फिर बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिश करें, इनोवेशन करें। और यही कोशिश आपकी टीम भी कर रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और इसी के साथ ये खूबसूरत ट्रैक हमारे लिसनर्स के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the ongoing Asian Games 2026 that we are bringing to you every hour on Akashwani. Dosto, main hu Sakshi Manwal aur mere saath yahan par maujood hai mere dear friend and of course co-host for the day Abhinav Kunshi. And very quickly now moving on, sabse pehla sport jisko hum aaj cover karne wale hain, aapko batane wale hain is waqt ki pichle ek ghante mein kya hua usme tha, wo hai wushu. More good news coming in for India in wushu. Aryan defeated Afghanistan's Shehzada Safi 2-0 in the men's 56 kg round of 16 to book his place in the quarterfinals. जी हाँ, quarterfinals में हम प्रवेश कर चुके हैं। वहीं कुछ पल पहले ही भारत की रोशिबेना देवी had also advanced to the women's 60 kg quarterfinals, beating Bangladesh most खतून by win by the point difference. यानी इसका मतलब ये हुआ अभिनव कि वुशु के quarterfinals में भारत ने अपनी जगह बना लिए, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो हमारे आदमियों का हो, और वो quarterfinals होने वाले हैं कल।
3: एग्जैक्टली राइट साक्षी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वुशु में अगर आप सेमीफाइनल्स में प्रवेश करते हैं तो गारंटीड ब्रॉन्ज है, तो बस एक जीत से दूर हैं हम दो ब्रॉन्ज मेडल्स गारंटी करने के लिए, बट हमारा तो मिशन गोल्ड का है। और इसलिए आज हमारी टेबल टेनिस की मेंस टीम ने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को 3-0 हराया। शानदार प्रदर्शन हमारी मेंस टीम का, याद दिलाएं मेंस टेबल टेनिस टीम प्रेशर में थी क्योंकि ईरान से वो हारे थे 3-0, तो अगर क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश करना था तो आज पाकिस्तान को हराना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो हरमीत देसाई ने शुरुआत करी, मोहम्मद खान को हराया 11-4, 11-3, 11-5, फिर सत्यन गणेशेखर ने हराया अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9, और प्रयास जैन ने मोहम्मद खान को हराया 11-2, 11-5, 11-7। इस जीत के साथ अब इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम जाती है क्वार्टर फाइनल्स।
2: जी, और कबड्डी की ओर भी अब रुख कर लेते हैं। महिला कबड्डी का मुकाबला आज होने वाला है, वैसे तो इसको शाम को 4:15 बजे शुरू होना था लेकिन कुछ ही क्षणों में अब ये मुकाबला शुरू होता हुआ आप लोग देख सकेंगे। ये मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश की महिला कबड्डी के बीच में, जिसमें आपको ये भी बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी पिछले मुकाबले में ईरान से बुरी तरह से हारी थी। जी हाँ, 3-0 से ईरान ने भारत को हराया था, इसलिए आज भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो इस मुकाबले को जीते और कॉन्फिडेंटली और कमांडिंग तरीके से जीते। आपको ये भी बता दें कि भारत का जो ग्रुप है उसके अंदर भारत है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है। ईरान से हम हार चुके हैं, अभी बांग्लादेश के साथ अभिनव मुकाबला है, और अगर आज भी नहीं जीते तो करो या मरो वाली कहानी है उसके बाद जापान के साथ, और रास्ता मुश्किल नहीं होता है, सफर और कठिन ही हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए।
3: जी हाँ, प्रेशर इज ऑन द इंडियन वुमेन, मगर जैसे हमारा इंडियन कंटिंजेंट एशियन गेम्स में दिखा रहा है आईची नगोया में कि इंस्पायर कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि आज इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने अपना जो इंकाउंटर था जापान के खिलाफ जीता 49-24 से। शुरुआत थोड़ी स्लो थी बट उसके बाद क्या पेस पकड़ी, और शानदार तालमेल था हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स का, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हमारी टीम ने जीते 49-24। और आज बस ये अच्छी न्यूज नहीं थी साक्षी, मेडल्स की भी तो आज बरसात हुई है शूटिंग से।
2: ऑफ कोर्स, शूटिंग से आज मेडल्स की बरसात हुई है, बिकॉज आपको बता दें कि शूटिंग में आज हिमांशु ढिल्लो हमारे लिए सिल्वर लेकर आए, वहीं रुद्राक्ष पाटिल हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में। और क्योंकि हम शूटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर मेडल तालिका की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी गेम में आए हैं वो है शूटिंग के अंदर ही। जी हाँ, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल की वजह से भारत की अभी जो मेडल टैली है उसमें कुल मिलाकर 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 5 तो शूटिंग में आए, और छठा मेडल जो आया है वो आया है सुचिका तारियाल की वजह से। जी हाँ, इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिस गर्ल वेंट ऑन टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंत में एक इमोशनल मोमेंट उसके लिए हो गया था, उनके लिए हो गया था बिकॉज ऑफ हाउ दैट मेडल वॉज ग्रांटेड और द डिसीजन वॉज मेड, येट there is no taking away the fact that she made India stand tall with pride, stand tall with of course confidence and happiness, and made every Indian also happy because MMA ke andar unhone Bharat ko bronze medal dilaya. To dosto, iske saath aapko bata dein ki India's medal tally receives a strong boost across multiple disciplines with the athletes delivering notable performances throughout the day and setting the tone for the rest of the games. Aur yahan se ab क्विकली आपको बताते थे भारत की स्टैंडिंग है 12वीं स्थान पर, जिसमें है 6 मेडल्स, ऑफ कोर्स 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, होपिंग दैट इंडिया टेंड्स टू परफॉर्म बेटर इन द कमिंग डेज। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ। एक घंटे बाद दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात, फिलहाल के लिए बाय।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, और अल्फा जैन में बात हो रही है मोटर स्पोर्ट्स की। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट आदित्य। तो आदित्य, हम बात कर रहे थे मोटर स्पोर्ट्स की, उससे जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स की। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स, आप 4 साल का आपका ये प्रोग्राम होता है पूरा इंजीनियरिंग का, लेकिन इस दौरान आपको टारगेट मिला एक मोटर व्हीकल बनाने का। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे, तो उनको आप कैसे डील करते हो?
5: हमारे लिए पूरे साल का प्रोजेक्ट होता है ये, डिजाइनिंग से लेके फाइनली वर्किंग एटीवी बनाने तक का। कई बार हमने रात रात भर वर्कशॉप में काम किया है। हमें कॉलेज की क्लासेस और एग्जाम्स के साथ ही इसे मैनेज करना पड़ता था, तो काम आए रात को, नहीं तो वीकेंड्स पर ही कर पाते थे। फिर वेकेशन या हॉलीडे भी कोई मिलता तो हम फिर पूरे दिन वर्कशॉप पर ही होते थे।
0: लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है आदित्य, जब बहुत सारे लोग टीम में मिलकर काम करते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर, टेक्निकल इश्यू को लेकर अलग अलग बातें होती हैं, तो उसको कैसे डील किया? और जो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कभी कोई आती है किसी मुद्दे को लेकर, अगर आपकी टीम फंसती है, तो उसको कैसे डील करते हैं?
5: जी, तो उसके लिए हमारी टीम में डेडिकेटेड लोग होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी के अलग अलग सब सिस्टम्स है, हमारा ब्रेक्स है, हमारा ट्रांसमिशन व्हीकल की पावर का सिस्टम है, हमारा रोल केज का सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड सीनियर होता है जो उस पर पूरी नॉलेज रखता है। हाँ जी, एंड फिर कहीं से भी कुछ भी डाउट या आती है तो उसी की फाइनल कॉल होती है कि क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा व्हीकल पे।
0: कि कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर्स का गाइडेंस मिलता रहता है, फैकल्टी होती ही है, लेकिन इस मोटर व्हीकल को बनाने के अलावा भी आप अपनी इंजीनियरिंग की जो भी चीजें हैं, जो पढ़ाई है, उसको साथ ही साथ चला रहे होते हैं।
5: हाँ जी।
0: तो यानी कि स्टूडेंट कितने काबिल हैं, कितने होनहार हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के साथ साथ एक मोटर व्हीकल भी तैयार करते हैं। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। अगर मैं आदित्य से ना मिली होती तो शायद मुझे पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट्स भी मोटर व्हीकल बनाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो क्या कुछ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के दौरान क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों अल्फा जन में हम बात कर रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स की, और आदित्य हमें बता रहे हैं कि कैसे उनकी टीम मोटर व्हीकल्स को तैयार करती है। तो आदित्य, कहीं ना कहीं जब आप किसी मोटर व्हीकल को तैयार करते हैं, महीनों गुजर जाते हैं उसे तैयार करने में, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हैं, उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि जो व्हीकल आपने इतने चैलेंजेस को पार करके तैयार किया है वो ट्रैक पर जाने के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी है, तैयार है दौड़ने के लिए?
1: हाँ जी, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए हम व्हीकल की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और टेस्टिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार फेज भी होता है इस पूरे प्रोजेक्ट का। फाइनली इतने महीनों से जो हम बना रहे थे वो कॉलेज में चलता दिखता है, और उस एटीवी को कॉलेज में भगाने में भी मज़ा बहुत ज़्यादा आता है।
0: बिल्कुल, खुशी तो होती होगी जिस चीज़ में आपने महीनों लगा दिए, इतनी मेहनत की रात रात भर, वो फाइनली तैयार है और दौड़ रही है।

0: योर ट्रैक पर.
1: हाँ जी
0: वेरी
1: हाँ
0: गुड.
1: जी, सॉफ्टवेयर पर व्हीकल बिल्कुल परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती है। हमने गाड़ी के पार्ट्स टूटते देखे, ऐसी चीज़ें फेल होती देखी जो सोची भी नहीं थी कि जो फेल हो सकती है। कभी कभी हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरा पूरा दिन भी लगा देते थे, और उस टाइम स्पेशली स्ट्रेसफुल रहता था क्योंकि कॉम्पिटिशन बिल्कुल सर पर होता था हमारे।
0: तो आदित्य, जब ऐसा हुआ कि आपने देखा कि आपने जो चीज़ बनाई है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो दिल टूट जाता है. कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है, स्ट्रेस फेस किया है, तो कैसे उसको डील किया आपने?
1: हाँ जी, तो जब भी कोई कंपोनेंट फेल होता है ना, हम पहले देखते हैं कि वो कंपोनेंट फेल हुआ कैसे। मे बी कंपोनेंट हमने ज़्यादा वीक बना दिया था, या फिर हमारे डिज़ाइनिंग में कोई इशू था। फिर हम उसी चीज़ को दोबारा से रीडिज़ाइन करके व्हीकल पे इम्प्लीमेंट करते, फिर दोबारा टेस्ट करते थे।
0: ओके, यानी कि लगातार कोशिश करते हैं जिससे कि सफलता मिले और आपका जो भी व्हीकल है वो सक्सेसफुली ट्रैक पर दौड़ पाए.
1: हाँ जी
0: तो आदित्य, जब आपका जो व्हीकल है ट्रैक पे दौड़ता है, तो क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, दिस इज फाइन टू गो?
1: तो हम कॉलेज के टेस्टिंग के दौरान ना ट्राई करते हैं व्हीकल जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा रगेड चलाए उसको। फिर पत्थरों के ऊपर से चला देंगे उसको, गड्ढों से कुदा देंगे उसको, फुटपाथ से जंप करा
0: ऊबड़
1: देंगे
0: खाबड़ रोड पे उसको चला
1: पूरा।
0: जाए.
1: हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके यहाँ पे हो जाए, या और जो भी कुछ टूटने लायक है ना यहीं पर टूट जाए, ताकि हम उसे फिक्स कर सकें और कॉम्पिटिशन में ना टूटे।
0: यानी कि फाइनल फेज में आपके व्हीकल को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और वो अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो वो उसके लिए पूरा रेडी हो. टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हर्डल्स फेस करता है आपका व्हीकल, सो दैट कि वो फाइनल कंपटीशन के लिए बिल्कुल रेडी हो और जीत सके.
1: हाँ जी डेफिनेटली।
0: तो इस पर बात होती रहेगी आगे भी. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जेन. बात हो रही है स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स की.

है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: भैया का जवानी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा चैन, और आज अल्फा चैन में हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट आदित्य, और बात हो रही है मोटर स्पोर्ट्स के बारे में। तो आदित्य, हमने बात की मोटर स्पोर्ट्स के बारे में, जो आप व्हीकल बनाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स आप चेक करते हैं, और कैसे आपकी मेहनत साकार होती है और ट्रैक तक पहुंचती है। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं जानी वो ये कि कितने लोगों की टीम इस बड़े से टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करती है, आगे बढ़ती है।
9: तो हमारी टीम 25 लोगों की होती है। उसमें हमारे जूनियर्स होते हैं एंड उसमें हमारे सीनियर्स होते हैं। सीनियर्स हमारे हर सब सिस्टम के लीड्स होते हैं, जैसे चैसी लीड हो गया, पावर ट्रेन लीड हो गया। तो हाँ जी
8: जी, तो आपकी सीनियर जूनियर की टीम होती है, 25 लोग होते हैं आपकी टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग मिलके एक टारगेट पे काम करते हैं तो कई बार डिफरेंसेस आते हैं, मतभेद होते हैं, तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है। तो क्या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आपने फेस की

0: और अब कैसे उसको ओवरकम किया?
1: हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन हर टीम में आती है एंड उसको मैंने टीम में रह के सीखा कि उसको ओवरकम कैसे करना है। जैसे कोई जूनियर अगर कोई कोई भी इशू लेके आ रहा है या फिर कुछ बता रहा है कि ये चीज़ बेटर इंप्लीमेंट हो सकती है, तो सीनियर फटाफट क्या काम कर सकता है कि उसको बोल दे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम उसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हारा आइडिया है वो क्यों नहीं काम करेगा, या फिर अगर काम कर सकता है तो सीनियर हम उसे एंकरेज करते हैं कि आज हम ट्राई करते हैं उसको, फिर सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करते हैं, वैलिडेट करके देखते हैं।
0: यही नए आइडियाज को मौका भी मिलता है, लेकिन अगर कहीं कुछ उसमें गाइडेंस की जरूरत होती है तो सीनियर गाइड भी करते हैं। बहुत खूब आदित्य, बड़ी सी टीम मिलकर एक बहुत ही बड़े डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे काम करती है, मोटर व्हीकल बनाती है, तैयार करती है, उसकी टेस्टिंग करती है और उसको ट्रैक तक पहुंचाती है और कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आदित्य, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, ऐसा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को भी देना चाहेंगे?
1: मेरे मोटर स्पोर्ट्स के सफ़र से सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम सच में कुछ भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, और सबसे
0: बिल्कुल।
1: बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि तुम कैसे करोगे, कर तो तुम लोगे, लेकिन अपने माइंड में ये बिलीव करना है कि हाँ मैं कर लूँगा, समहा कर लूँगा, कैसे भी करना है।
0: यानी कि जब आप ठान लेते हैं कि ये काम करना है, और नॉलेज आपको होती है क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ की नॉलेज होती है और बहुत सारी चीज़ें आप काम करते करते, प्रोजेक्ट पे काम करते करते सीखते होंगे डेफिनेटली
1: हाँ जी,
0: आदित्य। चलिए आदित्य, इसी बढ़िया से नोट पर हम हमारे इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि समय हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। आगे हमारे लिसनर सुन पाएंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सभी लिसनर्स को मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए, स्पीड की दुनिया से रूबरू कराने के लिए।
1: जी थैंक यू शालिनी जी।
0: तो फिलहाल दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ। मैं आपको कहूंगी बाय बाय, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सैटेलाइट्स।

शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने तमिलनाडु के मुद्देर में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। आधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सहाद्री और INS कुलेश फिलिपींस की सुबी खाड़ी पहुंचे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना है। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सूचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। तो ये हैं अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन, लेकर आई हूं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि जब सफलता मिले ना तो शोर मच जाए।

देखिए, नैया तो साइड में आप पार्क भी कर सकते हैं क्योंकि बारिश के कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। सुन रहे हैं आप रेनबो प्रोग्राम एससी लाइट से बात कर रहे हैं दिल्ली के मौसम की। तो आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बिल्कुल देखिए गर्मी गर्मी सा रहा ना, 35 डिग्री हम लोग फील कर रहे थे, मिनिमम 26 डिग्री पता नहीं शायद सुबह के टाइम रहा होगा, और अभी शाम के 5 बजने को है मात्र 2 डिग्री कम होकर 33 डिग्री के आसपास ही पहुंचा है। अब घरों को जाने की जल्दी में आप सभी नैया वैया तो साइड में पार्क कर दीजिए, लेकिन अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे भी जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक नियमों का खास ख्याल रखना है। जो भी रूल, जो भी ट्रैफिक लिमिट वहां पर है, 2 व्हीलर पर है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने हेलमेट पहना हो, सिर्फ आपने ही नहीं जो आपके पीछे बैठे हैं उन्होंने भी पहना हो। सीट बेल्ट 4 व्हीलर वाले सभी जितने कार में आपके साथ है सबको जो है ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है, आप सब बेटर जानते हैं। ट्रैफिक कहाँ कहाँ हो सकता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हाँ छतरी वगैरह तो छोड़ सकते हैं, नैया भी साइड लगा सकते हैं। सुंदर ये रेनबो, आपको सारी अपडेट यहीं मिल जाएंगी, कहीं नहीं जाना है, दिल से दिल तक। अब देखिए इसमें नैनो का भी कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं अमित त्रिवेदी कह रहे हैं, बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि नैना तो कई बार खुशी में भी छलक जाते हैं और छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा है, वरना ख्वाहिशों का क्या है, वो तो देखिए पल पल बदल जाती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
7: बिल्कुल बिंदास बोलियो और बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। आपकी ये दिल की बात शुक्रवार को शामिल किए जाएगी कार्यक्रम बिंदास बोल में। इसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@rainbow@gmail.com पर। सुन रहे हैं प्रोग्राम से डिलाइट, दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन के साथ और फ्रिक्वेंसी दिल से दिल तक रेनबो 102.6 की। देखिए दिल आपका हो या अपनों का, उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दिल ही तो है जो बिना रुके धक धक धक धक काम कर रहा है।

डिलाइट सुन रहे हैं आप 102.6 रेनबो, दिल से दिल तक। और लाइफ के बारे में एक बात जो बिल्कुल सही सही कही जाती है कि जो हमारी लाइफ है ना, ये एक मिरर की तरह काम करती है। मतलब आप जब मुस्कुरा

मुस्कुराते दिखते हैं ना लाइफ को, तो ये भी मुस्कुराती है। जैसा आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं ना, तो वैसा ही आप फील भी करवाइए लाइफ के प्रति, यानी अपनी जिंदगी को खुशियां दीजिए, तो देखिए वापसी लौट लौट कर आपके पास खुशियां ही आएंगी। चलिए ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, और आप सभी को पता है कि इग्नू रोड पर जो है ना अभी सड़क के को ठीक किए जाने का काम चल रहा है, तो वहां पर ट्रैफिक जो है ना बहुत स्लो है, मतलब ऐसा बिल्कुल धीमे धीमे से निकल रहा है, भारी जाम भी लगा हुआ है, और ये आने वाले 2 दिन तक रहने वाले हैं। तो आपको यही कि भाई आप ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर वेस्ट एंड मार्ग जो है ना, वेस्ट एंड रोड, उसको आपको चूज करना है। और स्टिल आपको अगर इसी रोड से जाना है, सब यहीं से आपको निकल कर घर जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना होगा, क्योंकि क्योंकि एक तरफ तो काम चल ही रहा है ना, तो वो तो आप मान लीजिए कि कम सा ही अवेलेबल है, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए। और एक और रोड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है करमपुरा मोती नगर का फ्लाईओवर, और ये आने वाली 29 तारीख तक ऐसा ही यहाँ पर काम चलने वाला है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो है कोई ऑल्टरनेटिव रूट चूज किया, और ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर अगर देखिए आप ब्रिटानिया फ्लाईओवर से आ रहे हैं, चाहे तो आप क्लब रोड से आ रहे हैं, या फिर आप दूसरी तरफ से यानी कि पीरागढ़ी या पश्चिम विहार मादीपुर रोहतक रोड कहीं से भी आ रहे हैं, तो जो आपको अल्टरनेटिव रूट है ना वो आपको कह रहा है कि आपको जखीरा रोहतक रोड होते हुए जाना होगा, और उस पर भी आपको कंजेशन मिलेगा, आपको थोड़ा सा जाम तो मिलने वाला है, इसलिए आप टाइम लेकर जरूर चलें। सुनते रहिए रेनबो सभी अपडेट्स के लिए, और आपकी और हमारी बातों के लिए भी। बल बनता है इश्क को सलाम करना बनता है, आइए सलाम इश्क दें। सोनू निगम का ये गाना जब भी आता है ना, तो ऐसे एकदम डांसिंग वाइब्स आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हमारे घर परिवार में भी कोई शादी आए और ये गाना लाउड वॉल्यूम पे चलाकर हम भी एकदम ठुमके शुमके लगा लें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सैटेलाइट रेनबो 102.6 से। अगली बात जो सैटेलाइट्स में करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। देखिए, अगर आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से आपने जुलाई 2026 के सेशन के लिए अप्लाई करना था, बट समहाउ ये जो डेट आपसे मिस हो गई है, तो आप नोट कर लीजिए, न्यू एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। जो पहले 15 सितंबर थी, अब वो 30 सितंबर हो गई है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कीजिए ignou.ac.in पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अभिनव पुंशी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. घड़ी में इस वक्त बच रहे हैं दोस्तों 5:30 और अभी की सबसे तरोताजा खबर ये है कि कबड्डी में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो चुका है. ग्रुप ए का यह मुकाबला जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम ने बहुत ही स्ट्रांग स्टार्ट करी है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स बांग्लादेश. बाय द एंड ऑफ द हाफ टाइम इंडियन वुमेन वर लीडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश 21-10. जी हाँ, 21-10 से भारतीय महिलाओं को बढ़ोतरी मिली हुई थी और हाफ टाइम के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी भी भारत का जो स्कोर है वो है 39-21. यानी बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा एक तरीके से निकलकर बाहर आ रहा है. सो फार बांग्लादेश ने फाइट तो अच्छी दी है भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन भारतीय महिलाओं के करीब कबड्डी की इस मैच में वो आ नहीं पाए. और एक छोटा सा करेक्शन भी करना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए कि जो कबड्डी के ये मैचेस हैं उसमें भारत के साथ जो उनके ग्रुप ए के अंदर इस समय पेयर टुगेदर हैं वो है ईरान, बांग्लादेश और जापान. आज भारत का पहला मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ. इसके बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के खिलाफ जो कि है बुधवार यानी 23 सितंबर को तोकाए सिटीजन जिम्नाजियम में, और फाइनली उनका मुकाबला है जापान के खिलाफ 24 सितंबर को तोकाए सिटीजन जिम्नाजियम में ही. मेरे साथ है अभिनव. अभिनव, गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम.
1: जी हाँ साक्षी, स्टनिंग स्टार्ट बाय द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम. और अगर मेंस कबड्डी टीम की भी बात करें तो दे ऑल्सो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट अगेंस्ट द होस्ट जापान. इंडिया ने जापान को हराया 49-24. हाफ टाइम पे इंडिया वॉज लीडिंग 31-9. आशु मलिक और देवांग दलाल ने तो अपना कमाल दिखाया ही, और हमारे मेन कबड्डी प्लेयर्स मैच में ज्यादा एंट्री नहीं कर पाए, ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, रेस्ट कर रहे थे. और होस के साथ थोड़ा सा इंडिया ने टेक इट इजी करा एज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन सुनील कुमार, मगर गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन मेन्स कबड्डी कंटिंजेंट. अब इंडिया और कोरिया का मुकाबला होने वाला है कल, जब हमारी मेन्स टीम चाहेगी थोड़ा मोमेंटम फिर से गेन करें. याद दिलाए इंडियन मेन्स भी है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो क्या इस बारी रिपीट होने वाला है? एंड साक्षी, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर अस फ्रॉम द विमेन्स मैच, बिकॉज मुझे लग रहा है बस 20 सेकंड बाकी है और इंडिया कंफर्टेबली जीत रही है.
0: हाँ जी, इस मुकाबले में तो भारत की जीत तय ही है, निश्चित हो चुकी है ऑलमोस्ट. लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक ये मुकाबला समाप्त ना हो तब तक समाप्त होता नहीं है. लेकिन अभी अगर विमेन्स टेबल टेनिस मुकाबले की भी बात करें तो वहां पर भी दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से आज हरा दिया. मैं बात कर रही हूँ विमेन्स टेबल टेनिस टाई मैच की, जो टीम मैच था. इसमें श्रीजा अकुला ने भारत की टीम को जीत दिलाई आखिरी मुकाबले में, जहां उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराया. एंड एज अ रिजल्ट इंडिया वाज एबल टू फिनिश एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो इस मैच के अंदर रहा, या मैं कहूं इस मुकाबले में रहा, वो था सिंड्रेला दास का. इट वॉज अ डेब्यू इन एशियन गेम्स दिस ईयर एंड शी बीट कलसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, जिसकी वजह से भारत को 2-0 से बढ़त मिल गई थी पाकिस्तान के ऊपर. और फाइनली कहते हैं ना कि द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वाज सर्व्ड बाय श्रीजा अकुला, जिन्होंने 3-0 से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलवा दी महिला टेबल टेनिस के टीम टेबल टेनिस टाई के अंदर. अब भारत का सामना होगा थाईलैंड के साथ कल इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज एनकाउंटर. वैसे तो भारत क्वालिफाई कर गया है, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से कल भारत थाईलैंड के साथ फेस टू फेस आने वाला अभिनव.
1: और जैसा हमने आपको प्रॉमिस करा था वो ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको दे सकते हैं. इंडिया ने अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 42-21. सो वेरी गुड डे फॉर द इंडियन कबड्डी टीम, बोथ मेन्स एंड वुमेन्स. एंड साक्षी वॉज टॉकिंग अबाउट द टेबल टेनिस टीम, और इंडियन मेन्स टेबल टेनिस टीम वॉज ऑल्सो अप अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान. और याद दिलाएं इंडियन मेन्स हैड टू विन दिस मैच क्योंकि ईरान से हार उनको मिली थी. तो इंडियन मेन्स ने पाकिस्तान को हराया 3-0. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हरमीत देसाई, सत्यन गणेशन एंड प्रयास जैन. एंड इस विन के साथ इंडिया अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्वार्टर फाइनल्स, अभी क्वार्टर फाइनल्स की जगह पक्की नहीं हुई है. एंड ऑफकोर्स लेटेस्ट एशियन गेम्स की सारी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़िए ऑन आकाशवाणी. हम एक घंटे में 6:30 में आपको फिर सारी अपडेट्स बताएंगे आईची नगोया से. सो स्टे ट्यून्ड.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
0: A
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट दिल्ली की चाशनी गुरेश रजन के साथ FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सब आपके नाम सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुड़ सृजन और रेनबो 102.6 से अगली बात कर लेते हैं। देखिए, पहले एक बात करते हैं और उसके बाद मैं किसी अपडेट पर आती हूँ। देखिए, आपने माचिस की तिल्ली को तो देखा होगा, हमेशा हम माचिस जलाते भी हैं पूजा के लिए, किसी भी काम के लिए। तो तिल्ली का जो हेड है ना, वहां पर उसका जो है हेड के अंदर कुछ नहीं है, दिमाग नहीं है, मतलब बस वो हेड है। और उसे आप थोड़ा सा भी स्पार्क करेंगे ना तो वो एकदम से जल उठती है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास सर भी है और उसमें दिमाग भी है, हेड भी है और माइंड भी है। तो देखिए, हम क्यों छोटी छोटी बातों पर ऐसी अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए ना। तो नोट कर लीजिए कि अब जो हमारे पास हेड है, दिमाग है, उसका इस्तेमाल करेंगे और छोटी छोटी बातों पर अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, इस गुस्से को दरकिनार कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो अब एम्स की बात मैं आप सभी से करना चाहूंगी। ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग मंथ जो है एम्स सेलिब्रेट करने जा रहा है। 1 सितंबर से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था और ये 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसके अंतर्गत ये जो शिविर आयोजित किया गया है या फिर ये जो बात सब तक पहुंचाई जा रही है, इसमें स्क्रीनिंग तो होगी ही, इसके तहत जागरूकता के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी कदम एम्स संस्थान द्वारा उठाया गया है, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम वाले मरीजों की बोन मिनरल डेंसिटी यानी BMD की जो जांच है वो निशुल्क की जाएगी। श्रोताओं, आप सभी ध्यान दीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ये हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसे हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। इसके अंदर जो बोन डेंसिटी है, जो लिक्विड है, वो कम कम कम होता चला जाता है। जो हड्डियां हैं वो कमजोर या फिर डॉटेड, जिससे कि आसानी से टूट जाए, कुछ ऐसी शक्ल लेने लग जाती है। अब इसके जो मेन रीजंस हैं वो क्या है कि एक तो अगर फीमेल्स में बात करें तो मेनोपॉज या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के चलते ऐसा हो जाता है। उम्र के साथ साथ भी ऐसा हो जाता है, जब जब जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो नई हड्डियां बनने की जो गति है वो धीमी हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, और जो पुरानी हड्डियां हैं वो कमजोर होती होती चली जाती हैं। और सबसे मेन जो रीजन है वो है हमारी थाली, यानी अगर हमारी थाली पोषण की कमी है, वहां पर कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज, चाहे वो कोई भी गतिविधि ना करना हो, कुछ ऐसी बेमतलब की दवाइयां आप बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लेते रहते हैं, आप स्मोकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये सब रीजंस क्रिएट करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के। और क्या क्या मैंने कहा कि जैसे ये एक साइलेंट डिजीज है, इसके शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं है, बेहद धीरे धीरे पता चलने लगता है। कई बार तो लोगों को इसका पता तब चलता है जब मान लीजिए कोई मामूली छींक या झटके से ही हड्डी टूट जाए, तब ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो समस्या है जो अब जन्म ले चुकी है। तो प्रिकॉशन पे भी बात कर लेते हैं झटपट से, आप बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी थाली सेहत वाली कर लीजिए, कैल्शियम और विटामिन डी सोर्सेस पर भी बात करूंगी। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, योग को स्थान दीजिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि भैया अलर्ट हो जाइए, ये बेल रिंग हुई है, तो आपको डॉक्टर से जरूर जरूर कंसल्ट करना है। सोर्सेस पे बात करूंगी इस गाने के बाद, सुनते रहिए रेनबो 102.6।

देखिए डिस्को तक जाना हो या फिर गलियों में ही जाना हो, हड्डियों को मजबूती तो चाहिए ही चाहिए, यानी आपकी बोन्स एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। बात की हमने ऑस्टियोपोरोसिस पर, तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि हम बात करेंगे आपको सोर्सेस क्या क्या लेनी है, रिच सोर्सेस। तो कैल्शियम और विटामिन D3 आपको अपने बॉडी में बहुत सारा इनहेल करना है। इसके लिए आप कैल्शियम के लिए क्या करेंगे, आपको डेयरी प्रोडक्ट, चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो, ये सब लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, ये सब यूज करना है, खाना है। आप सीड्स यानी तिल, बादाम, ऐसे बीज, मेवे, ये सब भी ले सकते हैं। आप अनाज के तौर पर रागी चुन सकते हैं, रागी का आटा, इसकी रोटी बनाकर खाएं, बहुत फायदेमंद होता है हमारे हमारे बॉडी में, कैल्शियम को डेवलप करता है। आप फल भी खा सकते हैं, जैसे अंजीर चुन सकते हैं अगर आप ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं। और विटामिन D3 की बात करें तो ये हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन में विटामिन D3 कम है, जबकि हम सभी के पास बिल्कुल फ्री D3 सोर्स है, धूप, सनलाइट। आपको सुबह के समय बस 20 से 30 मिनट जो है विटामिन D3 इनहेल करना है, धूप में बैठना है, ये सबसे नेचुरल सोर्स है विटामिन D3। आप इसके अलावा आप फिश, एग का स्पेशली जो येलो पार्ट होता है ना, वो विटामिन D3 का रिच सोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हैं। आप जूसेस ले सकते हैं जिसमें कि संतरे का जूस, वो भी आप अगर उसको घर पर निकाल सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप सीधा फ्रूट ले लीजिए, रेदर कि आप उसको बाहर से ऐसे ले रहे हैं, उसमें भी प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं। सो विटामिन D3 बहुत जरूरी है, सो दैट हम स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं, हमारी हड्डियां सही से मजबूती से चलती रहे।

0: सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सैटेलाइट रेनबो 102.6 से।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: दिल्ली में देखें तो सैटेलाइट सुन रहे हैं आप, और दिल्ली वालों के लिए मैं जो अगली बात करने जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम सभी काफी टाइम से सफर कर रहे हैं कि DTC बसेस जो हैं वो अभी स्ट्राइक पर चल रहे हैं, बस ड्राइवर्स की स्ट्राइक चल रही है, जो एक मेन जो है DTC बसेस को लेकर अभी फिलहाल कदम उठाया गया कि काफी सारे जो एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, उन्हें बसेस दी गई हैं, उन्हें व्हील्स दे दिए गए हैं, स्टेयरिंग थमा दिए गए हैं कि आप बसेस लेकर सड़कों पर उतरे, तो काफी राहत है। 35% जो बसेज हैं वो अब वापसी कर रही हैं और धीरे धीरे जो है काम किया जा रहा है कि बसेज वापस कर लें। सो आप अभी, क्योंकि हमने ट्रैफिक पर भी बात की है, सभी लोगों के घरों को जाने का टाइम है, सो आप टाइमली ऐसे बिहेव करें कि आप घर ही जा रहे हैं तो आप शांति से सही सलामत घर पहुंचे। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी।

सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यम कनेक्टिविटी दिल से दिल तक की है। अगला प्रोग्राम मिसेज मसाला मिक्स आमरीन को आते हुए देखा था मैंने, उसके पास धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, अमचूर, बहुत सारे मसाले थे। यानी आपके मैसेजेस के साथ पूरे पूरे मसाले मिक्स करेंगी अमरीन खान, लेकर आएंगी आपके लिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम कंट्री कार्निवल मुक्ता के साथ 8 बजे। एक बार फिर मस्ती म्यूजिक मस्ती लेकर अमरीन होंगी और प्रवीण शर्मा लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम आपकी याद आती रही और रंगे महफिल। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक। और मुझे यानी अपनी दोस्त सृजन को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपनों का और अपनों का खूब खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और बोलिए ओम इग्नोर आई नमः। एक्स्ट्रा चीजों को इग्नोर कर दीजिए, देखिए स्माइल आपके चेहरे पर कैसे फिक्स हो जाएगी। सुनते रहिए रेनबो, नमस्कार।

नमस्कार, पूरे छह बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। आधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सहाद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंचे। फुजी फिल्म इंडिया के प्रबंध निर्देशक कोजी वाडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना है। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। तो ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। क्या टाइम हो गया है पता है ना, 6:03 और पूरे 35 सेकेंड। आ गई है एम्ब्रीन आपके साथ आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक पर, प्रोग्राम मिसिक मसाला मिक्स लेकर।

कई बार वाकई में दिल जो है ना कुछ भी बातें नहीं कह पाता है और सोचता रहता है कि कहें या नहीं कहें, कहें या नहीं कहें, इसी कश्मकश में डूबा रहता है। क्या करें, दिल भी जो है ना कभी कभी दिमाग रख लेता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। एमरीन है ना आपके साथ और आपकी बातें आपके जज्बात मेरे साथ हैं। आज देखिए ना, जब मैं पूछती हूँ ना कि भाई क्या हालचाल है, सबसे ज़रूरी है हम लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से तो पूछना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है कि जब एक दूसरे का हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा चल रहा है, तो एक दिल को खुशी मिलती है। तो ऐसी दिल को खुशी मुझे मिलती है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं ना और कहते हैं जी हम बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा चल रहा है, तो अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। अनुभव का भी देखिए ना मैसेज आ चुका है और शिव का भी मैसेज आ चुका है और लिपि का भी मैसेज आ चुका है, दीपाली का भी मैसेज आ गया है, सबके मैसेज आ रहे हैं और यहाँ तक कि सरफराज का भी मैसेज आ चुका है, जाहिद का, सब लोग, अब्दुल वाजिद, सब लोग कह रहे हैं हम जी बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, अच्छे हैं। अच्छी बात है ना, मजा आता है प्रोग्राम जब शुरू हो और सब कहें कि बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा चल रहा है, तो बस दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। मैं भी अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मैं क्यों ना बोलूँ क्योंकि पूछा है ना, आप भी तो बताएं, मैं भी अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अच्छी हूँ। जब यहाँ पर आती हूँ और दिल कर मतलब ये होता है ना कि आज तो बस बातें करनी है, खूब सारी बातें करनी है, पता चलेगा भाई इतने दिन से क्या हाल चाल चल रहे थे, कहाँ बिजी थे, कैसा हो रहा है सब कुछ, कैसा लाइफ में नया नया कुछ है, तो उसका जो एक एक्साइटमेंट रहता है ना मुझे, वो बस मैं आपको क्या बताऊं, वो मोहब्बत का जो वो सुरूर, आहा, शब्दों में कई बार ना बातें जो बयां होती हैं वो नहीं हो पाती है ना, मेरे से भी नहीं हो पाती है। वेल, आज मैं क्या पूछने नहीं वाली हूँ, आज हम किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो आप लोग अपना बताते हैं ना कि मुझे लगता है कि ऐसा, मुझे लगता है वैसा, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर तो नहीं लेकिन हम लोगों में जो डिस्कशन चलता है कि ऐसा होना चाहिए, मेरी चीज़ मेरी फेवरेट क्या है, जो जो भी चीज़ पर हम बात करते हैं, तो मैं बता दूँ या पहले गाना सुनूँ? पहले एक मुझे लगता है कि गाना सुनना चाहिए।

उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस बारे में आज हम जो है बात करने जा रहे हैं। कहीं मत जाएं, बने रहें जल्दी से। और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के मैसेज नहीं आए हैं, जिनका जो है ना मेरी आंखें जो है वो इंतजार कर रही हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हेलो मैम, आ गया आपकी वॉइस। किसका मैसेज है? रणबीर का मैसेज आ चुका है। रणवीर क्या हाल है, किसको मिस कर रहे हो? ये अपनी फ्रेंड तनु को बहुत मिस कर रहे हैं। आप तनु को बहुत मिस कर रहे हो, तो तनु अगर शो सुन रही हैं तो प्लीज़ आप भी ऑन जो है ना फटाफट आकाशवाणी एफएम रेन वो फटाफट लगा लीजिए। तो ये है, जब बातें होंगी और इधर से उधर बातों का जो वो भी होगा ना, जो आदान प्रदान, तो ऐसे जब होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, आप क्या कहते हैं बताओ? आंखें भी होती हैं दिल की जुबान या नहीं होती हैं? सुनते रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ, ऐसा ऐसा होता है। आंखें भी जो होती हैं दिल की जुबां होती हैं। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स एम्ब्रीन के साथ, और नरेंद्र कह रहे हैं सही में आंखें जो होती ना दिल की जुबां होती हैं। जब दिल कुछ ना कहे और शर्म आने लगे तो आंखें खुद ब खुद जो हैं वो बयां कर देती हैं दिल का हाल। आए हाय, ये तो बात सही कही आपने। जो दिल का हाल बताने का जो हुनर रखती है ना, वो सिर्फ आंखें ही रखती हैं और कोई नहीं रखता है। और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं जो है आज क्या पूछने वाली है, क्या पूछने वाली है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए। तो सबके मैसेज तो आ गए हैं और मैं सबके मैसेज शामिल करूंगी। तो मुझे अब ये बताइए कि सबके अंदर ना मदद का जज्बा तो सब में होता है ना, कोई भी हो सब में होता है, सब मदद करना चाहते हैं। तो अब मैं ये पूछ रही हूं आप लोगों से कि दूसरों की मदद के लिहाज से आप अपनी अंदर की कोई एक ऐसी आदत बताएं जो आपको सुकून देती है। मतलब आपने मदद तो की, आपका अच्छा, आपको अच्छा लगा कि हमने मदद की है, तो वो हैबिट बताइए कि जब आप मदद कर लेते हैं, मदद कर देते हैं दूसरों की, तो वो हैबिट आपको बतानी है कि जो आपको अंदर से सुकून देती है। क्या ऐसी सोच आती है आपके दिमाग में, या क्या आपकी वो ऐसी हैबिट है जो दूसरों की मदद करने के बाद सुकून हासिल करती है कि हाँ ये अब मुझे सुकून मिला है, मैं अपनी इस आदत को जो है वो बरकरार रखना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, और जो मैसेज है ना उसका बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारे मैसेज शामिल नहीं करूंगी तो फिर कहेंगे नाराजगियां होने लगेंगी, और मैं नाराजगियां बिल्कुल नहीं चाहती, और आज तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं नाराजगी, आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती नाराजगी। इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मैं वैसे कभी भी नहीं चाहती हूं। अच्छा, तो उन्हें लगता है जब दोस्त नाराज होने लगते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो कहीं मत जाए, हमारे साथ बने रहे। 9868107070 पर फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स भेजें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं उस लिहाज से आपको बताना है कि अपने अंदर की वो कौन सी हैबिट है जो आपको खुद पसंद आती है। अपने अंदर भी तो कितनी अच्छी आदतें होती ना, कई बार तो दूसरा ही बताता है, वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पर्सनली हमें अपनी भी हैबिट्स पता होनी चाहिए कि जो हमें वाकई में पर्सनली बहुत पसंद है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक के साथ। मोहम्मद सईद अब्बासी का भी मैसेज आ चुका है सबका, निगहत शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान का भी मैसेज आ चुका है, और कविता का भी मैसेज आ चुका है। बहुत सारी बातें लिखी हैं, सबके मैसेज का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे चाहिए मेरे मैसेज का जवाब जल्दी से। कृष्णा इंदा का भी मैसेज आ चुका है, मैं सब इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सबने अपनी खैरियत के मैसेज भेजे कि हम सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। और मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, मानवी, लक्ष्य, इन सब का भी मैसेज आ चुका है, अच्छी बात है। और नरेंद्र का तो मैं मैसेज ले चुकी हूँ, क्योंकि नरेंद्र का भी मैसेज आ चुका है। तो अब जल्दी से मुझे फटाफट मेरी इस बात का जवाब दीजिए, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। 6:18 पूरे 47 सेकंड हो गए हैं। कायदे से क्या बात हो रही है, कायदे से ये बात हो रही है, सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

हाँ, कायदे से तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कायदे से ही मोहब्बत होती है, कायदे से ही लड़ाई भी हो जाती है, ऐसा फ्रेंड्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, लेकिन कायदे से जो है ना लड़ाई नहीं होती है, कायदे से लड़ाई भी हो जाती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम चल रहा है ना आपका, मैसेज मसाला मिक्स। कंचन का मैसेज आया, कहती हैं कि गुड इवनिंग जी, प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, थैंक यू। लिखा है इन्होंने कि हम किसी की मदद, जब हम किसी की मदद करते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, अंदर से प्राउड फील होता है और दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। इनको जो है, जो वो प्राउड फील होता है ना, जो ये हेल्प करने के बाद कि हाँ प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो इनको जो है वो सुकून देता है, इनकी ये वाली जो आदत है इनको ये सुकून देती है। अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। और ये मैसेज है किसका, नवाब अहमद का है, इन्होंने लिखा है कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो ऊपर वाले का एहसान मानता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे, मतलब इस काबिल बनाया कि मैं मदद कर पा रहा हूँ, क्या बात है, और उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। ओए होए, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी की मदद करने के बाद, और मतलब मदद की और फिर इन्होंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस काबिल बनाया, तो ये जो इनकी आदत है, इस आदत को सोच कर जब ये सोचते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, मजा आ गया, मजा आ गया, सही में अच्छा लग रहा है सुनकर। और ये किसका है, अनिल शर्मा का मैसेज है, सरिता विहार से, कह रहे हैं कि मेरी आदत किसी बूढ़े को रास्ता पार करने में जो मैं मदद करवाता हूँ, इससे मुझे समाज के प्रति जिम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ, ये मेरी आदत मुझे जो है अच्छी भी लगती है और बहुत खुशी देती है। क्या बात है, मतलब एक के बाद एक जो होता है ना, ये ऐसी बातें हो रही हैं कि किसी को रास्ता, वो भी बुजुर्ग इंसान को रास्ता जो है वो पार करवाना, और समाज के प्रति उसको अपनी एक जिम्मेदारी समझना, ये हैबिट, वाकई में ये हैबिट है, तभी तो खुशी मिल रही है। बहुत बढ़िया बात है अनिल शर्मा जी, वाकई में एक तो इतना अच्छा काम, नेक काम, और ऊपर से और एक इसको जिम्मेदारी के साथ करना, अपनी इस आदत को निभाना, बहुत काबिले तारीफ जिसे कहते हैं ना वो। और ये मैसेज है, लिखा है कि मैं तो आज के, अच्छा ये कहना चाहती हूँ कि मैम जब बात किसी की हेल्प करने की हो, तो हेल्प करने के बाद हमेशा मेरे मन में यही बात आती है कि चलो हमारी वजह से किसी और की हेल्प हुई, फिर हम और ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब एक के बाद जो और जज्बा आया ना कि हम औरों की भी मदद ऐसे करेंगे, तो जो ये हैबिट डेवलप हुई है कि हम औरों की भी मदद करेंगे, ये वाकई में, वाकई में

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है दोस्तों अभिनव पुंछी, और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त यानी शाम के 6:30 बजे द एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। और सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त मैं आपको दे सकती हूँ वो है कबड्डी की दुनिया से, जहाँ हमारी महिलाओं ने आज बांग्लादेश को एक तरफी जीत में शिकस्त दिया है। जी हाँ, द डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ऑब्वियसली वेंट on to defeat Bangladesh 42-21 before the first half। कह सकते हैं कि first half में भारत के पास जो lead थी वो थी

0: 21-10 की बांग्लादेश के ऊपर, और फर्स्ट हाफ समाप्त होने के बाद बांग्लादेश बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाया ना कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि भारतीय महिलाओं का दबदबा उनके ऊपर बरकरार रहा। फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाने के बाद भी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि भारत ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया था 21-11 से, और अंत में हम कह सकते हैं जो टोटल पॉइंट्स भारत के पास आए वो थे 42 अंक, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास सिर्फ 21 अंक थे, यानी 42-21 से भारतीय महिलाओं की कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को दे दी शिकस्त, और डिपेंडिंग चैंपियंस होने का जो सरताज हमारे सर के ऊपर है इस वक्त वो हमने अभी भी बरकरार रखा है अभिनव।
1: जी हाँ, कामयाबी हमें मिली कबड्डी में और कामयाबी भी हमें मिली है टेबल टेनिस के कोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को हराया मेंस एंड विमेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में, और इंडियन मेंस टीम को यह जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि याद दिलाए इंडियन मेंस टीम 3-0 हारी थी ईरान से, तो उनको आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में, मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज।
0: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से स्ट्रेट गेम्स में हराकर भारत को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहाँ पर लाके खड़ा किया, और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया। एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष, और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर, और इसके बाद सिर्फ श्रीजा कुला को एक नेम से गेम खेलना था जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको हराया, और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल। और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है।
1: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। और हमें पता है दैट ऑल आर लिसनर्स वाज बी थिंकिंग वेयर इज दिस गोल्ड मेडल कमिंग फ्रॉम। अभी तक इंडिया के पास मेडल टैली में इंडिया 12th पोजीशन में, शूटिंग से सिल्वर मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं हमारे पास, मगर गोल्ड कल आ सकता है। जी हाँ, गोल्ड का अकाउंट हमारा खुल सकता है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका 10:30 AM क्रिकेट का मैच होने वाला है, और ये रिपीट है एशिया कप फाइनल का, जहां हमें याद है इंडिया ने वो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, श्रीलंका से रिवेंज लिया था। और साक्षी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोल्ड टुमारो?
0: एनी डे एनी टाइम। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो हमारे एथलीट्स हो या प्लेयर्स हो, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड एनी पर्सन हु लव्स क्रिकेट, हु लव्स स्पोर्ट्स इन जनरल, विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर प्लेयर्स हु वर्क डे एंड नाइट सो हार्ड टू गेट आवर कंट्री दैट कवेटेड गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही दोस्तों, इस वक्त तो फिलहाल अपडेट्स का सिलसिला यहां पर आकर समाप्त तो होता है, लेकिन हम वापस से आपसे एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे, जहां पर आज के दिन का आखिरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन एशियन गेम्स में।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालीखां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर।

0: मिनटों में।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक और 6:37 और पूरे 9 सेकंड हो गए हैं। मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है, अमरीन भी आपके साथ है और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं यहाँ पर हो रही हैं, बहुत अच्छे जिक्र हो रहे हैं और जिस मतलब जो जो चीज़ जो जो हेल्प करके जो आप लोगों को सुकून मिलता है और लगता है कि ये आदत हमारे अंदर कितनी अच्छी है और हम इसको और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये बात सुनकर ना मुझे सच बता रही हूँ बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। फिलहाल अभी जो है और भी मैसेज जो आ रहे हैं तो बस अभी लेते हैं ना। ये वाला गाना भी बोल रहा है कि अमरीन प्ले कर दो, बहुत देर हो गई है, तो बस जश्न बहारा सुनते हैं और फिर अपने मैसेज जो आप लोग बताना चाह रहे हैं ना, अपनी दिल की बात, जो ये हैबिट मेरे अंदर बहुत अच्छी हो जिससे सुकून मिलता है, तो बस अभी आते हैं। यूं कहीं यूं आए, सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक।

गाना, सूदिंग माहौल, आय हाय क्या, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ दीवानगी सी हो गई है, और इतने प्यारे प्यारे गाने सुनो तो बस अच्छा लगता है कि इसमें खोए रहो. वेल, खोए मत रहो, इसलिए क्योंकि अभी खोना नहीं है ना, अभी तो पाना ही पाना है. आई मीन टू से कि भाई अभी मैसेज का सिलसिला है ना, तो वो होते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए. शिव का मैसेज आया मेरठ से, कहते हैं कि किसी की मदद करके जो खुशी मदद लेने वाले को तो जो मिलती मिलती है, उससे कहीं जो है ज़्यादा खुशी मदद करने वाले को मिलती है. और वो ही पूरा दिन जो है वो बहुत मतलब जो है अच्छे से गुजरता है. ये बात हुई ना शिव, कि जो मदद जिसकी की जा रही है वो तो वाकई में खुश होगा, लेकिन जो मदद कर रहा है, जो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है, दिली खुशी जो मिलती है, वो वाकई, वो जो सुकून है ना, वो कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, वो नहीं दे सकती. अच्छी बात है. और मोहम्मद सईद अब्बासी का मैसेज है, कहते हैं कि हमें तो बचपन से हर किसी की मदद करने की हम तलाश में रहते हैं, बचपन से. क्या बात, ये तो मतलब बड़ी आदत जो है, इतनी प्यारी आदत बचपन से ही है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. और मदद करने के बाद भूल भी जाते हैं, ओए होए, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ एक ही रजिस्टर इन कामों का है, कामों का भी है. बात तो आपने सही कही कि मदद की और भूल गए, लेकिन दिल में ये तसल्ली है कि मदद की है, मदद की है, और ऊपर वाला जो है उसका हिसाब कर रहा है. भाई वाह, बहुत खूब. कहते हैं ना कि जब मदद आप करें तो दाएं हाथ नहीं की तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए. आपका जो है वो मानना, आपकी जो सोच है वो कुछ ऐसे कहती है ना. सही कहा ना. और कविता का मैसेज है, कहते हैं कि मेरे एक भाई हैं, और वो जहाँ पे भी रहते हैं, कहते हैं कि वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं. क्या बात, उन्होंने अपने जिसे बोलते हैं मदद के लिहाज से, तो उन्होंने बहुत अच्छा ही काम चुन लिया कि वो मदद ही करते हैं. तो उनको तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता होगा और कितने खुश रहते होंगे, ये वही उनका दिल जानता होगा. बिल्कुल सही बात. और ये मैसेज किसका है, गुड इवनिंग जी, बसंत कुमार ठाकुर का मैसेज है. प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने अपनी वो आदत नहीं बताई को जिस आदत से आप बहुत खुश होते हैं जब आप मदद करते हैं, जब सुकून हासिल होता है, वो तो आपने नहीं बताया. जल्दी से बताइए, फटाफट इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अभी 6:45 और पूरे 24 सेकंड हुए हैं. ठीक है, पंकज का मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें मदद करता हूँ, जो बातें उनको पता नहीं होती हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई, तो वो मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको होमवर्क कराता हूँ, तो बहुत जो है दिल को सुकून हासिल होता है. तो बस और क्या चाहिए, इस भागती दौड़ती जिंदगी में पंकज सुकून मिल जाए, और सुकून वो भी ऐसा सुकून जो मदद करके मिल रहा है. आहा, क्या बात है, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है. कन्हैया लाल

का मैसेज आया आकाश कन्हैया लाल, रीता देवी और शिल्पी रानी और आकाश का, कहते हैं कि जो किसी की सहायता करे वही सबसे बड़ वही सबसे बड़ा उसके लिए भगवान है। खैर, भगवान ही दिल के अंदर डालता है, वो जो ईश्वर है वो ही दिलों में चीजें डालता है। और बाकी जो ये मदद का जज्बा होता है, मुझे तो लगता है कि जिसके अंदर भी मदद का जज्बा है और वो अपनी इस आदत को जानता है, तो इस आदत को हमें एक दूसरे को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब हम ये आदतें बताते हैं एक दूसरे को तो हो सकता है सामने वाले के दिमाग में ना हो, लेकिन बातें सुनकर बातें कर कर वो जज्बा सामने वाले के दिमाग में भी आ जाए, बहुत जरूरी होता है। आदिल कुमार का भी मैसेज आ चुका है, लेकिन आदिल कुछ नहीं बताया आपने, वो तो बताओ कि कौन सी ऐसी हैबिट है आपकी, जब आप मदद करते हैं उसके बाद जो आपको खुशी हासिल होती है वो वाली हैबिट मुझे पता करनी है। और भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि जब भी ये सीनियर सिटीजन की मदद करते हैं तो जो उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो जो ब्लेसिंग्स, क्या बात, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज पर आ गए भुवनेश। और उसकी जो पावर मिलती है वाकई वो कहीं नहीं मिल सकती। ये बात तो तुमने भुवनेश बहुत अच्छी कही है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, चलो आपने तो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स लिखा है, लेकिन हम जिसकी भी मदद करते हैं तो वो जो ब्लेसिंग्स का सिलसिला जब शुरू होता है ना दुआओं का, जो आज की डेट में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है, देते हैं सब लोग, हम सब लोग गिफ्ट्स में इसमें उसमें सब चीजों में लग गए, लेकिन जो दुआएं हैं जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो वाकई सीधा सीधा किस्मत बना देती हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि जब आप मदद करते हैं तो कितनी सारी दुआएं आपको मिलती चली जाती हैं, और वो दुआ कब काम आती है ना नहीं पता होता आपको वाकई में। और ये किसका मैसेज है, बबलू का मैसेज है, लिखा है गरीब बच्चों के एजुकेशन से संबंधित कॉपी किताबें वगैरह बनाता, क्या लिखा है, बनाता हूँ मुझे, अच्छा बनाती हैं, जितने भी जो भी हैं जितनी भी मदद हो सकती है उन बच्चों के लिए वो कॉपी किताबें बनाते हैं, और सुकून देती है ये चीज़। बबलू वाकई में सुकून मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो एजुकेशन सिस्टम, मतलब आप इतनी बड़ी चीज़ की एजुकेशन में आप हेल्प कर रहे हैं, और उसके बाद वो सुकून जो आपको मिलेगा कि वाकई में जब अपने ही देश के बच्चे कितने जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो वाकई सुकून मिलेगा। अच्छा लग रहा है मुझे ये सुकून की बातें करके। फिलहाल कहीं मत जाएं, बने रहें और जल्दी जल्दी जवाब दें मेरी बात का। 9868107070 पर एम्ब्रीन इंतजार कर रही है। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ दोस्तों, 6:58 और पूरे 43 सेकंड हो गए। कई बार वक्त का तो जो है ना वो पता ही नहीं चलता है कि कैसे जो है वक्त गुजर गया और निकल गया, है ना। ऐसे ही होता है ना जब बातें इतनी अच्छी चल रही हैं। और देखिए ना, बातें चल रही थी हमारी किस चीज़ की, कि भाई मदद के बाद जो एक सुकून मिलता है वो हमारी कौन सी ऐसी हैबिट है जो जिससे हमें एक सुकून हासिल होता है। सबको यही हुआ है कि जिस आदत के बाद, मतलब जो हमारी जो हैबिट है वो यही होनी चाहिए कि मदद करने के बाद या तो भूल जाओ या फिर जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना उसके बाद जो सुकून मिलता है वो वाकई में काबिले तारीफ होता है। फिलहाल तो अमरीन के घर जाने का वक्त आ गया है। जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, हमेशा कहती हूँ ना। तो भाई यहाँ पर आपसे मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा, फिर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए, यही कहूंगी। क्योंकि हम लोग अपना जो है ना ख्याल नहीं रखते हैं, कई बार भूल जाते हैं, इतने बिजी बिजी बिजी बिजी बिजी हो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। तो अपना ख्याल रखना ना भूलें। फिलहाल एमरीन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।

0: Yeah, well, the deal is done. The Gambler song by Kenny Rogers. It was requested from one of the listeners, Sriram, as well. Thank you for joining in. And he's saying, wonderful show and playing nice track. Even Rollins has written, good evening, great start. Thank you so much. This is your host, Mukhtar Alchandani. And that song, Kenny Rogers, and that isn't that what country music does to all of us. It takes us go somewhere every time and whenever we are completely involved in the lyrics or music. Sometimes it's a highway, sometimes it's a small town, sometimes it's a memory, and sometimes it's simply a feeling. And before we continue ahead, let's catch up with some information and promos, and we'll get back.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 per.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Now let's continue our journey with one of the great ladies of country music, Dolly Parton.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
4: Dolly Parton, what a voice, what a songwriter, and what a storyteller. Jolene track is one of its kind of country storytelling songs at its finest, direct, dramatic, and with unforgettable lyrics. Well, let's take things back to the golden age of country music with a song that has become a true American classic, Tammy Wynette.

0: थोड़ा सा प्रीव्यू कि कल क्या होने वाला है एट द एशियन गेम्स। जी हाँ, आई होप यू हैव एन अर्ली स्टार्ट, क्योंकि सुबह 6 बजे बैडमिंटन होगा, इंडिया वर्सेस जापान विमेन्स टीम्स क्वार्टर फाइनल। बहुत क्रुशियल मैच है इंडियन टीम के लिए एंड सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। 6:15 बजे शूटिंग में जो हमारी अभी तक सिल्वर मेडलिस्ट हो चुकी हैं एलेवेनील वारावेरियन, उनके साथ होंगे पार्थ माने 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन एंड मेडल इवेंट होगा वो 6:15 बजे। 6:30 AM इट्स वुशु टाइम एंड वुशु में लैंगलन टॉमी देवी हमारे विमेन्स नानक्वान फाइनल में है। याद दिलाएं आपको, नानक्वान फाइनल में 10 कंपेटिटर्स होते हैं, सो होपफुली इंडिया कम्स अवे विद अ मेडल इन दैट इवेंट। 6:30 बजे हमारी शूटिंग के स्कीट के कंपटीशन में मेंस एंड विमेन्स टीम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड टीम इवेंट के डे टू में, याद दिलाएं 3 डेज होते हैं स्कीट कंपटीशन में। विमेन्स टीम राइट नाउ आर प्लेस 3rd एंड मेंस टीम आर राइट नाउ प्लेस 6th। 7:15 बजे इट्स कबड्डी टाइम। जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। आज तो इंडियन मैन ने होस्ट जापान को हराया, क्या साउथ कोरिया को भी हरा पाएंगे? 7:35 चेतन भट्ट हमारे मेंस क्यूमाइट कराटे के मैच में दिखेंगे, 84 kg सेमीफाइनल। क्या चेतन फाइनल तक प्रवेश कर पाएंगे? उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर प्री क्वार्टर फाइनल टेबल टेनिस मुकाबला है इंडियन मेन्स टीम, इंडिया वर्सेज साउथ कोरिया। क्या इंडिया साउथ कोरिया को अपसेट कर सकता है और जीत सकता है वो क्रूशियल टेबल टेनिस का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच? बॉक्सिंग में भी हमारे 2 बॉक्सर्स कल दिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी अपने 51 kg राउंड 32 मैच में सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे जादूमणि सिंह, यस द आर्मी मैन जादूमणि सिंह, जिनको सिल्वर मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो चाहेंगे उस सिल्वर का कलर बदलकर, रंग बदलकर गोल्ड में कन्वर्ट करें 55 kg राउंड ऑफ 32 मैच। और बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि कल इंडिया का गोल्ड का खाता खुलेगा, क्योंकि 10:30 AM इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अ रिपीट ऑफ द एशिया कप फाइनल। जी हाँ, एशिया कप में तो इंडिया ने अपना रिवेंज ले लिया श्रीलंका से, कल क्या इंडियन विमेन्स टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर पाएंगे? उसके बाद 11:30 बजे इट्स एक्शन कीप्स ऑन कमिंग एट द एशियन गेम्स, क्योंकि इंडिया और जापान का मेंस टीम क्वार्टर फाइनल मैच है बैडमिंटन में। और 3:15 बजे एक और मेडल गारंटी हो सकता है, जी हाँ, वुशु से, क्योंकि रोशिबिना देवी अपने विमेन 60 kg क्वार्टर फाइनल मैच में लड़ेंगी। याद दिलाएं आपको, रोशिबिना देवी ने 2022 में सिल्वर जीता था, 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया था, तो क्या इस बार रोशिबिना देवी विल गो ऑल द वे एंड गेट गोल्ड फॉर इंडिया? And then a big match to end the day. It's the 3:10. It's India versus Sri Lanka in a hockey match. India men's or women's दोनों ने धमाकेदार शुरुआत करी है. Goals are just pouring in. So hopefully we see more goals and more action. And आप आकाशवाणी पे please tune in करिए. हमारे updates सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और आज 10 बजे हमारा special show भी आप सुनना, because it's been a great day for India and you can recap all that happened in a little while from now. And कल सुबह हम वापसी करेंगे 9:30 बजे with updates every hour. Thank you so much for joining us today on the updates at Akashwani.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: You are listening to the Asian Games 2026 update.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
2: Yes, you are with us on the Akashvani Rainbow 102.6 MHz and this show is called Country Carnival. That song that you heard was Hank Williams, one of the pioneers who helped give country music its distinctive voice. His songs could be funny, lonely, romantic and heartbreaking, often all at once with all its mixed feelings. Well, let's brighten up with a country classic that has a little more sunshine in its step, and that's Strawberry Wine.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं। मुख्य

0: निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, पूरे 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 दिन न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में इस गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमोडिक एलिफेंट का 18वां संस्करण आज उत्तराखंड और पिथौरागढ़ स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 3 अक्टूबर तक चलेगा। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर बनी भारतीय फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। तो ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, 8:03 और पूरे 15 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम है आपका अपना म्यूजिक मस्ती, और मैं हूँ एम्ब्रीन। तो बस फिलहाल क्या होना है, तैयार होना है म्यूजिक पर मस्ती करने के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, 8:15 और पूरे 55 सेकंड हो गए हैं। म्यूजिक मस्ती सुन रहे हैं आप एम्ब्रीन के साथ। और ये वाला गाना भी जब सुनो ना तो वाकई में मज़ा आता है। ये नहीं कह सकते कि इस पर खूब थिरकना पड़ता है, लेकिन स्लो स्लो वाला जो डांस होता है ना, वो भी करो, वो भी बड़ा मज़ा आता है। तो बस इंजॉय करते हैं इस गाने को सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

0: पायल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

म्यूजिक मस्ती एमडीन के साथ। देखिए ना, 8:27 और पूरे 10 सेकंड, ये होता है म्यूजिक का कमाल। जब आप म्यूजिक में होते हैं ना, तो बस फिर ये होता है कि उसमें खो जाते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए ना, क्योंकि जब रिलैक्स करने का दिल करता है ना, और रिलैक्स होने का वाकई में मन करता है, तो रिलैक्स होना चाहिए। अब वो गाने, तो हम कहते हैं ना कि गाना भी एक, जो गाने हैं बहुत अच्छा जबरदस्त माध्यम होता है, एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है आपके माइंड को रिलैक्स करने की। दिन भर काम काम काम, लेकिन अब तो थोड़ा म्यूजिक बनता है ना, तो बस कहीं मत जाए हमारे साथ ना, म्यूजिक मस्ती है, क्योंकि म्यूजिक के साथ मस्ती जो है, एमरीन के साथ। आप हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती अमरीन के साथ। और देखिए ना, नैन मटक का जो जितने मतलब आप गाने सुनो और अलग अलग बीट्स के जब आप गाने सुनो तो वाकई में उसी माहौल में जो है ना हम लोग रम जाते हैं। अगर हम लोग सूदिंग म्यूजिक की जब बात करते हैं और जब सूदिंग सॉन्ग सारे सुनते हैं तो बस ऐसा लगता है कि कहाँ खो गए और वहां से निकलने का मन ही नहीं करता, है ना। अब फिलहाल तो अभी म्यूजिक मस्ती वाली चल रही है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

8:44 और पूरे 30 सेकंड हो गए हैं। म्यूजिक मस्ती सुन रहे हैं आप एम्ब्रीन के साथ, और फिलहाल ये वाला गाना सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, सच कह रही हूँ मैं, नहीं यकीन आ रहा, तो बस सुनिए और इंजॉय कीजिए इस गाने को। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

जी हाँ, 8:53 और पूरे 28 सेकंड हो गए हैं। देखिए ना, वक्त कैसे निकलता है। और जब म्यूजिक का साथ हो और आकाशवाणी एफएम रेनबो का साथ हो, तो वक्त का तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब वक्त जो है हमारे पास, जब वो खूबसूरत गुजारने के लिए होता है ना, तो उसको गुजार देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, कहीं मत जाएं, हमारे साथ ही रहें। क्योंकि एक और गाना मैं प्ले कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बन जा तू मेरी रानी। हाय हाय, सुनते हैं ना। फिलहाल इंजॉय करते हैं इस गाने को, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

जी हाँ दोस्तों, टाइम मैं बोल रही हूँ ना, 8:56 और पूरे 54 सेकंड हो गए हैं। एम्ब्रीन के घर जाने का भी टाइम आ गया। जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? फिलहाल एम्ब्रीन को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक

निजी प्रस्तुता पर अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात से जुड़े विभिन्न स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में इस गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और दोस्तों, वक्त हो गया है यादों की बारात का स्वागत करने का और यादों के खूबसूरत सफर पर चलने का, यानी हो गया है वक्त आपके खास कार्यक्रम का जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और आज आपकी याद आती रही में आपके साथ है आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

कितने दिन बाद मिले हो। चलो इस शहर से दूर किसी जंगल के किनारे किसी झरने के करीब टूटते पानी को पीकर देखें, भागते दौड़ते लम्हों से चुरा कर कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए जीकर देखें।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों, कभी कभी यादों के वो बेशकीमती लम्हे हमारे जीने का सहारा भी बन जाते हैं। कभी कभी वो हमारी उदासी और वीरान जिंदगी में खुशी के बयार भी ले आते हैं। इसीलिए तो यादें अनमोल होती हैं, जिन्हें हम कभी भी अपने से जुदा नहीं करना चाहते, अलग नहीं करना चाहते।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
3: जब शहर चुप हो हंसा लो हमको, जब शहर चुप हो हंसा लो हमको, जब अंधेरा हो जला लो हमको, हम हकीकत में नजर आते हैं, दास्तानों में छुपा लो हमको। दिन ना पाए जाए कहीं शब का राज, दिन ना पाए जाए कहीं शब का राज, सुबह से पहले उठा लो हमको। हम जमाने की सताए हैं बहुत, अपने सीने से लगा लो हमको।

0: दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? आप हमें सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedback@fmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedback@fmrainbow@gmail.com। और सुनाने भूलिए, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, कभी जाइए। समय हो गया है 9:30 और 44 सेकेंड। हम हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं दोस्तों। और अब वक्त हुआ कि जी आप सुन रहे हैं इस वक्त हैं आप, आपकी याद आती रही कि खूबसूरत महफिल में, तो रहिएगा इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थीं, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थीं। बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया, हर मौजे नफस, हर मौजे सबा नगमों का जखीरा थी गोया।

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी

और दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए आपकी याद आती रही से इजाजत, आपसे फिर होगी भेंट। रात 11 बजे प्रोग्राम होगा रंगे महफिल, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: We're now bringing you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगु के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर

0: पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्राक्ष पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
0: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarter finals. Lakshya Sen gave

0: India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Emma and Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने दो दो गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने एक एक गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
0: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखे ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली

0: टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया। वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shri Jakula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाओरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाओरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko. Unhone haraya Cambodia ko magar jo teesra match tha wo kaate ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko. Magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में. एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना पांचवा मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ. और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में.
0: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है. दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं. वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है. बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है.
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी. कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा. अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर. आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ. कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी. इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा. अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति. नमस्कार.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
5: You just heard daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: From your song, Elton's career began to rise rapidly, and in 1970s became an extraordinary decade for him. Album after album, hit after hit, and performances that turned Elton John into a global phenomenon. In 1972 came Rocket Man. The song presented Elton in a very different light. It was atmospheric, imaginative, and almost cinematic. And the image of the lonely astronaut became permanently associated with Elton John. Let's catch that up.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

लीजिए प्रस्तुत है अब तक के एफएम रेनबो के समाचार। भारतीय न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो ये तब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर और मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया आपके खासम खास प्रोग्राम का, जिसका नाम है रंगे महफिल। और आज रंगे महफिल में आपका साथ देने आपका दोस्त आपके साथ हाजिर है, तो कबूल फरमाइए प्रवीण शर्मा का प्यार भरा आदाब।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: मैंने जिस वक्त तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आई थी, हुस्न का नगमाए जावेद हुई थी मालूम, इश्क का जज्बाए बेताब नजर आई थी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
3: दोस्तों, फिर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। आप हैं इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। कभी कभी हमारे दिल की बात सिर्फ हमारे दिल तक ही महफूज रहती है कि नहीं? उसे हम किसी पर या फिर यूं कहा जाए कि अपनी मोहब्बत पर जाहिर नहीं होने देना चाहते। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा करने से हमारी मोहब्बत हमसे दूर चली जाती है और शायद वक्त रहते फिर कभी हमें वक्त ऐसा मौका अता नहीं फरमाता, यानी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

0: प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहीं मजा ही, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दूसरा समय हो गया 11:30:22। ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। आप इस वक्त रंगे महफिल के खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन सदाबहार गजलों का।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बहुत तेज कदम आते हैं, दिल वो दरवेश है जो आंख उठाता ही नहीं, उसके दरवाजे पे सो अहले करम आते हैं।

किसी की नजरें हमसे काफी कुछ कहती हैं दोस्तों। अपने दिल में सिर्फ हम अपनी चाहत की आवाज की कनक को महसूस कर सकते हैं। हमारे प्यार की कशिश में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी बात हमारे दिलबर के कानों तक पहुंचा ही दे।

तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं पर्वत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा।

और दोस्तों फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, तो प्रवीण शर्मा आपसे लेता है फिलहाल रंगे महफिल से इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बस आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

12 बजे है, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कभी कभी किसी के आने से सिर्फ महफिल नहीं, दिल भी मुस्कुरा उठता है। तो चलिए आज की इस सुरीली महफिल में प्यार की कुछ शरारतें और मीठी सी मुस्कानें घोलते हैं। पेश है फिल्म खुदगर्ज का यह खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम ने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: रूठो तो जरा हम तुम्हें मना लेंगे, खामोश रहोगे तो गीत सुना देंगे। बस यूं ही बना रहे प्यार का ये सिलसिला, तुम मुस्कुराओगे तो हम भी मुस्कुरा देंगे। कभी रूठना भी प्यार का एक बहाना होता है, क्योंकि जहां दिल में अपनापन हो वहां मनाने वाला भी कोई अपना ही होता है। तो चलिए इसी नटखट रूठने मनाने के रंग में सुनते हैं फिल्म जवानी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और अमित कुमार ने।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: धड़ाका का सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: दोस्तों, जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं होती, वो हमारे सफर को एक नई दिशा, एक नई खुशी और एक नई उम्मीद दे जाती है। इसलिए रिश्तों को उनकी अवधि से नहीं, उनके दिए हुए खूबसूरत पलों से याद कीजिए। जो मिला उसे मुस्कुराकर अपनाइए और जो दूर हो गया उसे अच्छी याद बनाकर आगे बढ़ जाइए। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं रॉकी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: 12:31 और 8 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म दरिया दिल से, और इस गीत को आवाज दी है नितिन मुकेश ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: का पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों मौसम बदलते हैं तो जिंदगी के रंग भी कुछ अलग से नजर आने लगते हैं। कभी पतझड़ की खामोशी, कभी सावन की फुहार और कभी बसंत की रंगीन बहार। फिल्म सिंदूर का ये गीत भी कुछ ऐसे ही बदलते मौसमों और खूबसूरत एहसासों को अपने सुरों में समेटे हुए है। तो चलिए मौसम की इस सुरीली यात्रा में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी यादें शामिल करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी खत्म करने का मन नहीं करता, बस संगीत चलता रहे और ये सफर यूं ही चलता रहे। लेकिन हम भी क्या करें, हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं वो टिक टिक टिक टिक करके हमें देख रही हैं और कह रही हैं कि आप भाई, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि घड़ी की तरफ क्यों देखें जब रात बाकी है और बात भी बाकी है। तो चलिए इस खुशनुमा माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं और सुनवाते हैं आपको नमक हलाल फिल्म का गीत आशा भोसले और पप्पी लहरी की आवाज़ में।

और दोस्तों इसी गीत के साथ मुझे यानी अर्चना बिसारिया को आप अनुमति दीजिए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता के विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 और 40 सेकंड हुए हैं दोस्तों। अब आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। प्रोग्राम का नाम है सुहानी रात और मैं हूं अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दो बजे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म

पुरस्कार को प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनी को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कराने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। व्लादिमीर पुतिन के सत्तारूढ़ यूनाइटेड एशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल का 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक में आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तीन बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता विद्युत इकाई की खरीद के लिए

ने की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को खिलाफ मामला दर्ज किया गया। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 3:36 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉनस्टॉप म्यूजिक और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: हुस्न का साया, पढ़ने न पाए हुस्न का साया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू।

प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज।

यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः 4:02 और 52 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे गामा।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम

0: हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: ఏక పేరు ఆయన, యా గోడా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, గా
1: ఎక్క చతుర నారే.

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: Meet again. Ajeeb ittefaq. I mean, if I'm not mistaken, ye hamari dusri mulaqat hai. But I haven't seen you around. Anyways, it was nice to meet you.
4: Kaun hai aap?
3: Is kanis ko, mera matlab hai is nachis ko, Raj Chopra kehte hain.

अब जाएंगे कितनी दूर भाई बस्तूर भाई बस्तूर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे

प्रातः के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मादक पदार्थरोधी कार्य बल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए जाने से जुड़ी अपीलों के जल्द निपटारे के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। चाड के लेक प्रांत में बोको हराम के आतंकवादियों ने एक द्वीप पर हमला कर करीब 11 नागरिकों की हत्या कर दी। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी

में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 5:03 और 7 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।